मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की छठवीं तिथि तदनुसार 27 जून सन 2026 सुबह के 5:59 होने को है। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है हिंदी में समाचार थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वो वहां भारतवंशियों से भी मिलेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रूपये है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी

0: सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती राडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संकेत दिया था कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिण लेबनान से हटने के निर्देश शामिल हैं। आयरलैंड के बेलफास्ट में टी20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। एफआईएच पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। शुरुआत करते हैं मातृ वंदना के साथ।

लखवीर सिंह लखा व साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे ये पारंपरिक भजन और कार्यक्रम का के अंत में लीजिए सुनिए अशोक संघोत्रा की आवाज में ये भजन।

अशोक संहोत्रा की आवाज में आप सुन रहे थे कबीर भजन। इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। अब हम आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। श्रोता, अब से बस कुछ ही देर बाद सुबह 6:35 पर खेती किसानी के कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे राइजोबियम कल्चर का उपयोग। सुबह 6:40 पर सुनिएगा श्री रामचरित मानस गान, गायक स्वर होगा छिप्रा बोस और रामकिशन चंद्रेशी का। सुबह 6:50 पर सुनिए कार्यक्रम चिंतन। सुबह 7:20 पर बुंदेली सुगंध में सुनिए रामलाल द्विवेदी का बुंदेली काव्य पाठ। फिल्म संगीत में फिल्मी नगमों का आनंद लीजिए सुबह 7:30 पर। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत गुंजन। सुबह 9:00 लोकरंग कार्यक्रम में आज कलाकार होंगे रामचरण पटेल। इनके साथ ढोलक पर संगत करेंगे मुकेश रजक, बैंजो पर होंगे जब्बार खान, छीका पर बाबू रैकवार। सुबह 9:30 पर सुनिएगा श्रोताओं के पत्रों ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों का संयोजित साप्ताहिक कार्यक्रम जब आप गुनगुना उठें।

0: प्रस्तुति होगी रविंद्र कुमार प्रजापति की। सुबह 10 बजे आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होगी जिले की चिट्ठी। सुबह 10:05 पर सबरंग कार्यक्रम में सुनिए मिश्रित संगीत। सुबह 10:30 पर सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आज प्रसारित होंगे कार्यक्रम। दिन में 11 बजे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। दिन में 12 बजे सुनिए आपकी फरमाइश। दिन में 12:30 पर सुनेंगे कार्यक्रम संग्रहालय से। दिन में 1 बजे होगा महिला कार्यक्रम। दिन में 1:30 पर सुनिए लोक संगीत और 1:45 पर सुगम संगीत। दिन में 2 बजे आनंद लीजिए फिल्म संगीत का और 2:30 पर आपकी फरमाइश। शाम 5:02 पर युवा साथी युववाणी कार्यक्रम सुनेंगे। ये तो थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। आकाशवाणी छतरपुर से आप सुनेंगे शाम 5:30 पर फिल्म संगीत। शाम 6 बजे प्रायोजित कार्यक्रम बच्चों में जरूरी टीकाकरण। शाम 6:30 पर सुनेंगे बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा, इसमें कलाकार होंगे रामप्रसाद कुशवाहा। शाम 7:20 पर ग्रामीण भाई ग्राम सभा के कार्यक्रम में सुनेंगे श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम हेलो लोकरंजन। प्रस्तुति होगी रविंद्र कुमार प्रजापति की। रात्रि 8:15 पर फिल्म संगीत का आनंद लीजिए। आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होंगे कार्यक्रम रात्रि 8 बजे सुर्खियों में। आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित होंगे कार्यक्रम रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट। रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती। रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, इसमें सुनेंगे प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब किसान भाई सुने कार्यक्रम खेती किसानी। विषय है राइजोबियम कल्चर का उपयोग।
1: पंच भैया रो आज हम अपन को बता रहे हैं कि राइजोबियम कल्चर का कहा है। भैया देखो जो एक प्रकार को कल्चर है, जो एक नमी धारक पदार्थ और जीवाणुओं को मिश्रण होते भैया, इके प्रत्येक 1 ग्राम भाग में 10 करोड़ से ज्यादा राइजोबियम के जीवाणु पाए जाते, जो जो जैव उर्वरक है इका अपन केवल दलहनी फसलन में प्रयोग करते हैं। इनकी जब विशेषता होते है कि अलग अलग फसल के अलग अलग राइजोबियम कल्चर आउत है भैया। जैसे अपन जोन भी फसल बह रहे हैं वही राइजोबियम कल्चर को प्रयोग अपन करें। एक ही विशेषता जा रहा था कि राइजोबियम जैव उर्वरक से बीज उपचार करवे पे इके अंदर जोन 1 ग्राम में 10 करोड़ जीवाणु हो, वे जीवाणु खाद से बीज पे चिपक जाते। जैसे अपन ने बीज में जो राइजोबियम कल्चर मिलाओ सो वो अपने जो बीज है उनमें चिपक जाते। बीज अंकुरण जब होने लगत तो उके जीवाणु जो हो वे जड़ मूल रोम जो कहा थे अपने पौधा की जड़न में प्रवेश कर जाते और जड़न पे एक ग्रंथियां जी अपन गांठ खात वे बना देती। ये ग्रंथियां भैया नत्रजन स्थिरीकरण की इकाई के रूप में काम करती और वातावरण से, मतलब उमे अपन खाद नहीं देने हैं, नाइट्रोजन नहीं देने, वातावरण से ऊखा जो है सोख के अपने खेतन की अपने पौधन की जो जड़े हैं उनके माध्यम से अपने खेत में पहुंचा देती भैया। जैसे राइजोबियम है जो अलग अलग फसलन को होते ही कि अलग अलग पैकेट अपने बाजार में मिलते हैं, इनमें जैसे मूंग है, उड़द है, अरहर है, चना है, मटर है, मसूर है, तिलहनी फसलन में मूंगफली है, सोयाबीन है और जैसे कछु पंच रिजका ब्याउत बरसीम ब्याउत, तो ई सब के अलग अलग राइजोबियम कल्चर मिलत हैं। अपन का भैया 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर से 10 किलोग्राम बीज उपचारित कर लेने हैं। एक पैकेट खा खोले और उसमें 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर लगभग 500 मिलीलीटर पानी में डाल देवे। कितने भैया? आधा किलो के लगभग पानी में 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर को पैकेट घोल कर डाल देवे। उसमें अपन है एक काम और करने भैया के 50 ग्राम गुड़ खा अच्छी प्रकार से उसमें घोल में मिला देने और उको घोल बना लेने।

0: और फिर जोन अपन को बीज है उकी एक साफ सतह अच्छी झाड़ फूक के या कोनो प्लास्टिक की परत बना के बोरी बिछा के फिर अपन का उमें वो घोल का धीरे धीरे मिला देना है, जिसे के उलट पलट देने जिसे के जोन अपन ने जो जो घोल डालो वो हर बीज में चिपक जाए और ई के जोन जैव उर्वरक है वे जो है अपने बीजन में चिपक जाए। फिर वो उपचारित बीज का कोनो छायादार स्थान पे फैला के 10-15 मिनट तक सुखा ले और उके बाद तुरंत ही बो देवे। ऐसा नहीं कि अपन पे धरे रहे या घाम में चलोगे वो बीज तो उके जो जीवाणु होते भैया वे नष्ट हो जाते हैं। इके प्रयोग से कछु लाभ सोइए, इके प्रयोग से भैया 10 से 30 किलो रासायनिक रत्नजन की बचत होते है। कितने भैया 10 से 30 किलो रासायनिक खाद नत्रजन के रूप में अपन यूरिया जी का बोले थे उकी बचत हो जात। इके प्रयोग से फसल की उपज भैया 15 से 20% तक बढ़ जात। राइजोबियम जो जीवाणु है इमें कछु हार्मोन और विटामिन भी बनाऊ भैया जी राइजोबियम, जिसे पौधन की बढ़वार अच्छी हो और जड़न को विकास अच्छो हो। तो जब जोन फसलन में अपन ने राइजोबियम कल्चर से उपचारित करे है, राइजोबियम कल्चर से बीज का उपचारित करो है भी बेहो उनमें जीवाणु है, हार्मोन विटामिन भी बढ़ाऊ, पैदावार बढ़ाऊ, फसल भी बढ़त। तो अगर कहूं इस प्रकार से अपन ने राइजोबियम कल्चर को प्रयोग अपने बीज में मिला के इसकी बुवाई करी तो निश्चित है कि अपन का फसल अच्छी मिले और गुणवत्ता युक्त फसल प्राप्त हुए।
1: अभी किसान भाइयों के लिए खेती किसानी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। विषय था राइजोबियम कल्चर का उपयोग। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान, गायक स्वर है छिपरा बोस और रामकिशन चंद्रेशी का।

शिव का वरण करने के पार्वती के निश्चय की परीक्षा लेने के उद्देश्य से सप्तर्षियों ने हर प्रकार से उन्हें शिव से विमुख करने का प्रयत्न किया, किंतु शैल कुमारी शैल की भांति ही दृढ़ थी। कहा, मैं महर्षि नारद के वचन की अनसुनी नहीं करूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिल गए होते तो मैं आपका उपदेश सिर आंखों पर रखकर मान लेती, परंतु अब तो शिव जी के लिए मैं अपना जन्म हार चुकी हूँ, फिर उनके गुण दोष का विचार कैसा। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक ये हठ रहेगा कि या तो मैं शिव जी को वरूंगी या फिर कुंवारी रहूंगी। शिव जी के लिए पार्वती की ऐसी प्रीति देखकर ज्ञानी मुनिगण उनकी जय जयकार कर उठे। बोले, हे माते, आप माया हैं और शिव कल्याणकारी भगवान, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ऋषिगण ने हिमवान के पास जाकर उन्हें पार्वती के पास भेजा, जो विनती करके उन्हें घर ले आए। उधर भगवान शंकर के पास जाकर ऋषियों ने पार्वती की दृढ़ प्रतिज्ञा का वर्णन सुनाया, जिससे भगवान शिव आनंद मग्न हो गए।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। गायक स्वर थे शिप्रा बोस और रामकिशन चंद्रेशी के। संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम चिंतन।
1: काल का पहिया निरंतर घूम रहा है, अपनी गति के साथ घूम रहा है। जो घूम गया वो अतीत हो गया, वो भूत हो गया। भूत भूत है, भूत के पीछे मत पड़ना, वरना वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। जो घूमने वाला है वो अनागत है, भविष्य है। भविष्य एक सपना है, एक कल्पना है। कल्पना के पीछे मत भागना, क्योंकि कल्पना में कभी सच्चाई नहीं होती, सपना कभी सत्य नहीं होता। तो जो घूमने वाला है वो अनागत है, तथा वर्तमान उन दोनों के जोड़ का मिलन बिंदु है। वो दोनों से बंधा है, अतीत से भी बंधा है और अनागत से भी बंधा है। जो कल गुजर चुका है वो फिर कभी लौटकर आएगा ही नहीं, और आने वाला कल कभी भी आता नहीं है, क्योंकि जब भी आएगा तो आज बनकर ही आएगा। इसलिए वर्तमान में जीना है, वर्तमान में चलना है। कुछ व्यक्तियों की आदत ही पड़ जाती है कि वे हमेशा भविष्य की योजनाएं ही संजोते रहते हैं। भविष्य की मृग मरीचिका उन्हें वर्तमान के आनंद से वंचित रखती है। भविष्य की समस्याओं का समाधान वर्तमान में नहीं खोजना चाहिए, और अभी हम यही भूल कर रहे हैं। एक पति पत्नी थे, किसी शहर में किराए के मकान में रहते थे। दोनों शांत स्वभाव के थे, जिंदगी मजे से चल रही थी, कभी भी तूतू मैं भी नहीं होती थी। एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना थी। इस मकान में रहते रहते कई साल बीत गए। मकान मालिक ने कभी भी उनके लड़ने झगड़ने की आवाज नहीं सुनी थी, लेकिन एक दिन मामला गड़बड़ हो गया। मकान मालिक क्या सुनता है कि ऊपर से जोरों की आवाज आ रही है। शायद वो दूसरी मंजिल पर रहते थे, वहां से कप प्लेटों की वर्षा हो रही थी। मकान मालिक ऊपर गया और बोला, ये बिन मौसम की बरसात कैसे, ये विवाद आखिर क्यों? पति बोला, मैं अपने लड़के को इंजीनियर बनाना चाहता हूं, मगर ये मानने को तैयार ही

नहीं है। इसका कहना है कि मैं इसे डॉक्टर बनाऊंगी। पत्नी बोली, हां दादाजी, मैं हमेशा बीमार रहती हूं, इसीलिए मैं अपने लड़के को डॉक्टर बनाना चाहती हूं और डॉक्टर ही बनाऊंगी। दुनिया इधर की उधर हो जाए तो भी उसे इंजीनियर नहीं बनने दूंगी। मकान मालिक ने कहा, ठीक है, तुम इंजीनियर बनाना चाहते हो और तुम डॉक्टर, लेकिन जरा बेटे से भी तो पूछो कि वो क्या बनना चाहता है। बुलाओ उसे मेरे सामने लाओ। ये बात सुनकर पति ने

0: भविष्य की समस्याओं का वर्तमान में हल खोजने पर यही हादसा होता है। हम भी भविष्य में जी रहे हैं। याद रखना, वर्तमान की उपेक्षा करके भविष्य में जिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि जीना केवल वर्तमान में होता है। कल की चिंता छोड़ दो, कल अपनी सुध आप ले लेगा। आज की परिधि में रहिए, आज को हाथ से ना जाने दो, क्योंकि हजारों कल आज की बराबरी नहीं कर सकते। आज का पूर्ण उपयोग करो। सब कुछ बदलता है, केवल परिवर्तन का नियम नहीं बदलता है। आज केवल आज रहेगा, कल नहीं। बहती सरता के पल पल परिवर्तित जल में एक बार पैर रखकर उसी जगह दूसरी बार फिर उसी जल में पैर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि तब तक तो वो बहने वाला जल बह चुका होता है, जाने वाली श्वास जा चुकी होती है। समय अत्यंत बलवान है, जो उसकी अवज्ञा करता है समय उसे कभी माफ नहीं करता।
1: ये था आज का चिंतन। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। संस्कृत में समाचार थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे।

0: की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
1: उत्तर प्रदेश आरक्षिबलिना श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यासस्य दानराशि वंचना प्रकरणे प्रथम सूचना प्रतिवेदनाधारेण अष्टौ जनाः निगडिताः। इदं तावत् प्राथमिकं प्रतिवेदनं मुख्यमन्त्रिणः योगिनः आदित्यनाथस्य निर्देशेन विशेष निरीक्षण दलस्य अनुशंसानन्तरं पञ्जीकृतम् आसीत्। इदं प्रकरणं श्रीरामजन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यासेन प्राप्तानां उपहाराणां दानानां च वञ्चना सम्बद्धारोपाणां प्रकाशनानन्तरं सम्मुखम् आगतम्। न्यासस्य अनुरोधेन मुख्यमन्त्रिणा योगिना आदित्यनाथेन एकस्य विशिष्ट निरीक्षण दलस्य संघटनाय आदेशः प्रदत्तः। भारतीयर्तु विज्ञान विभागेन अनुमितं यत् सोमवासरं यावत् दिल्ली पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ पूर्वीयोत्तर प्रदेश राजस्थान मध्यप्रदेश महाराष्ट्रोत्तराखण्डेष् लक्षद्वीपस्य कतिपय क्षेत्रेष् च तडित्पातस्य संभावना अस्ति। कोलकाता दुर्घटनायां आहतानां संख्या एधित्वा षोडश संजाता अस्ति। तत्र व्रणितानां उपचारः एसएसकेएम चिकित्सालये प्रवर्तते इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में दो नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल घोषित कर दिया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्तार शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के दो विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि उसकी ईरान पर उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम

समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित संघर्ष समझौते में हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। एफआईएच पुरुष प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराकर करारी शिकस्त दी। मैच के पहले क्वार्टर में लंदन में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह के गोल ने मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। सातवां गोल चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने किया। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर। गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित सेवा भारत टैक्सी का गुजरात में करेंगे शुभारंभ। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आतिथ्य में होगा विशेष कार्यक्रम। और आज भोपाल इंदौर समेत 43 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा दल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी के साथ बातचीत करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वे वहां भारतवंशियों से भी मिलेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल्स पर इसका सीधा प्रसारण होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग और अवैध तस्करी विरोधी दिवस पर कल केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने देश को

0: नशे के खतरे से बचाने के लिए तैयार किए गए विजन डॉक्यूमेंट ऑन नारकोटिक्स कंट्रोल का भी शुभारंभ किया। संबोधन में अमित शाह ने कहा कि देश नशे के खिलाफ लड़ाई के बेहद निर्णायक मोड़ पर खड़ा है।
1: मादक पदार्थों की समस्या केवल कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, नार्को टेररिज्म इको सिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
0: समान नागरिक संहिता यूजीसी विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए अध्ययन और परीक्षण संबंधी उच्च स्तरीय समिति की बैठक कल नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में हुई। समिति की अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विधेयक के प्रारूप के साथ ही विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति समेत अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। समिति सदस्य सचिव अजय कटेसरिया ने बताया कि समिति की रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग अंतिम चरण में है। समिति की रिपोर्ट के दो भाग होंगे, जिसमें पहला भाग समिति की अनुशंसाओं का और दूसरा भाग समिति द्वारा किए गए जन परामर्शों से संबंधित होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज से दो दिवसीय दौरे पर बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकरू जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज शाम को संसद पॉइंट को देखेंगे। इसके बाद ग्राम पंचायत कुकरू में रात्रि चौपाल में शामिल होंगे। वे गांव वालों से बातचीत भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। अगले दिन सुबह 6:30 पर सनराइज और बुज पॉइंट पर मेडिटेशन करेंगे। फिर स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित गतिविधियों का अवलोकन भी करेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश के कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में राजधानी भोपाल के रविन्द्र भवन परिसर में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में कई निर्णय लिए जाएंगे। प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस की प्रदेशवासियों सहित उद्यमियों को शुभकामनाएं और बधाई दी हैं। श्री कश्यप ने कहा है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भारत की अर्थव्यवस्था की सशक्त आधारशिला है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जैसे अभिनव आयोजनों ने प्रदेश में एमएसएमई, स्टार्टअप्स और निवेशकों के लिए नए अवसरों के द्वार खोले हैं। इससे प्रदेश में निवेश बढ़ा है, रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और स्थानीय उद्यमों को राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान मिल रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल लोकतंत्र सेनानी स्मृति दिवस के अवसर पर रविन्द्र भवन में आयोजित लोकतंत्र सेनानियों के प्रादेशिक सम्मेलन में कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों को सरकार स्पेशल ट्रेन से तीर्थ दर्शन कराएगी, साथ ही लोकतंत्र सेनानियों के इलाज का सारा खर्च सरकार उठाएगी।
3: लोकतंत्र सेनानियों के योगदान के शिलालेख उनके निवास क्षेत्र के आसपास लगाने के भवन, पार्क या मार्ग का नाम रखने के लिए मैं सहमत हूँ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, लोकतंत्र सेनानियों के इलाज के लिए जो खर्चा लगेगा सरकार देने के लिए तैयार रहेगी। हमारे लोकतंत्र सेनानी अपने राज्य के अंदर कई जगह छोटे छोटे स्थान पर भी रहते और ऐसे में कभी कोई गंभीर बीमारी पड़ी और वहाँ राज्य के उस अस्पताल में इलाज नहीं है तो हमारी एयर एम्बुलेंस निःशुल्क लेकर के आएगी और उनका इलाज कराएगी।
0: प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से के 15 जिलों में एंट्री करने के बाद मॉनसून ठहर गया। मौसम केंद्र भोपाल के मुताबिक मॉनसून आगे बढ़ा तो पहले यह भोपाल, उज्जैन संभाग में पहुंचेगा, आखिर में ग्वालियर, चंबल में दस्तक देगा। प्रदेश में मॉनसून 24 जून को पहुंचा था। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 2-3 दिन में मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों में मॉनसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां बन रही हैं। इसके असर से आज भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर समेत 43 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। FIH पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन के ली वैली हॉकी सेंटर में खेले गए मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह के गोल ने मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, चुकराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। सातवां गोल चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने किया। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा।

अब कुछ समाचार संक्षेप में। रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए जोधपुर और चेन्नई के बीच 27 जून से साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन पश्चिम मध्य रेलवे की भोपाल मंडल के रुठियाई, गुना, बीना, भोपाल और इटारसी स्टेशन से गुजरेगी। खंडवा में साइबर अपराधों से बचाव के लिए पुलिस का सेफ क्लिक 2.2 अभियान लगातार जारी है। अभियान के तीसरे दिन विशेष साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्षा काल को देखते हुए आगरमालवा कलेक्टर के आदेश पर 24 घंटे संचालित होने वाला जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। सतना जिले में जिला प्रशासन और राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में कई जगह नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक सहित अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। निंडौरी में कल से राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत जिले के 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इंदौर में मध्य प्रदेश गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल वृत्त इंदौर ने कॉलोनियों के निवासियों के लिए समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया। गुना में कल राजस्व और नगर परिषद के संयुक्त अमले द्वारा संचालित कोचिंग संस्थानों का सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम
2: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब बुंदेली सुगंध में सुनिए रामलाल द्विवेदी का बुंदेली काव्य पाठ।
3: योग पर कुछ दोहे समर्पित कर रहा हूँ। एक रोज के योग से तन मन रहे निरोग, दूजे गहरे ध्यान से ईश्वर से हो योग। मन शरीर की स्वस्थता, मन शरीर की स्वस्थता सारे सुख की खान। यदि रोगी तन मन कहीं तो संपत्ति धूली समान। जन्मत इतना जानता योग मात्र व्यायाम, दर्शन

नियमित करके साधना व्यक्ति सुखी सर्वांग भक्ति कर्म लय ज्ञान हठ योग राज अरुणाद इस प्राप्ति के मार्ग चल साधक कर संवाद। माँ पर चंदलाइने बच्चों के हित सब कुछ सहती करती प्राण निसार और प्यार

ध्यान देने योग्य लाइन है, तो जिसने खोया उससे पूछो कैसी साथी होती माँ, जिसका मूल्य चुका नहीं पाए ऐसी संपत्ति होती माँ। तो सब कुछ तो मिल जाता जग में मूल्य चुका कर जो चाहो, और सारी दौलत त्याग मिले नहीं ऐसी दौलत होती माँ। पूरे जग में ढूंढ सकोगे मासम कहाँ दुलार, और प्यारी माँ में भरा हुआ है ममता का संसार। शिशु पर संकट भला न आए नितपत मंदिर जाती माँ, देवी माँ सब कष्ट हरेंगी छुप छुप अश्रु बहाती माँ। खूब पढ़े राजा बन जाए घी भर दाल पिलाती माँ, इनको कोई दबा सके नहीं रणचंडी बन जाती माँ। जगत मात प्राणेश तुल्य है, जगत मात प्राणेश तुल्य है महिमा अपरंपार, प्यारी माँ में भरा हुआ है ममता का संसार, ममता का संसार। मेरा ये गीत इस दुनिया में तन के उजले मन के काले देखे हैं, और बिसरस भरे पयो मुख घट से ढंग निराले देखे हैं। नैतिकता बस सांस ले रही, दानवता कली बीज बो रही, जीने की बस आस खो रही, पीछे चलता गोरख धंधा मंच उजाले देखे हैं। बिसरस भरे पयो मुख घट से ढंग निराले देखे हैं, सच में सच भी टूट रहा है झूठ सत्य को लूट रहा है, दर्द धर्म का फूट रहा है। सत्य कथन में मौत मिले तो मुंह में ताले देखे हैं, इस दुनिया में तन के उजले मन के काले देखे हैं। प्रतिभा अब हत

बिसरस भरे पयो मुख घट से ढंग निराले देखे हैं। खेतों में वह हाड़ कपार खेतों में वह हाड़ कपार स्वेदिलप तप ताप सह रहा घर पर सिर पर चुवन टपक रहा। तो स्वे दिल श्रमिकों के लालों को भोजन के लाले देखे हैं। बिसरस भरे पयो मुख घट से ढंग निराले देखे हैं। लंका जा रावण को मारा सबक सिखा घुस कर संघा।

बिसरस भरे पयो मुख घट से ढंग निराले देखे हैं। भारत का स्वरूप मेरे भारत की माटी है तुझको ना।

हटी है तुझको नमन करूं मैं। तो स्वर्ग धरा का भाल पे जिसके चरण पखारे सागर, हिमगिरि जिसका सुब्रह्म मुकुट है, रामेश्वर पद पामन, दिल्ली में दिल बसता जिसका गंग गले का हार। कच्छ काम रो पुष्ट भुजाएं, कच्छ काम रो पुष्ट भुजाएं।

सत सत न मने करूं मैं। श्रांत क्लांत पथ बिहग खोजते जहां हंस का सागर, कैलाश बिहारी शंभु अब भी जहां लीन लैला कर। सतयुग तक के दे ज्ञान

0: तरसते जन्म हेतु जहां देव तरसते माते न मन करूं मैं अश्रद्धायो न तुसे इस पगों पर सत सत न मन करूं मैं मेरे भारत की माटी है तुझको नमन करूं मैं हिंदू मुस्लिम सिख सभी को भारत माता प्यारी अधूल चटा दे कसम दूध की दुश्मन हो कितना भारी दुश्मन हो कितना भारी मेरे भारत की माटी है सत सत नमन करूं मैं।
1: बुंदेली सुगंध में अभी आप सुन रहे थे रामलाल द्विवेदी का बुंदेली काव्य पाठ। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का यह पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। अलका याग्निक की आवाज में गीतकार हैं अनजान, संगीतकार आनंद मिलिंद। फिल्म माँ बेटी।

माँ बेटी फिल्म का ये गीत आपने सुना अलका याग्निक की आवाज में, शब्द रचना अनजान की थी जिसे संगीतबद्ध किया था आनंद मिलिंद ने। अगला गीत है किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में फिल्म आज का दौर से। गीतकार हैं इंदीवर, संगीतकार बप्पी लहरी।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आशा भोसले और साथियों की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे। रविन्द्र जैन की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था रविन्द्र जैन ने। फिल्म थी लल्लू राम। अगला गीत है फिल्म लव 86 से। गीतकार संतोषानंद, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आवाजें मोहम्मद अजीज और कविता कृष्ण मूर्ति की।

अगला गीत है निदा फाजली की शब्द रचना, जिसे अपनी आवाज दी है अनवर ने। फिल्म है जाने वफा, संगीत निर्देशन खयाम का।

जाने वफा, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। अनवर की आवाज में गीतकार थे निदा फाजली, संगीतकार खयाम। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। साथियों, फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:30 पर और रात्रि 8:15 पर। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 8 को है हिंदी में समाचार थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंपग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हार कर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोहों में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य

0: के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
1: अमूल, इफ्को और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी जीरो कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहां हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले एक महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉ मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
2: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्साकर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमरीकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला की हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
3: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दो दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार

0: करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
1: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
2: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
3: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
5: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
0: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
6: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टि पत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीरअर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, AI को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे AI आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्ता ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकेंड में 2 बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए,

आज का गीत गुंजन लेकर आए हैं हम आपके लिए। इसमें आप कुछ गीत सुनेंगे चश्मे से संबंधित। कहते हैं ख्वाबों में वो अब दिखने लगे हैं, गुलाब बाजारों में बिकने लगे हैं। ऐ खुदा तू मुझको माफ करना, महबूब के सजदे में झुकने लगे हैं। चला करते थे तेज कदम चाल हम, एक गली के मोड़ पर रुकने लगे हैं। लिखा के नाम हथेलियों में उसका, जेब में छुपाकर हाथ रखने लगे हैं। दिख जाया करती है सूरत उनकी, काले चश्मे से आंखों को ढकने लगे हैं। कभी मुलाकात होगी ये उम्मीद है, आजकल राहें उसकी तकने लगे हैं। लिखावट कुछ खास नहीं है हाँ, मगर गजलें उनपे लिखने लगे हैं।

रोज रोज आंसू अच्छे नहीं लगते, रंगीन चश्मा डालने की आदत डालो। चश्मा लोगों को दूर से धोखा देता है, आंखें लोगों को नजदीकी से दूर करती हैं। या फिर यूं कहें, अब मुझे भी जरूरत पड़ने लगी है चश्मे की, लोगों के धोखे अब ठीक से नजर नहीं आते।

और जिस तरह से आजकल लोग मोबाइल में खोए रहते हैं, सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, मोबाइल हमेशा हाथ और आंखें मोबाइल स्क्रीन पर, चाहे कोई भी हो पास, ये देखते हुए यही कहा जा सकता है, लगे रहो रात दिन ऐसे ही मोबाइल पर, कुछ मिले ना मिले, एक दिन चश्मा जरूर मिलेगा।

कुछ लोग अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं

कुछ लोग अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, कुछ समझ नहीं पाते। उनके लिए कह सकते हैं, सबको दिखता है मेरा प्यार तेरे लिए, शायद तूने ही गलत नंबर का चश्मा पहन रखा है। कुछ लोग इतराते हैं अपने आप पर और कहते हैं, हम तो चश्मा इसलिए लगाते हैं जनाब, कहीं हमारी आंखों में कोई डूब कर मर गया तो खामखा सजा हो जाएगी मुझे।

लोगों की सोच अपनी अपनी होती है। कोई किसी एक विषय पर अपनी अलग राय रखता है तो कोई अलग, लेकिन कहीं पर चश्मा होते हुए नबीना न बन जाया करो, जुल्म हो कहीं पर तो आवाज उठाया करो। दुनिया को जिस चश्मे से देखोगे, दुनिया आपको वैसी ही दिखाई देगी। जो बिना मेहनत के चश्मे से भविष्य के सपने देखते हैं, उन्हें भविष्य धुंधला ही दिखाई देता है। इसलिए मेहनत करिए, आगे बढ़िए और गाने सुनते रहिए। न ज्यादा न कम, जैसे आपकी सोच वैसे हम।

गुस्सा बड़ा चतुर है, हमेशा कमजोर पर ही आता है, क्योंकि वो जानता है ताकतवर नानी याद दिला देगा। अपना स्टाइल बरकरार रखिए, चश्मा लगाए रखिए, गाने सुनिए, अपने काम करिए और कामयाब होइए। फिलहाल कार्यक्रम समाप्त करते हैं, अनुमति दीजिए। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति थी रविंद्र कुमार प्रजापति की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत गुंजन। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकरंग। लोकरंग कार्यक्रम में आज कलाकार हैं रामचरण पटेल। इनके साथ ढोलक पर संगत कर रहे हैं मुकेश रजक। बेंचों पर हैं जब्बार खान, छींका पर बाबू रैकवार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं वृक्षारोपण पर इस लोक शैलीबद्ध गीत के साथ।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन उपलब्ध है। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
2: अरे लड़का बाले हैं धन बाले, लड़का बाले हैं धन बाले, ओ खूबे।

दहेज प्रथा पर आपने सुनी ये गारी। कलाकार थे रामचरण पटेल। इनके साथ ढोलक पर संगत कर रहे हैं मुकेश रजक, बैंजो पर जब्बार खान, झीका पर

बाबू रेकवार। लीजिए अब सुनिए बिलवारी।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।

अभी आपने सुना ये देशभक्ति गीत। आवाज थी रामचरण पटेल की। इनके साथ ढोलक पर संगत कर रहे थे मुकेश रजक, बेंजो पर जब्बार खान, झीका पर बाबू रकवार। लीजिए अब सुनिए साक्षरता पर ये अगला लोकगीत।

अभी आपने सुना साक्षरता पर, ये गीत कलाकार थे रामचरण पटेल। ढोलक पर संगत कर रहे थे मुकेश रजक। बेंजो पर जब्बार खान। झींका पर बाबू रैकवार। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए विदाई गीत।

इस विदाई गीत के साथ ही कार्यक्रम लोकरंग अब समाप्त हुआ। लोकरंग कार्यक्रम में आज कलाकार थे रामचरण पटेल, इनके साथ ढोलक पर संगत कर रहे थे मुकेश रजक, बैंजो पर जब्बार खान, झींगा पर बाबू रैकवार। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम जब आप गुनगुना उठे।

जब आप गुनगुना उठे कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूर्णिमा चतुर्वेदी का नमस्कार। श्रोताओं, हम अपना कार्यक्रम शुरू करें उसके पहले सुनिए हमारा पता। कार्यक्रम जब आप गुनगुना उठे द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी छतरपुर मध्य प्रदेश, पिन कोड है 471001। इस कार्यक्रम में ये पहला पत्र हमें भेजा है ग्राम भदौरा गुढ़ा तहसील मेहरौनी जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से हेमलता नामदेव, अमित कुमार, शिवम नामदेव ने। ये लिखते हैं, साथियों, हम सभी ने 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया, जो बच्चों के विकास और उनके खेलने की अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र यूनिसेफ द्वारा इस दिन को विशेष रूप से मनाया जाता है। इसमें बच्चे खेलते हैं जिससे आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। जैसे वे जब विद्यालय में पढ़ते हैं तो विद्यालय में खेलते हैं, इसके बाद ब्लॉक, फिर जनपद और मंडल में प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और फिर वह पूर्ण रूप से देश विदेश में खेलों में भाग लेते हैं। बच्चों के लिए खेल से उनका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है और शरीर बिल्कुल स्फूर्ति वाला रहता है। बच्चे कुम्हार के कच्चे घड़े के समान होते हैं, जैसा मोड़ देते हैं वैसे ही मुड़ जाते हैं। इसलिए बच्चों को सबसे ज्यादा रुचि बैडमिंटन, गिल्ली डंडा, गोला फेंकना और क्रिकेट खेल सबसे अच्छा लगता है और शुरू में गांव से लेकर दूर दराज तक खेलने जाते हैं। इससे उनमें स्फूर्ति रहती है, उन्हें बस हमेशा खेलने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जिससे आगे बढ़कर वे अपना नाम कर सकें। जब हमने इस दिवस को मनाया तो हमारे होंठ गुनगुना उठे ये गीत।

ये पत्र हमें भेजा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। लिखते हैं, अरमानों, भावनाओं और उमंगों की नवीनतम कल्पनाएं लेकर हर युवा कन्या विवाह के बंधन में बंधकर अपने जीवन साथी के साथ एक नई दुनिया की कल्पना संजोए होती है, किंतु समाज में फैली दहेज की कुरीतियां उसके सारे ख्वाबों को बिखेर देती हैं और दौलत की लालच में उस पर असहनीय जुल्म कर देते हैं। अतः हमें संकल्प करना चाहिए कि ऐसे दहेज प्रथा नामक जहर को समाज में फैलने से रोका जाए। मैं जब भी इस विषय पर मंथन करता हूँ तो मैं गुनगुना उठता हूँ।

ये पत्र भेजने वाले हैं ग्रामवा पोस्ट गौना कुसमार थाना सौजना तहसील महरौनी जिला ललितपुर झांसी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से कैलाश नारायण नामदेव दीपक कुमार नामदेव द्रौपदी रामदेवी ब्रजेश कुमारी अखिलेश कुमारी लखनलाल चाहना आकाश रानी परी सुरबी नामदेव और पायल नामदेव। कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई, जिनके पास भगवान की कृपा होती है तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसी ही एक अनोखी घटना देखने को मिली 10 जून को, जब हम ललितपुर रेलवे स्टेशन पर इंदौर जाने के लिए खड़े थे तभी एक घटना देखने को मिली। एक ट्रेन ललितपुर के प्लेटफॉर्म से गुजर रही थी, उसमें एक यात्री ट्रेन के गेट पर बैठकर सफर कर रहा था। डिब्बे में अधिक भीड़ होने के कारण किसी का धक्का लगा और वह चलती ट्रेन से नीचे गिर गया। हम सभी लोगों ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान उस व्यक्ति की रक्षा करना। जब ट्रेन निकल गई तो उसके ऊपर से एक एक करके 13 डिब्बे निकल गए। ये देख सभी लोग चीखने चिल्लाने लगे और तुरंत रेल पुलिस मौके पर पहुंची। जब यात्री खुद खड़ा होकर चला गया तो लोगों में खुशी के आंसू झलक पड़े। इसी को कहा जाता है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, और होंठ पर चला आया ये गीत।

झूठ की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, लेकिन मंजिल तक तो केवल सच ही पहुंच पाता है। इस पत्र को भेजने वाले हैं मां भारती रेडियो श्रोता संघ ग्राम पोस्ट अखटोहा तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर से सुरेश कुमार साहू। ये लिखते हैं, एक चरवाहा लड़का अपने भेड़ों के झुंड को जंगल में चराने ले जाता था। एक बार उसे बोरियत महसूस होने पर उसने सोचा क्यों ना एक खेल खेले। इसी सोच से वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया भेड़िया भेड़िया, भेड़ के बच्चे को ले जा रहा है। खेतों में काम रहे किसान भागते भागते उसके पास आए। किसानों ने आते ही पूछा, किधर है भेड़िया? लड़के ने हंसते हंसते बोला, कोई भेड़िया नहीं था, मैं बोर हो गया था इसलिए सोचा कि आप लोगों को बुला लूं। किसान बहुत गुस्सा हुए और उसको डांटा, फिर वहां से वापस अपने खेतों में चले गए। ऐसा ही उस लड़के ने 4 से 5 बार किया और हर बार किसान आते थे, लेकिन हर बार वह लड़का मजाक कर रहा होता था। एक बार सचमुच में भेड़िया उसके सामने आ गया और जल्दी से वह लड़का डरकर अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। हर बार की तरह इस बार भी लड़का भेड़िया भेड़िया कहकर चिल्लाया, लेकिन किसानों को लगा कि इस बार भी वह मजाक कर रहा है और कोई भी किसान उस लड़के के पास नहीं पहुंचा। इस बीच भेड़िया ने एक भेड़ के बच्चे को अपने मुंह में दबाया और वहां से चला गया। लड़का अंत में बहुत दुखी हुआ। उक्त तथ्यों से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना चाहिए, अन्यथा उसका परिणाम हमेशा दुखदायी ही होता है। जब भी उक्त तथ्य मेरे जहन में आते हैं तो होठों पर चला आता है ये गीत।

ये पत्र है मेन मार्केट ग्रामा पोस्ट सौरई जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से। भेजने वाले मित्र हैं संतोष नामदेव, अभय, अनिल, अजित, ज्योति, अनीता, संचना, रेखा, भारती, पूर्वी, रोही, अनु, अनन्या, शक्ति, भक्ति, आदर्श, लवकुश और समस्त नामदेव परिवार। लिखते हैं, आज से कुछ दिन पहले 5 जून को हमने पर्यावरण दिवस मनाया, जो कि हर वर्ष मनाते हैं और मनाते जाएंगे। लेकिन आज की दृष्टि से देखा जाए तो पर्यावरण हमें स्वयं को बचाना होगा। आज की दृष्टि से देखा जाए तो इस भीषण गर्मी में तापमान 45 डिग्री से 46 डिग्री तक पहुंच गया, जिसकी जिम्मेवार हम सब हैं। पेड़ों को काटना सबसे प्रमुख कारण है, जिससे दूषित हवा हम सब के लिए मृत्युदायक बनती जा रही है। और अगर हम सबको अपनी आने वाली पीढ़ी के भविष्य को संवारना है तो अपने खास मौके जैसे जन्म दिवस या शादी की सालगिरह और कोई भी खुशी के मौके पर एक पेड़ अवश्य लगाएं और बच्चों जैसा देखभाल करके आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुंदर बनाएं। पर्यावरण का अर्थ हमारा परिवेश जहां हम रहते हैं। पेड़ों की ज्यादा संख्या से ये अनमोल जीवन सुंदरता में बदल सकता है और आंधी ज्यादा तापमान से हमें बचा सकता है। इसलिए हर कोई पेड़ अवश्य लगाए और धरती को हरा भरा करके धरती माँ बनाए। जब भी पर्यावरण दिवस आता है तो होठों पे चला आता है ये गीत।

ये पत्र हमें मिला है महोबा मिर्तला बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से नरसिंह राजपूत का। लिखता है, मित्रों जून का महीना अपने साथ एक अलग ही एहसास लेकर आता है। तपती धूप, लंबी दोपहरें और शाम ढलते ही चलने वाली ठंडी हवाएं मन में अनेक भावनाओं को जन्म देती हैं। ये मौसम केवल गर्मी का प्रतीक नहीं होता, बल्कि इसमें प्रेम, अपनापन, प्रतीक्षा और मिलन की मधुर अनुभूतियां भी छिपी होती हैं। जब प्रकृति अपने अनोखे रंग बिखेरती है, तब मन भी किसी प्रिय की यादों में खो जाता है। दूर बैठे किसी अपने का ख्याल दिल को बार बार छूता है। ऐसा लगता है मानो हर हवा का झोंका कोई संदेश लेकर आया हो और हर शाम किसी विशेष मुलाकात की उम्मीद जगा रही हो। जून की तपिश के बीच भी रिश्तों की मिठास मन को ठंडक प्रदान करती है। ये महीना जीवन के उन पलों की याद दिलाता है जब किसी अपने का साथ सबसे अनमोल लगता है। कभी बचपन की छुट्टियों की स्मृतियां, तो कभी मित्रों और प्रियजनों के साथ बिताए गए सुनहरे क्षण मन के आंगन में दस्तक देते हैं। प्रकृति और भावनाओं का ये सुंदर संगम मन को कल्पनाओं के संसार में ले जाता है, जहां प्रेम, स्नेह और आत्मीयता का मधुर संगीत गूंजता है। जून का महीना केवल कैलेंडर का एक हिस्सा नहीं, बल्कि भावनाओं का एक ऐसा अध्याय है जो हर संवेदनशील हृदय को किसी न किसी रूप में स्पर्श करता है। ऐसी ही एक दिन में इसी जून के महीने में शीशम के पेड़ के नीचे बैठा इन विचारों को सोच रहा था, तो बस अनायास ही होठों से निकल पड़ा ये गीत।

0: आजा
1: जा जा।
0: अरे आजा मेरी जान, ये है जून का महीना।
2: ये अगला पत्र है अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती वंदना गौहर और चंद्रेश गौहर का। लिखते हैं, पिता घर की वह खामोश छांव है जो खुद धूप सहकर अपने बच्चों को सुकून देते हैं। वे माँ की चुप्पियों की चाबी, बच्चों के सपनों के रक्षक और जीवन की अनकही ताकत हैं, जिन्हें हम अक्सर देर से समझ पाते हैं। पिता के मुस्कुराने भर से कहाँ टलता है माँ का गुस्सा। माँ की शिकायत पत्रों की पेटी होते हैं पिता, माँ की चुप्पियों की चाबी होते हैं पिता। माँ जानती है कि चाबी के न होने पर टूट जाते हैं ताले। बच्चों की गहरी नींद में जागते हुए सपने होते हैं पिता। ऊब की परछाइयों में हाथ थामते पिता इतना जानते हैं कि अवसाद कितना भी गहरा हो, उम्मीद की तरह टिमटिमाते जुगनुओं से रख देंगे। मुट्ठी भर रोशनी संसार की विस्तृतता को बढ़ाते हुए शायद इसलिए पिता आसमान से होते हैं। पिताजी का सबसे महत्वपूर्ण गुण है

हुए सपने होते हैं पिता। ऊब की परछाइयों में हाथ थामते पिता इतना जानते हैं कि अवसाद कितना भी गहरा हो उम्मीद की तरह टिमटिमाते जुगनुओं से रख देंगे। मुट्ठी भर रोशनी संसार की विस्तृतता को बढ़ाते हुए शायद इसलिए पिता आसमान से होते हैं। पिताजी का सबसे महत्वपूर्ण गुण है वे सदैव हर समय धैर्य से काम लेते हैं और कभी खुद पर से आपा नहीं खोते। हर परिस्थिति में वे शांति से सोच समझ कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। पिता हमेशा संयम व्यवहार कुशलता से हर कार्य को सफलतापूर्वक समाप्त करते हैं। पिता हमारे जीवन के आधार स्तंभ होते हैं। वे न केवल हमारे पालन पोषण का दायित्व निभाते हैं बल्कि हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देते हैं। सभी ने 21 जून को पिता के लिए समर्पित दिन फादर्स डे मनाया। आज जब भी ये दिन याद आता है तो मैं अपने दिवंगत पिता को याद करते हुए बड़े ही भावुक मन से गुनगुना उठती हूँ ये गीत।

अगर मालवा जिले की चिट्ठी, आलेख महेश शर्मा, वाचन स्वर दीपा सिंह। आगामी वर्षा काल को देखते हुए आगरमालवा जिला कलेक्टर प्रीति यादव ने बाढ़, अतिवृष्टि, आकाशीय बिजली और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी विभागों को आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरा करने के निर्देश दिए हैं। गत दिनों हुई आपदा प्रबंधन की बैठक में जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से कहा है कि आपदा की स्थिति में त्वरित और समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सभी विभाग अपनी कार्ययोजना तैयार रखें और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशहरा पर्व पर आगरमालवा जिला मुख्यालय स्थित मोती सागर तालाब में आयोजित गहरीकरण और सफाई कार्य में प्रदेश के उच्च तकनीकी शिक्षा और आयुष विभाग के मंत्री इंदर सिंह परमार शामिल हुए। इस दौरान मोती सागर तालाब में साफ सफाई कार्य किया गया। वहीं जन अभियान परिषद द्वारा जिले के विभिन्न विकास खंडों और गांवों में जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता को लेकर जल स्रोत पूजन, गंगा कलश यात्राएं, सामूहिक श्रमदान और जन जागरूकता गतिविधियों से ग्रामीणों को जल संरक्षण का संदेश दिया गया। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आगरमालवा जिला अस्पताल में स्थापित तंबाकू व्यसन मुक्ति केंद्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें लोगों को तंबाकू सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने, आमजनों को इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही तंबाकू सेवन से होने वाले कैंसर, हृदय रोग, सांस संबंधी बीमारियों और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की जानकारी दी गई। मध्य प्रदेश शासन द्वारा समान नागरिक संहिता यूसीसी के संबंध में अध्ययन और परीक्षण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की पिछले दिनों आगरमालवा स्थित कंपनी गार्डन के नवीन मांगलिक भवन में समिति के सदस्य प्रोफेसर गोपाल शर्मा की उपस्थिति में जन परामर्श बैठक हुई। इसमें जन प्रतिनिधियों, प्रबुद्धजनों और अन्य वर्गों के लोगों ने विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार और सुझाव पेश किए। कृषि कल्याण वर्ष के अंतर्गत आगरमालवा स्थित पुरानी कृषि उपज मंडी में प्राकृतिक खेती संवर्धन और खेत बचाओ अभियान के तहत पिछले दिनों आयोजित हुए एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम में सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि वर्तमान समय में धरती माता और मानव स्वास्थ्य दोनों को बचाने के लिए प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन का स्वरूप देना आवश्यक है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आगरमालवा नगरीय क्षेत्र के पात्र 243 हितग्राहियों को पिछले दिनों विधायक मधु गहलोत ने स्वीकृति पत्र सौंपे। गौरतलब है कि पहली किश्त के रूप में 1-1 लाख रुपए के मान से 2,47,00,000 रुपए सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत हर घर जल बेहतर जल के तहत पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ और बेहतर बनाने के उद्देश्य से आगरमालवा जिले के नलखेला नगर में 11 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन पिछले दिनों क्षेत्रीय विधायक भैरव सिंह परिहार ने किया। योजना के अंतर्गत कुंडालिया बांध से फिल्टर प्लांट तक 16 किलोमीटर रॉ वाटर पाइपलाइन, विभिन्न स्थानों पर उच्च क्षमता की पानी की टंकियों का निर्माण, पाइपलाइन विस्तारीकरण, नल कनेक्शन और फ्लोटिंग इंटेक वेल सहित अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। आगरमालवा जिला पंचायत सभागृह में गत दिनों हुई पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक में सीओ बीएस सोलंकी ने कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, टीकाकरण, क्षीरधारा, ग्राम योजना, दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान, मैत्री योजना, गौशाला संचालन और गौरस ऐप के उपयोग और प्रगति की जानकारी ली। जिले के नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध पीताम्बरा सर्वसिद्ध पीठ मां बगलामुखी मंदिर में हवन पूजन, विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के संचालन के लिए पुजारियों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों की जांच और पात्रता परीक्षण प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए जिला प्रशासन ने टीम गठित की है। जिले में 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि में मत्स्य प्रजनन काल होने से कलेक्टर ने जिले के जलाशयों में मत्साखेट पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। नियमों के उल्लंघन पर उल्लंघनकर्ता को 1 वर्ष का कारावास या 5,000 रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। आगरमालवा कलेक्टर प्रीति यादव ने सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी आवश्यक पात्र हितग्राहियों का ई केवाईसी निर्धारित समय सीमा 30 जून तक अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए ताकि योजना की आगामी किश्तों का लाभ बिना किसी बाधा के प्राप्त हो सके। वृद्धजनों को जागरूक करने के उद्देश्य से आगरमालवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बीते दिनों वृद्धाश्रम में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में द्वितीय जिला न्यायाधीश मधुसूदन जंघेल ने वृद्धजन के खान पान, स्वास्थ्य से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा करते हुए नालसा वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा योजना और वरिष्ठ नागरिकों माता पिता के भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के प्रावधानों की जानकारी दी। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: इसी के साथ कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपने दोस्त पूर्णिमा चतुर्वेदी को। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रविंद्र कुमार प्रजापति। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जब आप गुनगुना उठे। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजने को है। जिले की चिट्ठी।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी है। लीजिए प्रस्तुत है आगर मालवा जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है।

0: अभी आप सुन रहे थे आगरमालवा जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम।
1: ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है।

कार्यक्रम सबरंग। सबरंग के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे मिश्रित संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ। आवाज है रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर की।

अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज में आप सुन रहे थे ये गजल। और लीजिए अब सुनिए अनूप जलोटा की आवाज में कार्यक्रम का ये भजन।

0: आपकी कसम। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। गीत था आनंद बख्शी का, संगीतकार थे आई डी फरमन का। और कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए ये धुन एक अंतराल के बाद।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।

प्रेम गीत फिल्म की इस धुन के साथ ही सबरंग कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। सबरंग कार्यक्रम में आज आपने सुना मिश्रित संगीत। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद है।

मीटर गोल बत्ती चालू। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज थी आतिफ असलम की, शब्द रचना मनोज मुंतशिर की, संगीत निर्देशन रोचक कोहली का। इस गीत की फरमाइश भेजी थी आप सभी मित्रों ने। ग्राम बन्ने बुजुर्ग, जिला टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, सोनाली सोनम, आशीष विश्वकर्मा, नूरमहल महसौल सीतामणि, बिहार से मुसर्रत जहां, नाज तलत जहां, फरज जहां, रिफत जहां, नुजहत जहां, साजिया शाहीन नाज, नाजिया नूरी नाज और कुआथ बिहार से नरगिस जफर। तिवर्ता डबरीपारा छत्तीसगढ़ से महेंद्र प्रताप मरकाम, जया मरकाम, जागेंद्र कुमार, डबरीपारा तिवर्ता से गजेंद्र प्रताप, सुरेंद्र कुमार, मोहन सिंह और मनमोहन सिंह मरकाम। पीपर पारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी योगी नितिन और वंशिका दिवाकर, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, डोड़ी लोहारा बालौद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी पूजा आरती और प्रभा देवी तामुरिया। बेरड़ी से हुकुम करमरकर, सुनीता हार्दिक और तनु करमरकर। ग्राम मैसवाड़ी महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीक धाड़े, निनाजी स्वप्निल और अजय खिरोड़कर। सनावत से दिलीप मालाकार, सुनीता मुस्कान, योगेश और जितेंद्र मालाकार। निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल सीतामणि से अक्रम हुसैन, प्रिंस बेगम इशरत, अक्रम वसीम, रुबीना वसीम, आर

इज नदीम शमीम ममता रानी शर्मा पूनम शर्मा शाजिया शाहीन संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव ज्योति और ओजस्वी यादव छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल राजदीप राजेश राशि शीतल देवरी भाटापारा से मन्नू रजक के आर साहू अश्वनी वर्मा गणेश राम मिस्त्री मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी सीमा अनमोल धर्मपाल वीर सिंह लाठी लखवेंद्र संधु महावीर संधु विवान गुरचरण गरोवर रमेश मिगलानी सटई रोड हनुमान जी के मंदिर के पास पहाड़िया छतरपुर से बिहारी कुशवाहा ललिता शंकर आरती संदीप पिंकी रचना कुशवाहा गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोधले और आरती आकोट से विनायक बेंडे मंगला विजय शुभम पवन जरिए संजीव डाबेराव वीरमगांव गुजरात से अजीत भावसार प्रमिला भावेश सनी जयमेन भावसार मेन रोड फार बिस्कंज बिहार से प्रकाश कुमार पप्पू नैतिक पीहू बिमल और नवरतन हाता बाड़ीहाट पूर्णिया बिहार से ममता रानी छवि अनोखी अर्पिता डब्लू और दीक्षा लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म है चमेली सुनिधि चौहान की आवाज शब्द रचना इरशाद कामिल की संगीत निर्देशन है संदेश सांडेले का इस गीत की फरमाइश भेजिए आप सभी ने ग्राम जमरेठी सानी जिला जालौन से अर्चना द्विवेदी तनु सत्येंद्र मोहन प्रवीण मोहन कपिल द्विवेदी और काव्यांशु द्विवेदी पाकिजा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावत से मोहम्मद सादिक मोहम्मद शाकिर मुस्ताक अहमद बेबी मंतसा रमेश कौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री ग्राम पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर से मनीराम पाल मलखान सिंह सुधांशु हिमांशु यज्ञता निवेदिता पाल ग्राम मिर्तला जिला महोबा से सोनू भास्कर मोनू भास्कर सुषमा दीपिका रश्मि देवांश कुमार और ब्रजनंदन भास्कर दरबार कॉलोनी सनावत से किशोर कुमार सांवले रेखा हिमांशु अनुराग सुलोचना चारूवी और मास्टर प्रणव सांवले चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियानमल अनिता मोटवानी राजेश शेषम अनिल राज गांधीबाग नागपुर से अशोक कुमार सावलानी झूलेलाल चौक तिलदा से हरीश कमल सेतपाल भूमिका सुशीला दादी बिलसराय से रामकेश चक्रवर्ती पुष्पेंद्र सोनम गोल्डी दीप्ति अनुज और ओम चक्रवर्ती ग्राम फ्रांसी से राजकुमार डूडी सरजीत सिंह प्रमोद कुमार हांसी शहर से राजू मेघलानी बबीता सुभाष और डब्बू बब्बू गुलाबदास मानिकपुर लेवई से लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू रिंगनी से दिनेश वर्मा दंतरेंगी से भागवत वर्मा खजुराहो मध्य प्रदेश से रीता जैन ममता सुधांशु रमा किशोर आशाराम विवेक नंदा देवी और सरिता सागर से कार्तिक रैन विशाल गरिमा चौधरी ललित और सुधाकर गांव रतनपुर तहसील झिरैया जिला खरगोन से भागीरथ नायक जितेंद्र सुभाष रविन्द्र शिवानी अश्विनी हर्षराज अरविंद आदित्य गुनगुन और समस्त परिवार मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा ओम प्रकाश मल्होत्रा बस स्टैंड जबलपुर से करण ईशा श्रद्धा निगम निशा राजू भैया बबलू टिंकू श्यामल और संतोष छिमनी पहाड़गांव थाना ईशानगर जिला छतरपुर से बालचंद कुशवाहा हीरा गोले भागवती और आकृति हनुमत कुशवाहा श्यामाझोर बराकीरतपुरा जिला छतरपुर से पंचुलाल कुशवाहा चतुर्भाई जयंती नवल किशोर गायत्री और फूलचंद कुशवाहा कासम कॉलोनी सनावत से यूनुस खत्री शफी इदरीस नूर मोहम्मद कासिफ और इरफान मीना अमलेश्वर से डोमन ठाकुर सुमन मिथिलेश तारनी सूरज ज्योति रियांश और गुड़िया ठाकुर तो लीजिए सुनिए आप सब की फरमाइश पर चमेली फिल्म का ये गीत

इस गीत की फरमाइश भेजने वाले हमारे मित्र हैं। ग्राम खकल विकासखंड नदीगांव जिला जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह गुर्जर, सत्यम सिंह गुर्जर, अंशराज सिंह और समस्त परिवार। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, दंतरेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि।

नोखेलाल, जिला खरगोन सनावत से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना अनुज, आयुषी रमेश चंद, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना, आदलपुरा गोगावा से संजय बामनिया, माया कान्हा और कृष्णा, शिवाजीनगर बड़ाली देशमुख से राजेश खोबड़खेड़े, शिवसागर इंद्राताई, सुनैना दीपाली और स्वराज तनुज, शेरी वड़नेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर, अरुणा अनामिका दामोदर, ग्राम लोहगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप गुरलाल, अविराज गुरनूर और शुभदीप, ग्रामा पोस्ट बिरखेरा हमीरपुर से मनीराम मलखान सिंह, सुधांशु और हिमांशु, राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति कार्तिक और आर्यन, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन, कृष्णा और पीहू, कुड़ैला तहसील घुवारा से हल्काई यादव, ग्राम सज्जनपुर जिला टीकमगढ़ से भगवत प्रसाद, रघुवीर, महेंद्र तिवारी, राजकुमार, तेज सिंह और संत प्रकाश, रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी।

आवाजें उदित नारायण और साधना सरगम की, गीतकार राहत इंदौरी, संगीतकार अनु मलिक। इस गीत की फरमाइश भेजी है चरखारी जिला महोबा से नीरेंद्र वीरेंद्र रामकुमार प्रबल अरुण राहुल और समस्त राजपूत परिवार। ग्राम मवैया जिला छतरपुर से लवकेश कुमार राजपूत सर्वेश बाल कुमार और इनके मम्मी पापा। ग्राम हिरण छप्पर जिला यमुनानगर से जयपाल यशपाल और समस्त धीमान परिवार। राजनगर जतारा जिला टीकमगढ़ से वैष्णवी विशाल आरती अशोक और संतराम। ग्राम अपरवल इधौरा जिला टीकमगढ़ से फरसराम सिंह राम सेवक सोनू ब्रजेंद्र अरविंद किरण गुड़िया पूनम प्रभा देवी राजपूत। ग्राम पोस्ट खन्ना जिला महोबा से ओम प्रकाश नामदेव पुष्पा वर्षा मेघा घटा रंभा शिल्पा अलका नूपुर नामदेव। यहीं से ज्ञानेश ध्यानेश गुप्ता और रामलखन गुप्ता। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही महराज जहां। ननौरा महोबा उत्तर प्रदेश से बलराम कस्तूरी आराधना सोनिका और उपमा। ग्राम बुढ़ेरा जिला टीकमगढ़ से सीता साटी मुकेश रानी लाली समस्त परिवार। चार मीनार चौक गड़ई परिया से दरियना मल अनिता मोटवानी राजेश शेषम अनिल राज। कटोरा तालाब रायपुर से नीरज अंजलि कमल माखीजा। बठिंडा रोड डब्बाली से राजेंद्र नारंग अंजू मोहित नारंग। अलका डब्बाली से वसंत सिंह सुनीता कुलदीप। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा मीना योगेश सौरभ। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से मीका विरक बलविंदर जैतेग हरदेव मीका। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर से मुकेश कश्यप सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य सोनी और मोहिनी। मोटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल कमला अंतिम ज्योति शुभम किरण भावना कनिका मानस और मन पटेल। बठेना से बलकरण अंजनी वर्मा ज्योति वर्मा। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन से विनोद नेहा जैन दीपक मयंक मूड़त चेतना नाहटा दीक्षा और कुश मूड़त। ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा साहिल मंजू रंजना वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ से हर्षिता रामेश्वर कहा सफलता कपिल मीनाक्षी सत्यनारायण मनोहर बाई और प्रभुलाल पागरी। सुनिए आप सबकी फरमाइश पर यह गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। दिन के 11 बजने को है हमारे अगले कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित होंगे।
1: प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। प्रस्तुति अनुजा रघुवंशी की है।
2: स्वागत है आपका कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में। मैं हूं आपके साथ अनुजा। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो ये कार्यक्रम है इसमें हम बात करते हैं आपसे किसी विषय पर और सुनाते हैं फिर आपको प्यारे प्यारे गीत। तो आज का हमारा विषय है आप जिंदगी में कमबैक कैसे करते हैं, तमाम परेशानियों परिस्थितियों के बाद हताश होकर किस तरह दोबारा जिंदगी में एक जिंदगी से लड़ने के लिए दोबारा खड़े हो जाते हैं, खुद को इंस्पायर कैसे करते हैं, अभिप्रेरित कैसे करते हैं, मोटिवेट कैसे करते हैं, तो किस तरह से आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं हमें बताइए फोन करके। फोन नंबर तो आप जानते ही हैं हमारा 07552660902। तो जल्दी से हमें फोन कीजिए, तब तक आपको हम सुनाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं अपूर्वा बोल रही हूँ, अपूर्वा रघुवंशी।
0: जी, तो अपूर्वा जी, आप क्या करते हैं अपनी जिंदगी में खुद को वापस मोटिवेट करने के लिए? अगर हार जाते हैं तो फिर कैसे संभल के वापस खड़ी होती हैं जिंदगी की जंग लड़ने के लिए?
1: ऐसा अक्सर होता है जीवन में कि हम बहुत थक जाते हैं या फिर लगता है कि कोई फायदा नहीं है ये सब मेहनत करने का, सब ऐसे ही चलेगा। फिर जब भी ऐसा कुछ होता है तो मुझे मेरे नानी की कही हुई एक बात याद आती है
0: जी।
1: कि जिंदगी सबकी कटती है, कभी समय अच्छा कटता है।

0: जो बुरा करता है, लाइफ में सब कुछ बैलेंस में रहता है
1: जी।
0: तो हमें ज्यादा लंबा नहीं सोचना चाहिए, बस आज क्या करना है, कल क्या करना है, इसके आगे नहीं सोचना है, बस अपना कर्म करते जाना है।
1: बिल्कुल, क्या बात है। तो हम चाहते हैं हमारे श्रोता है वो सारी जो आपने जो बातें कही है बिल्कुल उनको अपनी जिंदगी में उतारें और इसी तरह से अपनी लाइफ को जिए। और आपके परिवार में कौन कौन है?
0: मेरे परिवार में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे दो बच्चे।
1: अच्छा, चलिए तो आपको सुनाते हैं ये गीत।

0: हेलो।
1: हेलो
0: और जी
1: हाँ जी नमस्ते, किससे बात हो रही है हमारी?
0: जी गुरु बालक से बोल रहा हूँ, विक्रम मालवीय।
1: जी कैसे हैं आप?
0: हम बढ़िया हैं।
1: तो जैसा कि आप जानते हैं आज हमारा कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, तो आप अपनी जिंदगी में मोटिवेट कैसे होते हैं? ऐसी कौन सी चीज है, आप ऐसा क्या करते हैं या फिर किस चीज से इंस्पायर होते हैं कि वापस आप हताश होकर दोबारा हिम्मत से जिंदगी के लिए खड़े हो जाते हैं?

0: इसको तो हिम्मत रखना पड़ती है ना मैडम जी।
1: तो वही हिम्मत आपको कहाँ से मिलती है ये जानना चाहते हैं हम।
0: अपने आप पर विश्वास होना चाहिए।
1: बिल्कुल, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ होना बहुत जरूरी है, आत्मविश्वास होना जरूरी है। इसके अलावा और ऐसा क्या करते हैं आप जिससे आपको खुशी होती है? जैसे मैं आज दुखी हूँ तो मैंने कुछ अच्छा गाना सुन लिया, या फिर मैंने कुछ अच्छा खा लिया, या फिर बच्चों के साथ खेल लिया, या दोस्तों से बात कर ली, तो आप ऐसा क्या करते हैं?
0: ये अपने मित्र या दोस्त है उनको अपनी बात जो है वो शेयर कर दो तो मन हल्का हो जाता है।
1: जी बिल्कुल, तो आप ये करते हैं अपनी जिंदगी में एक दोबारा जो है कम बैक करने के लिए। बिल्कुल, तो चलिए अब आपको सुनाते हैं हम ये गीत।

0: हाँ जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी सिद्धार्थ जैन से बात हो रही है मैम।
0: जी सिद्धार्थ जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा आज का कार्यक्रम है बात आपके गीत हमारे। तो अपनी जिंदगी में कमबैक कैसे करते हैं आप, कैसे खुद को मोटिवेट करते हैं?
1: जैसे कभी कभार, जैसे मैं कभी कुछ परेशान हो जाता हूँ तो कुछ ना कुछ मोटिवेशन के लिए कुछ ऐसी चीजें देखता हूँ जिससे मुझे कुछ मोटिवेशन हो। जैसे कि कुछ मूवीज हो गई जिसको अपन देख के अपने अंदर प्रोत्साहन जगता है। आज सुबह जैसे मैं एक मूवी देख रहा था, ग्राम पंचायत 2 जो पार्ट सीजन आया है, तो उसमें वो ही बता रहे हैं कि आप अपनी परिस्थितियों उस पर कैसे काबू करके अपना काम कर सकते हैं। तो इससे मेरे को काफी मोटिवेशन मिलता है कि अपनी परिस्थितियां जो भी है, लेकिन काम आपको उसी परिस्थितियों में रहकर कैसे अपना आउटपुट बेस्ट देना है, वो चीज अपन उससे सीखते हैं।
0: हाँ जी, जो बिल्कुल, हमें आपकी बात बड़ी अच्छी लगी कि आप मूवीज के थ्रू जो है इंस्पायर हो सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं।
1: जी
0: आपने हमें फोन किया, हमें बड़ी खुशी हुई सिद्धार्थ जी। तो अब आपको सुनाते हैं बड़ा ही प्यारा सा ये मोटिवेशनल सॉन्ग।

0: यक चतुर नार कर के श्रृंगार, यक चतुर नार कर के श्रृंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, हर के चतुर नार कर के श्रृंगार, मरता गगन पिता दर त त त त पर जड़ी का कर द ब ब चतुर नार कर के श्रृंगार,
1: धम अयो धम।

0: अब के तो आवाज लगाई चोटी कर दूंगा
1: तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्जम तज्ज

0: काला रे जर जर हरे नाले में जाके तुम धोके आ काला रे कार गारे
1: गारे
0: गारे
1: दूर बचा
0: गारे।

0: तुझे सुर की समझ नहीं आई, तूने कोरी घास ही खाई। अरे घोड़े
1: घोड़ा बोला
0: घोड़े देखी तेरी चतुरा
2: नाज घोड़े
0: देखी तेरी चतुरा
2: नाज
0: घोड़े
2: देखी
0: तेरी
2: चतुरा
0: नाज।

0: चतुरा गोला, ये क्या रहा गोला चतुरा, गोला चतुरा एक पे रहना, या गोला बोला या चतुरा बोला, गा
1: एक चतुर नार करके चिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत जात, अरे आय आय आय आय आय आय, चतुर नार बड़ी होशियार करके चिंगार, अपने ही जाल मेरे मन के द्वार फंसत जात, घुसत जात, हम हंसत जात, मरत जात, मरत जात, मरत जात,
2: हेलो
3: हेलो
2: हाँ जी नमस्ते, किससे बात हो रही है हमारी?
3: सुप्रिया सिंह से
2: जी। सुप्रिया जी कैसी हैं आप?
3: बढ़िया बिल्कुल ठीक हूँ।
2: तो आप अपनी जिंदगी में कमबैक करने के लिए क्या करती हैं, खुद को कैसे मोटिवेट करती हैं, इंस्पायर करके कैसे रखती हैं?
3: बहुत सारे कई बार तो हमारे जीवन पूजा पाठ तो हमेशा ही चलती रहती है।
2: हाँ जी।
3: और कई बार अपने बच्चों को देखकर ही बहुत खुशी होती है, तो लगता है कि हम भी इनके जैसे बने, थोड़ा सा हमारे अंदर भी फूर्ति आए, थोड़ा सा हम भी कुछ करें, कुछ नया करें। आसपास के लोग भी कई बार इंस्पायरिंग होते हैं।
2: हाँ जी।
3: और भी तरीके
2: जी बिल्कुल। और आपने जैसे बच्चों की बात करी, तो बच्चे तो सबसे ज्यादा हम इंस्पायर करते हैं ना, जैसे बच्चे आप देखते हैं कि बच्चे रोते हैं, गिर जाते हैं, फिर वापस थोड़ी देर में हम उन्हें हंसते हुए देखते हैं, खेलते हुए।
3: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। नहीं और कई बार हम जैसे बच्चे, कई बार बेटी है मेरी तो उसको डांस का बहुत शौक है।
2: हाँ जी।
3: तो कई बार वो गानों जो उसके गीत होते हैं डांस वाले, उनको कई बार वो रिपीट करती है, फिर डांस करती है, फिर करती है, फिर कहती है मम्मा ये क्या, हमने आपको इन सारी चीजों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि नहीं उसने कितनी बार कोशिश की और आखिर में सीख कर ही मानी है।
2: बिल्कुल।
3: बच्चे भी कई बार हमारे भी इंस्पायरिंग होते हैं।
2: बिल्कुल। तो चलिए हमें बड़ी, हम चाहती हैं कि आपकी ये बात हमारे और श्रोताओं तक पहुंचे जो अभी उदास महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो उन्हें एक मोटिवेशन और इंस्पायर जो है आप उन्हें जरूर करेंगे।
3: कई बार क्या होता है कि हम कभी बाहर नहीं जा पाते या बहुत सारा हमें खुद इतने बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में, तो हमारे आसपास ही बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको देखकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं ना। हमारे बच्चे हुए, हमारे कई बार बुजुर्ग भी हमको कई बार ऐसी ऐसी बातें बताते हैं।

0: उनके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं है ना। हमारे हस्बैंड भी वो बेचारे लगे रहते पूरा समय काम करते ही या है ना, या कुछ बहुत टिपिकल ऐसी पोजीशन आ जाती तो भी वो बेचारे लगे रहते। तो हमारे लिए तो बहुत कुछ है ऐसा आसपास में सीखने के लिए।
1: तो चलिए, आपने हमें फोन लगाया, हमें बड़ी खुशी हुई, और अब हम आपको सुनाते हैं ये प्यारा सा मोटिवेशनल एक गीत।

0: हेलो।
1: हेलो नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्ते जी।
1: राजस्थान कोटा से।
0: अच्छा कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया, आप बताओ आप कैसे?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। आपका नाम एक बार हमें बता दीजिए।
1: भूपेंद्र कुमार गुप्ता
0: जी। भूपेंद्र जी, तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा आज का विषय है कार्यक्रम में बात आपकी गीत हमारे में, आप खुद को मोटिवेट कैसे करते हैं, अभी प्रेरित कैसे करते हैं, जिंदगी में प्रेरणा कैसे लाते हैं?
1: जिंदगी में प्रेरणा तो प्रकृति से ही है सब कुछ।
0: जैसे आप कभी हताश होते हैं, उदास हो जाते हैं, तो आप क्या करते हैं जिससे आप वापस खुश हो जाते हैं और जिंदगी जीने के लिए आगे बढ़ते हैं?
1: संगीत का सारा लो, अगर उदास होते
0: हैं जी बिल्कुल,
1: संगीत सुनाओ, अपनों के साथ बैठ के बातें करो।
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, अपनों से बात करें, संगीत सुने की, हाँ जी,
1: पुराने दोस्तों को याद करो।
0: जी बिल्कुल, पुराने दोस्तों को, पुराने पलों को
1: देखा जाए।
0: जी जी बिल्कुल,
1: कैसी भी परिस्थिति हो उसका मुकाबला करना चाहिए।
0: बिल्कुल, कैसी भी परिस्थिति हो उसका डटकर हमें मुकाबला करना चाहिए और उसका तरीका ही है ये चंद खुशियाँ। हाँ जी
1: परेशानियाँ तो
0: जी जी,
1: अगर परेशानी नहीं हो तो जिंदगी क्या है?
0: बहुत, ये भी बिल्कुल सही बात है।
1: बॉल करो तो खुशी खुशी है।
0: जी जी,
1: मानो तो खुशी है, नहीं मानो तो फिर कुछ नहीं।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही, बड़ी अच्छी बातें हुई आपसे। अब आपको हम सुनाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्ते
1: जी, नमस्ते मैम।
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मेरी करिश्मा चौकसे से बात हो रही
0: अच्छा, मेरी मेरी आपसे बात हो रही है?
1: है आपकी? मैं करिश्मा चौकसे से बात हो
0: जी।
1: रही।
0: करिश्मा जी, कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और करिश्मा जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: मैं भोपाल से बात कर रही
0: अच्छा,
1: हूँ।
0: भोपाल से ही बात कर रही हैं। चलिए,
1: हाँ
0: तो मैं आज, जैसा कि आप जानती हैं, हमारा आज का विषय है कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में, कि आप खुद को मोटिवेट कैसे करते हैं, खुद को प्रेरित कैसे करते हैं जिंदगी जीने के लिए।
1: मैम, मैं कुछ ऐसे करती हूँ कि अपने आसपास के एटमोसफेयर को मतलब एक खुशहाल बना के और हमेशा खुशियां ढूंढ ढूंढ के अपने आप को मोटिवेटेड करती हूँ।
0: जी, क्या बात है। मुझे तो आपकी आवाज से लग रहा है कि आप बड़ी हंसमुख हैं। जिंदगी में परेशानियां होंगी पर चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है आपके, सही है
1: हाँ
0: क्या?
1: मैम, परेशानियां तो जिंदगी में बनी रहती है, बट आगे जिंदगी जीने के लिए खुशहाल तो रहना ही पड़ेगा ना।
0: बिल्कुल
1: यदि अपन खुशहाल रहेंगे तो ऑलरेडी खुशियां ही खुशियां ही आएंगी जिंदगी में।
0: बिल्कुल करिश्मा
1: नेगेटिविटी
0: जी।
1: होती है तो
0: हाँ,
1: नेगेटिविटी ही आएगी।
0: क्या बात है, मतलब पॉजिटिव सोचना चाहिए। आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा,
1: हाँ,
0: पॉजिटिव सोचोगे तो
1: पॉजिटिविटी, यदि अपन पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी आएगी अपने आसपास। नेगेटिविटी देखेंगे तो नेगेटिविटी देखेंगे। इसलिए मैं अपनी जिंदगी में कोशिश करती हूँ कि हमेशा नेगेटिव चीजों से दूर रह के पॉजिटिव चीजों को गेन करूँ और पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहूँ।
0: बिल्कुल। तो हम अपना समझ सकते हैं आपकी, जैसा जो आप कहना चाह रही हैं कि हमेशा जिंदगी में सकारात्मक रहना चाहिए, और जब आप परेशान हैं तो आप सकारात्मक सोचने की कोशिश कीजिए और उसके लिए प्रयास कीजिए। तो
1: तो क्या सकारात्मक सोचोगे तो उससे क्या होगा कि आपकी पॉजिटिविटी रहेगी, तो वही चीज आपको हर चीज सकारात्मक सकारात्मक दिखेगी।
0: बिल्कुल।

आप उसको उसी परिस्थिति को सकारात्मक नजरिए से देखेंगे। हमें बड़ी खुशी हुई करिश्मा कि आपने हमें फोन लगाया और हमसे इतनी अच्छी बात साझा करी। चलिए अब हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: हेलो
1: नमस्ते जी।
0: नमस्ते, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं बोल रही हूँ जुलेखा खत्री इटारसी से।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: जी मैं अच्छी, आप कैसे?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। इटारसी में मौसम कैसा है अभी?
1: मौसम तो धूप निकली हुई है।
0: अच्छा, बारिश नहीं हुई अभी?
1: बारिश तो बहुत कम है, बहुत।
0: जी जी बिल्कुल, देखिएगा जल्दी से बारिश होगी वहां पे।
1: बिल्कुल,
0: तो बात आपके गीत हमारे आज कार्यक्रम है, और जैसा कि आप जानते हैं हमारा आज का विषय है आप जिंदगी को कैसे जीते हैं, खुद को प्रेरित कैसे करते हैं, मोटिवेट कैसे करते हैं जिंदगी जीने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे आप कैसे जिंदगी को जीती हैं, वापस उदास होती हैं तो वापस खुश होने के तरीके क्या ढूंढती हैं, हिम्मत से कैसे वापस खड़ी हो जाती हैं।
1: जी, तो मैं ऐसे ढूंढती हूँ कि जैसे कभी मैं उदास होती हूँ तो फिर मैं सोचती हूँ कि और भी तो लोग इतने उदास है, कितनी ज्यादा परेशानी है, हमारी परेशानी हम देखते हैं तो औरों से थोड़ी ही कम लगती है, तो फिर खुश हो जाती हूँ कि नहीं ठीक है।
0: जी जी,
1: और चाहती हूँ कि किसी को भी ना आए परेशानी।
0: हाँ जी,
1: और इसमें ध्यान लगा देती हूँ।
0: जी जी बिल्कुल। तो आपके परिवार में कौन कौन है?
1: परिवार में मेरी माँ है
0: जी।
1: और मेरा भाई है।
0: अच्छा, क्या बात है, बिल्कुल। तो माँ तो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन होती है, प्रेरणा होती है हमारे लिए, है ना?
1: बिल्कुल,
0: हमने माँ को तकलीफ में भी देखा है, लेकिन उसके बाद भी हमारे लिए हमेशा, माँ जो है बीमार होती थी उसके बाद भी हमारे लिए भोजन बनाना, हमें खाना खिलाना, हमें हमारा ध्यान रखना, हमारी पढ़ाई करवाना, आधी नींद में भी हमारे लिए जागती थी हमेशा।
1: माँ तो माँ होती है, उनका दर्जा तो कोई नहीं ले सकता।
0: बिल्कुल सही बात है। तो सबसे बड़ी प्रेरणा जो है हमें माँ से मिलती है, और आपने हमें फोन किया है, बड़ी खुशी हुई।
1: जी जी, मुझे बहुत खुशी हुई, कई दिनों बाद लगा मैडम जी मेरा फोन।
0: बिल्कुल, अब तो आप देखिएगा, आप प्रयास करते रहिए, फोन जरूर लगेगा आपका।
1: बिल्कुल
0: जी, आपने हमें फोन किया, बड़ी खुशी हुई। चलिए अब आपको सुनाते हैं प्यारा सा गीत।

समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हमें उम्मीद है कि अब आप अपनी जिंदगी को और ज्यादा प्रेरणा से, हिम्मत से, मोटिवेशन होकर और इंस्पिरेशन के साथ जिएंगे, अपने आसपास की चीजों से खुद को प्रेरित करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी अपनी हिम्मत से प्रेरित करेंगे, मोटिवेशन देंगे।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर रवाना होने से पहले जारी अपने वक्तव्य में कहा कि इस साल भारत और सेशल्स के बीच राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। दोनों देशों के रिश्ते आपसी विश्वास, लोकतांत्रिक मूल्यों, विविधता के सम्मान और मजबूत जन संबंधों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेल्स ने ईरान को चेतावनी दी है कि यदि वो भविष्य में संघर्ष विराम का उल्लंघन करता है या कोई आक्रामक कार्रवाई करता है तो अमेरिका उसका सैन्य जवाब देगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की मुख्य आतिथ्य में राजधानी भोपाल के रविन्द्र भवन परिसर में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में कई निर्णय लिए जाएंगे। हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने इच्छुक लोगों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है। और भोपाल के मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में शलाका जनजातीय चित्र प्रदर्शनी चल रही है। गौंड चित्रकार मनीषा ध्रुवे के चित्र प्रदर्शित हैं। यह प्रदर्शनी 30 जून तक चलेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

श्रोता नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, जहां आज मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो साथी ऋषभ आहूजा। श्रोताओं, इस मौसम की जो गर्मी है उसमें बारिश बस आने ही वाली है, तो चलिए इन बारिश की बूंदों के आगमन के इंतजार में हम शुरू करते हैं हमारा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के लिए आज का पहला खत हमें प्राप्त हुआ है मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से, नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा का। इसी गीत के लिए अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले की, जो कि गौरीनगर इंदौर से हैं। इनकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत, जो हमने लिया है फिल्म दिल चाहता है से। शंकर महादेवन, शान और केके की आवाजें हैं। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है शंकर एहसान लॉय ने।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म कभी खुशी कभी गम से। अलका याग्निक, सुमति चौहान, उदित नारायण और सुदेश भोसले, साथ ही आदेश श्रीवास्तव की आवाजें हैं। गीतकार हैं समीर और

0: सुंदर संगीत दिया है आदेश श्रीवास्तव ने, और साथ ही इसी गीत के लिए हमें एक खत प्राप्त हुआ है पटेल नगर मलोर पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया और बेबी आरजू जाजौरिया का। इसी गीत के लिए हमें अगली फरमाइश मिली है आदर्श नगर मालोर पंजाब से ही राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।
1: हाँ जी बादशाह की देख रहे हो तुसी, चलो शुरू हो जाओ। 1 2 1

श्रोता, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म कल हो ना हो से। वसुंधरा दास, के शान और लॉय मेंडोजा की आवाज है। जावेद अख्तर के लिखे बोल और संगीत था शंकर एहसान लॉय का। साथ ही इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी थी आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर उमेरखंड महाराष्ट्र से, अभिजीत गवहाणकर राही, श्रीमती सरिता गवहाणकर, सिद्धांत गवहाणकर, प्रिंस एकांश गवहाणकर और आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गवहाणकर, श्रीमती वैशाली गवहाणकर, श्वेता सुमित गवहाणकर और कुमारी धोनी गवहाणकर परी। श्रोताओं, आइए अब अगला गीत हम सुनते हैं जिसके लिए हमें फरमाइश प्राप्त हुई है। सिंगापुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता नेमा, भावना और प्राची नेमा से। ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आजा नचले से। पीयूष मिश्रा के लिखे बोल, सलीम सुलेमान का संगीत और इस गीत में आवाज है सुनिधि चौहान की।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून क्या है आपने और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। श्रोताओं, ये अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं जिसके लिए हमें फरमाइश प्राप्त हुई है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री की।

फिल्म कभी अलविदा ना कहना से ये गीत आपने सुना, जिसे लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीत था शंकर एहसान लॉय का, और इस गीत में आपने आवाजें सुनी शान वसुंधरा दास और साथियों की। श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश संपन्न होता है।

धारावाहिक भुवन मोहिनी की अब तक की कड़ियों में आपने जाना कि राजकुमार विजय श्रवा से प्रेम करने के कारण धारा नगरी की

0: राजा धर्मसेन ने नर्तकी भुवन मोहिनी को देश निकाला दे दिया था। कुछ दिनों बाद भुवन मोहिनी की तलाश में राजकुमार इंद्रप्रस्थ पहुंच गया, जहां के राजा आदित्य सेन के यहाँ भुवन मोहिनी आश्रय में थी। आदित्य सेन अपनी पुत्री का विवाह विजयश्रवा से कराना चाहता था। चंद्रहासिनी की ओर आकर्षित होने के बावजूद विजयश्रवा भुवन मोहिनी से ही प्रेम करता था। चंद्रहासिनी ये जानकर भी विवाह करने को तैयार थी। इंद्रप्रस्थ के मेले में विजयश्रवा के पिता सम्राट द्युम्नसेन ने सभी भारतीय खंड राज्यों की सभा बुलाई, जिसमें हूणों से लड़ने के लिए भारतीय सेनापति के रूप में विजयश्रवा का चयन हुआ। धारा की सभा में हूणों के अपमानजनक प्रस्ताव को पढ़ा गया। आमाते ऋषभ देव ने कहा कि युद्ध टालने के लिए चंद्रहासिनी को समर्पित कर दिया जाए। ये सुनकर भुवन मोहिनी ने क्रोध में आकर ऋषभ देव का सिर काट दिया। उसके इस कार्य की सर्वत्र प्रशंसा हुई। राजकुमार के सेनापतित्व में हूणों से युद्ध हुआ, जिसमें भारतीय सेना विजयी हुई। विजय के बाद विजयश्रवा ने चंद्रहासिनी से विवाह किया और वो सम्राट बना। अब आगे क्या होता है, सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की 9वीं कड़ी में।
1: चंद्रहासिनी के साथ मेरा विवाह संपन्न हो गया। धारा नगरी लौटकर सम्राट ने स्वयं संन्यास ले लिया और मुझे सम्राट की गद्दी सौंप दी। आज मेरे पास सब कुछ है। भारत समस्त खंड राज्यों के नरेशों का एक सुदृढ़ संघ बन चुका है और मैं भारत का सम्राट हूं। सत्ता और शक्ति की अविरल धारा बहने लगी है, परंतु फिर भी एक रिक्तता है। भुवन मोहिनी चंद्रहासिनी को साम्राज्ञी बनवाकर राष्ट्र की सुप्त नारियों को जगाने के कार्य में संलग्न हो गई। स्वप्रेरणा से या मुझसे दूर जाने के लिए नहीं जानता। यद्यपि मैं प्रजा के हितार्थ कार्यों में स्वयं को व्यस्त रखता हूं, फिर भी मेरी आंखें सदैव भुवन मोहिनी को ही खोजती रहती हैं। प्रत्येक क्षण लगता है कि वो द्वार पर आकर खड़ी हुई है और कहती है,
0: आपने याद किया सम्राट विजयश्रवा?
1: इस ध्वनि को सुनने के लिए मैं तड़प रहा हूं। कब आओगी भुवन मोहिनी, तुम कब आओगी मुझसे मिलने?
0: मैं आपके ही कक्ष में हूं देव।
1: आहा, भुवन मोहिनी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे कक्ष में मेरे सामने हो। ना जाने कितने दूत मैंने तुम्हें खोजने के लिए भेजे, सब लौट कर यही बताते रहे कि तुम नहीं मिली। क्यों क्यों भुवन मोहिनी, तुम मुझे भूलकर मुझसे इतनी दूर कैसे चली गई? क्यों चली गई? वो तुम्ही हो ना जिसने राजकुमारी चंद्रहासिनी को मेरे जीवन में बलात् प्रवेश कराने की अनवरत चेष्टा की। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मुझे तुमको खोना होगा। मैं दृष्टि फाड़ फाड़ कर सोने पथ पर तुम्हारे बढ़ते चले आने वाले महायान की प्रतीक्षा करता रहता हूं। अपने अंतर की उस विवश आकुलता को दबाकर, किंतु जब तुम्हें नहीं देख पाता तब एक पश्चातापूर्ण भावना जीवन में खुलकर कहती है, सब व्यर्थ है, मेरे जीवन के कर्म सब व्यर्थ हैं। मेरी दहकती विवक्ष भूमि ज्वालामुखी का उद्गार बन जाती है।
0: सम्राट, जिस तरह से आप अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो चुके हैं, वैसे ही मैंने भी अपने जीवन का उद्देश्य निश्चित कर लिया है।
1: बिना मेरी आज्ञा के?
0: सर्व कल्याण के लिए आप जैसे कल्याणकारी सम्राट की आज्ञा आवश्यक नहीं है। सम्राट,
1: मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं चाहता। भुवन मोहिनी,
0: आपकी उद्विग्नता साम्राज्य की निकटता समाप्त कर देगी। सम्राट, आप उन्हें अवसर तो दें। चंद्रहासिनी आपकी पूजा करती हैं, आपको देवों से भी बढ़कर मानती हैं। मेरा क्या है, मुझे आपकी दया ने एक नर्तकी से राष्ट्रभक्त नारी के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। मेरे लिए यही आशातीत है। इससे अधिक की ना तो मुझे कोई अभिलाषा है और ना ही कामना। मुझे आज्ञा दें सम्राट, मेरे सामने बहुत कार्य हैं।

क्या भुवन मोहिनी को सम्राट ने बुलवाया था? मेरी प्रियतम, क्या मैं अपना समस्त प्रेम दान देकर भी उस आग की ज्वलनशीलता को कम नहीं कर पाई जिसे भुवन मोहिनी की स्मृति ने दहका रखा है? स्वामी, मैंने भूल की है। मैंने अपने सुख के लिए आपके और भुवन मोहिनी के जीवन की होली जला दी है।

0: देखिए ना, ये नन्हे कुंवर के गालों पर ये लाल लाल क्या हो गया है?
1: छोटे बच्चों को ऐसा हो जाया करता है साम्राज्ञी, इस पे परेशान मत हो।
0: अरे दे दे दे, चुप हो जा मेरा बच्चा, चुप हो जा। अरे नहीं नहीं, चुप हो जा बेटी।
1: आज भुवन मोहिनी आ रही है।
0: अच्छा?
1: हाँ, मैंने बुलवाया है, आती ही होगी। 5 वर्ष बाद आज उसके दर्शन होंगे।
0: मैं भी अपनी सखी को देखने के लिए आकुल हूँ सम्राट।
2: सम्राट की जय हो।
1: अरे भुवन मोहिनी, आओ, तुम्हारी ही चर्चा। कितना परिवर्तन हो गया है तुम्हें, तुम तो साक्षात योगिनी बन चुकी हो।
2: अरे कितना नन्हा देवोपम, कोमलता का प्रतिरूप। बधाई हो बहन चंद्रहासिनी, बहुत बहुत बधाई आप दोनों को पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए।
0: अरे छोड़ो सखी, इतना ही दुलार था तो पुत्र जन्मोत्सव में क्यों नहीं आई?
2: मेरा रोम रोम इन्हें आशीर्वाद दे रहा था, परंतु मैं अपने कार्यों में इतनी व्यस्त रही कि समय ही नहीं निकाल सकी। मेरी त्रुटि को क्षमा करना बहन। आ आ हाँ, मेरे पास आएंगे। आइए ना, आइए, दो ना बहन।
0: हाँ हाँ, ये लो जा, तू भी भुवन मोहिनी की गोद में ही रहा कर। ना जाने कब से तेरे पिता इनके नाम की माला जपते रहे हैं, अब तू भी पिता की भांति मेरा तिरस्कार कर।
1: साम्राज्ञी,
2: ऐसा मत कहो बहन। सुना भुवन मोहिनी, ये वही राजकुमारी है जिसको सुखी बनाने के लिए तूने अपनी प्रेम आकांक्षाओं को होम कर दिया। फिर भी राजकुमारी तेरे प्रति कृतज्ञ नहीं है।
0: लाओ मुझे दो, मेरा कुमार है, कहीं इससे भी तुम्हारी गोद की आदत ना पड़ जाए। चलेगा दूध पीने? हाँ चल, तुझे दूध पिला दूं। मैं तेरी माँ हूँ सम्राट पुत्र। मैं तेरी माँ हूँ। आ आ आ चल।
1: क्षमा मांग सकता हूँ तुमसे भुवन मोहिनी?
2: कुछ मत बोलिए आप, बहुत कड़वी घूंट पी चुकी हूँ, अब इनका प्रभाव नहीं पड़ता। सम्राट, अभी तीर्थाटन कर गई थी।
1: कभी अपनी तूलिका से तुम्हारा चित्र बनाया था।
2: नारी सेवा के काम में लग गई हूँ।
1: निर्वासित होते समय तुम्हारा वो मुखड़ा अभी भी मुझे याद है।
2: मैंने अब तक

0: आश्रम आरंभ करा दिए हैं सम्राट।
1: भुवन, कहीं नहीं जाना है तुम्हें।
0: क्यों?
1: इसलिए कि राजघाट से अवकाश मिलने पर जब कभी तुम्हारी पागल स्मृति कौंधती है तब मेरा हृदय चीत्कार कर उठता है और कहता है, क्या इसीलिए तुमने मुझे विवश करके चंद्रहासिनी को स्वीकार करने की प्रेरणा दी थी कि तुम मुझसे विलग रहो?
0: तो इसमें बुराई क्या है मेरे सम्राट? आपके दाम्पत्य जीवन में मेरी उपस्थिति सर्वदा बाधक होती और हमारी सम्माननीय साम्राज्ञी समझती कि मैं उनके सरस जीवन में अपनी उपस्थिति से विष घोल रही हूं। आज मुझे संतोष है कि निरंतर 5 वर्षों तक आपसे दूर रहकर मैंने अपने को अपराधिनी बनने से बचा लिया है।
2: ये झूठ है, मुझे फुसलाने का एक मुशायला षड्यंत्र है।
1: चंद्रहासिनी,
0: राजकुमारी क्षमा करो, पिछले 5 वर्षों में धारा नगरी में मेरी उपस्थिति अधिक से अधिक मात्र 1 माह की हुई होगी। तब मैं अपने पागल मन को नहीं रोक पाती थी, सबके दर्शन के लिए 2-4 दिन रुक जाती थी, किंतु मुझे आश्चर्य हुआ सुनकर कि मैंने आप दोनों के दाम्पत्य जीवन में विष घोलने का षड्यंत्र किया। आज भी अपराधिनी सिद्ध होने पर मैं सहर्ष कठोर से कठोर दंड स्वीकार करूंगी।
2: जिसके शेष पर भारत सम्राट का वरद हस्त हो उसे दंडित करने का अपराध कौन मोल लेगा?
0: असत्य है राजकुमारी, जिस अपराध का संदेह तुम मुझ पर आरोपित कर रही हो उसे हृदय चीर कर दिखला सकती तो अवश्य दिखलाती कि तुम्हारी प्रियतम को अपनी ओर मिलाए रखने का मैंने कोई कुचक्र कोई षड्यंत्र नहीं रचा। हाँ, मैं सम्राट को नहीं रोक पाती कि वो अपनी ममता की धारा मुझ पर ना उड़े ले।
2: यही तो काटा है जिसे दूर होना चाहिए।
1: पा लिया ना तुमने भुवन मोहिनी वो परिणाम जिसके लिए मैंने तुम्हें सावधान किया था। चंद्रहासिनी आज भारत की साम्राज्ञी है, वो तुम जैसी तुच्छ नारी के प्रति कभी कृतज्ञ नहीं हो सकती। उसे वो क्षण भूल गए जब दीनहीन याचक की भांति तुम्हारे सम्मुख नेत्रों में आंसू भरे हुए प्रणयदान के लिए अपना आंचल फैलाए हुए थी। आज तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर वो मुस्कुरा रही है।
2: भुवन मोहिनी, मेरी बातें जितनी तुम्हें असह्य नहीं होंगी उससे कहीं अधिक भारत सम्राट को दुखा रही हैं। अरे अरे मुझे क्षमा करो, कहीं इन बातों का बदला मुझसे चुकाया गया तो मैं किसका सहारा खोजूंगी? कम से कम तुम्हारा पक्ष तो भारत सम्राट ग्रहण कर रहे हैं ना भुवन मोहिनी? उन्होंने अभी अभी स्वीकारा है कि तुम्हारी दया के कारण मैं साम्राज्ञी बनी हूं। क्यों नहीं ऐसा हुआ कि मैं तुम्हारी दया ना लेती? राजकुमारी होने के कारण किसी न किसी राजकुमार की जीवन संगनी तो होती ही ना। किंतु ऐसा नहीं हुआ। आज सम्राट भी मुझ पर कृतज्ञता का बोझ लाद कर कह रहे हैं यदि तुमने मेरे साथ सदैव व्यवहार ना किया होता तो वो संभवतः मुझे स्वीकार ना करते।
1: हाँ हाँ, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता, इसमें कोई संदेह भी मत रखना चंद्रहासिनी।
2: देख लिया ना भुवन मोहिनी, क्या मैंने झूठ बोला था कि तुम्हारी उपस्थिति मात्र से किस प्रकार हमारे दाम्पत्य जीवन में भयानक प्रहार होते हैं? कहा था ना मैंने?
0: साम्राज्ञी, मैं तुमसे हाथ जोड़कर
1: साम्राज्ञी से क्षमा याचना करके मुझे अधिक लज्जित मत करो भुवन मोहिनी। तुमने कोई अपराध नहीं किया, सारा दोष मेरा है। मैंने तुम्हारे अतुल स्नेह के प्रति भयानक अपराध किया है। मैंने ही तुम्हारे समर्पित जीवन को कुचलकर नीरस बनाया है। मैं ही तुम्हारे मरु जीवन में झंझावात पैदा करने वाला भयानक स्वार्थी और लोलुप व्यक्ति सिद्ध हुआ हूं। चलो, आज से मैं अपने पूर्व पापों का प्रायश्चित करूंगा। चंद्रहासिनी साम्राज्ञी रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, किंतु मैं स्वयं सम्राट पद का परित्याग कर तुम्हारे साथ राह राह का भिखारी बनूंगा। मुझे ही चाहिए ऐसा उत्तत प्रेम जो हमारी दृष्टि में हमारा अपमान करने पर तुल जाए। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो, अंततः साम्राज्ञी भी एक नारी है, सर्वदा अवध अदंडनीय। अस्तु, मैं आज से ही साम्राज्ञी से दूर रहूंगा ताकि उन्हें किसी प्रकार

0: राज प्रसाद के इस खंड में रहेंगे, याद है ना? यहीं पर मैंने तुम्हारा चित्र बनाया था। किशोरावस्था से लेकर सम्राट होने तक मेरा आवास यही प्रखंड था। कोलाहल से दूर एकांत में, और तुम्हें मेरी सौगंध है भुवन मोहिनी, तुम इस योगिनी स्वरूप का परित्याग करो।
1: एक बार फिर से मुझे उस स्नेह वारुणी से उन्मत्त हो लेने दो जिसे पीकर मेरा जीवन हरा भरा हो जाए। मैं अनुभव कर रहा हूं कि मेरे जीवन में भयानक शून्यता आ रही है, और मैं अपने को उसी नीरव शून्यता में विलीन करता जा रहा हूं। राजकुमारी चंद्रहासिनी अपने सौंदर्य मद में प्रतिपल पागल हो रही हैं, और वो समर्पण का ढोंग रचकर प्रतिक्षण मेरे समर्पण की उपेक्षा करती जा रही हैं। मैंने किसी प्रकार 5 वर्ष अपने दाम्पत्य जीवन के नाम पर व्यतीत कर डाले हैं, किंतु चंद्रहासिनी कभी भी सौंदर्य उन्माद के विषैले नशे से बच नहीं सकी। वो महानता की उपासिका है, जबकि मैं अस्तित्वहीनता का। भुवन मोहिनी, आह, तुम्हारे स्पर्श में अभी भी वही मादकता है, वही विद्युत तरंगों से चपल भावनाओं का मायावी उन्माद, वही प्राणों में कंपन और सेहरन पैदा करने वाली प्राकृतिक वासना का स्फुरन। प्रिय, तुम्हें यह रूप राशि इसलिए नहीं प्राप्त हुई है कि मैं उसे देखकर आत्मविभोर हूं। अप्राप्य की भांति तुम्हें न प्राप्त कर सकने की छलना में निरंतर जलता रहूं। बोलो भुवन मोहिनी, मैं चंद्रहासिनी के रूप की उत्पत्त गरिमा को बुझा दूंगा यदि तुम्हारा संबल प्राप्त हो। यदि एक बार तुम इस असमय के वैराग्य को ठुकरा सको, अन्यथा ये अतृप्त अनंत जीवन की वासना बनकर मुझे क्षुब्ध करती रहेगी, और मैं लुब्ध मधुप की भांति तुम्हारे रूप की यश गाथा को मन ही मन गुनगुनाते हुए उद्भ्रांत बना रहूंगा। मुझे चाहिए तृप्ति, तुम्हारे अक्षय यौवन के उपभोग की पूर्ण स्वीकृति, अन्यथा मैं मारिनी चंद्रहासिनी के साम्राज्य को ठुकरा दूंगा। चंद्रहासिनी को चाहिए सत्ता और शक्ति, वो उसे मैं स्वेच्छा से प्रदान कर विरक्त हो जाऊंगा। आज चंद्रहासिनी की गोद में साम्राज्य के सिंहासन का प्रतिनिधि खेल रहा है, वो उसके रंग में रंग कर मुझे भूल सकती है और मेरी उपेक्षा भी कर सकती है, किंतु तुम बोलो, क्या तुम भी मेरी उपेक्षा करना चाहती हो? क्या तुम भी मेरे जीवन में मात्र छलना सिद्ध होना चाहती हो? बोलो भुवन मोहिनी, बोलो, तुम मुझसे घृणा करती हो?
2: नहीं।
1: तुम मुझसे दूर भागना चाहती हो?
2: नहीं।
1: क्या तुम्हें मेरी वासनात्मक वृत्तियों के प्रति रोष है?
2: नहीं।
1: क्या कभी तुमने अंतर की निगूढ़तम प्रकोष्ठ में मेरी मूर्ति बिठाकर कभी पश्चाताप करना चाहा है?
2: नहीं।
1: क्या कभी तुमने मेरे लिए सर्वस्व उत्सर्ग ना करने की शपथ ली है?
2: कभी नहीं।
1: तो क्या कभी मेरी आसक्ति पर तुम्हें भय या रोष उत्पन्न हुआ था?
2: कभी नहीं।
1: क्या तुम सदैव मुझे देवत्व पर प्रतिष्ठित रखने के बोझ से दबी रही हो?
2: कभी नहीं देव।
1: तो क्या कभी तुम्हें चंद्रहासिनी के जीवन संगिनी बनाने का आंतरिक क्षोभ हुआ है?
2: कभी नहीं।
1: तब मायावनी, तब सच सच कहो, मेरी छाया से ही भयभीता बनकर मुझसे दूर क्यों भागती रही हो? क्या मुझसे प्रेम करने का तुम्हारा हार्दिक उल्लास

0: अब मर चुका है?
1: नहीं, किंतु
0: तुम्हें मेरी सौगंध है, मुझसे गोपनीय बनकर रहने की दृष्टता ना करना। मैंने तुम्हारे सम्मुख अपना अंतरपट खोल कर रख दिया है। मैं तुम्हें पाप पुण्य की भावना से विलख रख कर प्यार करता रहा हूं, और आज मैं प्यार के बदले प्यार ही चाहता हूं।
2: आप तो प्यार पा ही रहे हैं सम्राट, भुवन मोहिनी आपकी गोद में अल्लाह बालक से बच्चा क्यों रही है?
0: ऐसी ही बैठी रहो भुवन मोहिनी। साम्राज्ञी, तुमने मेरे एकांत में पहुंचकर भीषण अपराध किया है। सावधान, अब तुम्हें अपने किए का दंड भोगना ही पड़ेगा। देखो, नेत्रों में आग भर के देखो, आज से मेरी गोद में प्रणय लीला रचाने वाली भुवन मोहिनी पुनः प्रतिष्ठित हो चुकी है। तुमने मुझसे जो प्रणय दान चाहा था, वो भी भुवन मोहिनी का उच्छिष्ट था। भुवन मोहिनी की अनिच्छा देखकर भी मैं उसे अपने प्रेम दान से विभूषित करूंगा।
1: सम्राट,
0: भुवन मोहिनी,

0: हे मेरे जीवन के शत शत सहस्त्र लक्ष विद्रोह के स्फुलिंगों, तुम एक बार एकाकार होकर प्रलयंकारी महाज्वाल बनकर धधक उठो। हसीन वेदनाएं, अगणित निराशाएं, तीव्र जलन और घोर हाहाकार जीवन को इतना रुला चुका है कि अब आंसू सूख गए हैं। विद्रोह प्रबल हो उठा है, हमारी रग रग में एक ज्योति जलने लगी है। जीवन चाहता है कि उसी में भस्म हो जाए, मुट्ठी भर राख के अतिरिक्त कोई अवशेष न बचे। अपने भौतिक अस्तित्व पर अभिमान करने वालों को मैं बता जाऊं कि कैसे मरना होता है। आत्महनन करके मैंने जो पुण्य कमाया था वो तो मानो आत्मछल था, वो सर्वदा अपने आप को धोखा देती रही। किंतु आज अंतर तारों से जो चीतकार प्रतिध्वनित हो रहा है वो मानो करुणा सागर में जीवन की समाधि लगा देगा। चंद्रहासिनी के लिए मुझे अपने सुख का परित्याग करना पड़ा था, चंद्रहासिनी के लिए दान कर डाला था अपने प्रीतम प्रणय के अनंत बसंतों को। यदि मैं समझ पाती कि उस प्रतिदान का परिणाम आंसुओं में जीवन को विगलित कर देना है तो क्यों अपने मिलन भरे वसंत में पतझड़ लाती। काश मैं ना समझती कि प्रेम की पीड़ा से छटपटाने वाली एक सुंदरी राजकुमारी ने मेरे ऋतुराज को छीनकर अपना वसंत मनाया है। आज मैंने चंद्रहासिनी की दृष्टि में प्रेम की असहिष्णुता का दर्शन किया। वो तो मानो मेरे प्रणय की प्रतिस्पर्धिनी बनकर उग्र प्रतिकार के लिए तत्पर है। किंतु दूसरी ओर मेरे प्रियतम विजय श्रवा की आकुलता घुन सी मेरे जीवन की सुख शांति और समृद्धि को चूर चूर कर रही है। अब मेरे सामने मात्र दो रास्ते हैं, या तो मैं चंद्रहासिनी की सर्वत्र उपेक्षा करके विजय श्रवा के जीवन को मधुमेह वसंत की मादक हिलोरों से भर दूं, या अपने जीवन का अंत करके चंद्रहासिनी के लिए सर्वस्व उत्सर्ग कर जाऊं। परंतु यदि मैं उत्सर्ग करती हूं तो मेरे प्रिय का क्या होगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं देव के जीवन में सरस वसंत अनुप्राणित करने का एक बार प्रयास अवश्य करूंगी, भले ही मुझे चंद्रहासिनी की कोपाग्नि में भस्म ही क्यों ना होना पड़े।
1: सम्राज्ञी के महल के सभी दासों और परिचारिकाओं सुन लो, अब तुम्हें सम्राज्ञी की सेवा में लगे रहने की आवश्यकता नहीं है। चंद्रहासिनी, मैं आज तुम्हें दंड देने आया हूँ। बोलो, तुम्हें क्या दंड दिया जाए?
0: सम्राट,
1: मैं तुम्हें शारीरिक दंड न देकर मानसिक दंड दूंगा। मैंने तुम्हें साम्राज्ञी पद पर प्रतिष्ठित करके भयानक भूल की है। एक अकृतज्ञ नारी हो तुम,

0: से तुम साम्राज्ञी पद से वंचित की जा रही हो। मैं आज ही आदेश देता हूं कि समस्त साम्राज्य की प्रजा तुम्हें राजकुमारी चंद्रहासिनी के नाम से संबोधित करे, ना कि साम्राज्ञी।
1: नहीं सम्राट,
0: तुम्हें मेरे राज प्रासाद को भी त्यागना होगा।
1: परंतु सम्राट,
0: तुम्हें अपने राजकुमारी होने पर गर्व है ना, तो जाओ महाराज आदित्य सेन की लाडली बनकर इंद्रप्रस्थ के राजमहल को सुशोभित करो। तुम जैसी माननी के लिए धारा नगरी के राजप्रसाद में कोई स्थान नहीं है।
1: सम्राट,
0: मैं इस अंतःपुर की संरक्षिका को आदेश देता हूँ कि 24 घंटों के अंदर चंद्रहासिनी धारा नगरी के अंतःपुर का परित्याग कर दे।
2: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक भुवन मोहिनी का 9वां भाग।

0: 给
1: 没的人他打扮爱接的吗
0: 没的人他打
2: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक भुवन मोहिनी का नौवां भाग। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वह सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 3 दिवसीय गुना जिले के दौरे पर हैं। आज इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में आमजनों से मिलकर उनकी समस्या संबंधी आवेदन प्राप्त किए। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ यादव के मुख्य आतिथ्य में राजधानी भोपाल के रविन्द्र भवन परिसर में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में कई निर्णय लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज से 2 दिवसीय दौरे पर बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकरू जाएंगे। वह गांव वालों से बातचीत भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए जोधपुर और चेन्नई के बीच 27 जून से साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन रुठियाए, गुना, बीना, भोपाल और इटारसी स्टेशन से गुजरेगी। हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने इच्छुक लोगों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है। और भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थी 10 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। दोपहर के 1 बज रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला सभा। योगदान आकाशवाणी के रीवा केंद्र का है।

ऐसी कोमल चाल सी प्यारी, धरती की शोभा है हर नारी। उसकी हंसी में सावन गाए, उसकी ममता जग महकाए। नदियों से निर्मल उसकी धारा, जीवन में भर दे उजियारा। सूरज सा साहस, दीपक सा मान, नारी है सृष्टि की पहचान। हरियाली का संदेश सुनाती, प्रेम और करुणा की ज्योति जलाती। नारी और प्रकृति का यह नाता, सारे जग को सुख दे जाता। मैं तो इसी जोश रोमन के साथ हम फिर हाजिर है आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम महिला सभा लेकर। तो बहनों स्वीकार की जयश्ना का नमस्कार। बहनों जनगणना किसी भी देश की जनसंख्या, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति से संबंधित जानकारी एकत्र करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह कार्य सामान्यतः प्रत्येक 10 वर्ष में किया जाता है। मैंने जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर सरकार विभिन्न योजनाएं बनाती है और देश के विकास की दिशा निर्धारित करती है। मैंने जनगणना में महिलाओं की भागीदारी और उनकी सही जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि किसी भी समाज की प्रगति महिलाओं की स्थिति पर निर्भर करती है। मैंने लोग सोचते हैं जनगणना केवल देश के लोगों की संख्या जानने का माध्यम है, लेकिन बहनों जनगणना से यह पता चलता है कि देश में महिलाओं की साक्षरता दर क्या है, कितनी महिलाएं रोजगार से जुड़ी हैं और किन क्षेत्रों में महिलाओं को अधिक

सहायता की आवश्यकता है। इन आंकड़ों के आधार पर सरकार महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, मातृत्व लाभ, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता से संबंधित योजनाएं तैयार करती है। मैडम, हम महिलाओं को यह समझना आवश्यक है कि जनगणना केवल जनसंख्या की गणना नहीं है, बल्कि हमारे परिवार के बेहतर भविष्य का आधार है। मैडम, प्रत्येक महिला का कर्तव्य है कि वह 2027 में होने वाली जनगणना में जनगणना अधिकारी को सही और पूर्ण जानकारी प्रदान करे, साथ ही अपने परिवार और समाज की अन्य महिलाओं को भी जनगणना में सहयोग करने के लिए प्रेरित करे। मैडम, एक जागरूक महिला न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज के विकास में योगदान देती है, क्योंकि जब महिलाएं जागरूक होंगी और जनगणना में सहयोग देंगी तभी एक सशक्त समाज और विकसित राष्ट्र का निर्माण संभव है। अब आइए बहनों, मोहम्मद रफी की आवाज में सुन लेते हैं आराधना फिल्म का ये गीत।

0: में श्रिया पांडे से बातचीत करते हैं। श्रिया जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
1: नमस्ते, मैं श्रिया पांडे। जनगणना किसी भी देश के विकास की आधारशिला है। इसके बिना सरकार योजनाएं नहीं बना सकती और न ही जनता को क्या आवश्यकता है ये ठीक से समझ सकती है। इसलिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह जनगणना में अपना पूरा सहयोग दे। जनगणना किसी भी देश में रहने वाले लोगों की संख्या, आयु, लिंग, शिक्षा, भाषा, व्यवसाय, आवास आदि से संबंधित जानकारी को एकत्रित करने की एक सरकारी प्रक्रिया है। यह हर 10 वर्ष में कराई जाती है।
0: क्या जनगणना में महिलाओं की सही संख्या, सही स्थिति दर्ज होना आवश्यक है?
1: हाँ, महिलाओं की सही संख्या एवं स्थिति का जनगणना में, जिससे कि उनकी सामाजिक स्थिति का पता चलता है, वे सामाजिक रूप से कहाँ, उनकी क्या स्थिति है, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण और उनका जो लिंगानुपात है वो भी कितना बढ़ा या घटा, इसकी जानकारी के लिए उनकी सही, महिलाओं की सही जानकारी जनगणना में होना बहुत आवश्यक है, जिससे कि उनके लिए जो भी योजनाएं बनेंगी उनको बनाने में बहुत सहायता मिलती है।
0: महिलाओं और बच्चों के विकास में जनगणना की क्या भूमिका है?
1: महिलाओं एवं बच्चों के विकास में जनगणना की बहुत भूमिका है। महिलाओं के सही स्थिति महिलाएं एवं बच्चों के बारे में दर्ज होने से महिलाओं के विकास के लिए योजना बनाने में मदद मिलती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण एवं रोजगार संबंधी योजनाएं महिलाओं को पहुंचाने में बहुत सहायता मिलती है एवं महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए बेहतर नीतियां बनाई जा सकती है जनगणना के माध्यम से। एवं बच्चों के विकास में मात्र स्वास्थ्य एवं पोषण से जुड़ी योजनाएं बनाने में बेहतर सहायता मिलती है। महिला रोजगार एवं आर्थिक स्थिति की जानकारी के आधार पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाएं बनाई जा सकती हैं।
0: श्रेया जी, आपने हमारी बहनों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
0: बहनों। अच्छा स्वास्थ्य एक ऐसी व्यक्तिगत और सामाजिक अनुभूति है जिसमें महिलाएं अपने आप को सक्रिय, सृजनशील, समझदार तथा योग्य महसूस करती हैं, जिससे उनकी विभिन्न क्षमताओं व योग्यताओं को यथा योग्य सम्मान मिलता है। साथ ही निर्भीक रूप से अपने आप को अभिव्यक्त कर सकती हैं महिलाएं और जहां चाहे वहां आ जा सकती हैं और कठिन से कठिन कार्य करने में कभी पीछे नहीं हटती। मैंने अक्सर देखने में आता है कि खून की कमी मतलब एनीमिया की बीमारी भारत में महिलाओं और किशोरियों के सामने एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन गई है। महिलाओं, हमारे शरीर में पर्याप्त हीमोग्लोबिन या लाल रक्त कोशिकाओं की कमी होने पर हमें कमजोरी लगती है और थोड़ा सा काम करने तो थकान लगने लगती है, चक्कर आने लगता है, किसी काम में मन नहीं लगता जैसी समस्या होने लगती है। विशेष रूप से किशोरियों और गर्भवती महिलाओं में एनीमिया का प्रभाव अधिक देखा जाता है। मिशन उत्कर्ष 2026 का मुख्य उद्देश्य ये है कि एनीमिया से प्रभावित किशोरियों और महिलाओं में पोषण के स्तर को सुधारना व स्वस्थ जीवन प्रदान करना है। बहनों, इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य जागरूकता, पोषण संबंधी शिक्षा, आयरन की पूर्ति और नियमित स्वास्थ्य जांच पर ध्यान दिया जाता है। सरकार का लक्ष्य है कि एनीमिया मुक्त भारत के सपने को साकार किया जाए। मैंने खून की कमी मतलब एनीमिया होना, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमारे शरीर में आयरन की कमी, जरूरी पोषक तत्वों का अभाव, बार बार संक्रमण होने के कारण भी हमारा हीमोग्लोबिन का स्तर गिर जाता है। बहनों, आप सोचेंगे कि किस प्रकार का संक्रमण? बहनों, जैसे बार बार दस्त लगना, उल्टी होना, भूख न लगना, लगातार कई दिनों तक दस्त लगने से व्यक्ति की भूख भी मर जाती है और वह खाना ना मात्र का खाता है, जिस कारण शरीर कमजोर हो जाता, साथ ही हीमोग्लोबिन का स्तर गिर जाता है, व्यक्ति एनीमिक हो जाता है। यदि सही उपचार ना मिला तो यह मौत का कारण भी बन सकता है। मैंने मासिक धर्म के दौरान अत्यधिक रक्तचाप, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता में कमी भी एनीमिया का कारण बन सकती है। इसीलिए बहनों, सरकार द्वारा

विशेष ध्यान दिया जा रहा है। किशोरियों में खून की कमी की पहचान के लिए नियमित जांच कराई जाती है। आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियों का वितरण भी कर रही है सरकार। बहनों, संतुलित व पौष्टिक भोजन के प्रति जागरूक कर रही है सरकार, लेकिन माताओं बहनों को भी ध्यान देना चाहिए कि हर घर में माताओं के साथ साथ बेटियों को भी खास तौर पे पौष्टिक आहार प्रदान करें, क्योंकि आज की बेटी कल की माँ होती है और मजबूत नागरिक बनती है। बहनों, एनीमिया की समस्या दूर होने से शिक्षा कार्य क्षमता और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। लगभग 95,000 किशोरियों को इस कार्यक्रम से लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। बहनों, हम महिलाओं को यह प्रयास करना चाहिए कि घर में सभी को अच्छे से अच्छा पौष्टिक आहार प्रदान करें, जिससे किसी भी व्यक्ति को, बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, एनीमिया का शिकार ना हो वो। बहनों, यदि सरकार, समाज और परिवार एक साथ मिलकर इस अभियान को सफल बनाते हैं तो भारत निश्चित रूप से एनीमिया मुक्त और स्वस्थ भारत की दिशा में आगे बढ़ेगा। बहनों, आइए सुन लेते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में ये गीत।

मैंनो कभी कभी तला भुना खाते खाते मन ऊट सा जाता है, लगता है कुछ झटपट बनाकर खाया जाए जो हमारी सेहत के लिए भी लाभकारी है और हमारा पेट भी भर जाए और जो बच्चे बूढ़े जवान सभी को पसंद आए। बहनों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वादिष्ट दलिये की खिचड़ी। बनाने की विधि इस प्रकार है। हमें चाहिए एक कप दलिया गेहूं का, आधा कप मूंग की दाल, एक छोटी प्याज बारीक कटी हुई, एक छोटी गाजर बारीक कटी हुई, एक चौथाई कप हरे मटर के दाने, एक छोटा टमाटर बारीक कटा हुआ, एक छोटा चम्मच जीरा, एक चम्मच घी, आधा छोटा चम्मच हल्दी, स्वादानुसार नमक, चार कप पानी। बहनों, दलिया बनाना शुरू करते हैं हम। बहनों, दलिये को कढ़ाई में डालकर थोड़ा सा घी डालें और हल्का भूज लें। फिर मूंग की दाल को अच्छे से धो लें। आप कुकर में घी गर्म करें और जीरा डालें। जीरा चटक जाए तो उसमें प्याज को हल्का ब्राउन होने तक भूजें, फिर गाजर डालें और टमाटर डालकर 2 से 3 मिनट तक भूनते रहें। आप दलिया और मूंग की दाल डालकर 1 मिनट तक चलाएं। फिर हल्दी, नमक और पानी डाल दें। आप कुकर का ढक्कन बंद करके 3 से 4 सीटी आने तक पकने दें। कुकर के ठंडे होने पर खिचड़ी को अच्छी तरह मिला लें। फिर ऊपर से थोड़ा सा घी डाल दें, बारीक कटी हरा धनिया डाल दें। आप गर्मा गर्म दलिये की खिचड़ी दही या पापड़ हरी चटनी के साथ परोसें। यह स्वादिष्ट होने के साथ साथ शरीर को ऊर्जा देता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और जल्दी से पच जाता है। बहनों, आप लीजिए गर्मा गर्म दलिये का आनंद अपने पूरे परिवार के साथ। साथ ही सुन लीजिए ये प्यारा सा गीत जिसे गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने।

0: आकाशवाणी रीवा के उद्यान के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सभा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण होगा इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।

के 1:30 होने को है। अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत, प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की है। श्रोताओं, लोक संगीत में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं मुन्नी गंधर्वा का गाया गैलहई गीत।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 1:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। योगदान आकाशवाणी रीवा का है। श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम में आज आपको सुनवाने जा रहे हैं अखिलेश द्विवेदी द्वारा गाए कुछ गीत और भजन। तो आइए सुनते हैं अखिलेश द्विवेदी द्वारा गाया ये भजन।

अखिलेश द्विवेदी द्वारा गाया ये भजन अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत में। आइए अब आपको सुनवाते हैं अखिलेश द्विवेदी द्वारा गाया ये गीत।

0: श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं संपन्न होता है, जिसे आप सुन रहे थे आकाशवाणी रीवा के योगदान से। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
4: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दोपहर के 2 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं फिल्म अपना सपना मनी मनी का यह गीत। मीका सिंह की आवाज, शब्बीर अहमद के बोल और प्रीतम का संगीत।

आनंद राज आनंद और श्वेता पंडित की आवाजों में आइए सुनते हैं फिल्म वेलकम का ये गीत। आनंद राज आनंद के लिखे बोल और संगीत है अनजान सागरी का।

0: श्रोताओं, फिल्म वेलकम के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मेरा नाम शाहिद। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी भोपाल के रविन्द्र भवन में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव एमएसएमई इकाइयों को 225 करोड़ 19 लाख और स्टार्टअप को लगभग 39 लाख रुपए की राशि अंतरित करेंगे। समिट में 2000 से अधिक प्रतिभागियों, जिनमें एमएसएमई उद्यमी, स्टार्टअप, वित्तीय संस्थान, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एवं महिला व स्व सहायता समूह शामिल होंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। शुरुआत में यह सेवा राज्य के 14 प्रमुख शहरों में शुरू की जाएगी। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए गए।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे साथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख साथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज से 2 दिवसीय दौरे पर बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकरू जाएंगे। मुख्यमंत्री ग्राम पंचायत कुकरू में रात्रि चौपाल में ग्रामीणों से बातचीत करने के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। अगले दिन मुख्यमंत्री स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित गतिविधियों का अवलोकन करेंगे। वहीं पौधरोपण कार्यक्रम के बाद कॉफी प्लांटेशन का निरीक्षण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से गुना जिले के 3 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री सिंधिया ने आज सर्किट हाउस में लोगों से भेंट कर उनकी शिकायतें सुनी। उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कंजा गांव में पौधरोपण किया। श्री सिंधिया का रुठियाई क्षेत्र में एक सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 29 जून को नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें आरोग्य सेतु 2.0, आयुष्मान सारथी चैटबॉट, आयुष्मान ऐप, ई

0: फ्लैगशिप क्लिनिक, नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज और स्वास्थ्य मानक शामिल हैं। वहीं श्री नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद इसकी रफ्तार फिलहाल थम गई है। अगले 2 से 3 दिनों में इसके फिर सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, शहडोल और सागर संभागों के 43 जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में सिंहस्थ 2016 के अनुभव 2028 का संकल्प विषयक कार्यशाला का शुभारंभ किया। कटनी जिले में कल राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का व्यापक आयोजन किया जाएगा। खंडवा जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के प्रति जागरूकता के लिए आज विशाल रैली आयोजित की गई। नरसिंहपुर जिले में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: The Midday News.
2: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
4: $175 मिलियन इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 मिलियन पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात

0: मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसकी भी बातचीत होगा।
1: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
2: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है, एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
3: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
4: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
4: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे। तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि एनसीडीसी, इफको, क्रिप्को, एनडीडीबी, नाबार्ड, एनसीईएल, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
5: That is the only way that our MSME can go to the next level, and it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
1: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा

0: कारोबार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का शत प्रतिशत डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
1: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेश रूप से विकसित CuCi थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ सुकांत मजुमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमरी

अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले आईएनएस सुदर्शनी ने वर्जीनिया के नॉरफॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हूं मैं फिर एक बार, आपका रेडियो साथी ऋषभ आहूजा। श्रोताओं, आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करें और आपको गीत सुनवाते हैं फिल्म दे दनादन से। सैयद कादरी के लिखे इस गीत को आवाजें दी है राहत फतेह अली खान और सुजैन डिमेलो ने। संगीत है प्रीतम का और इस गीत के लिए हमें फरमाइश प्राप्त हुई है घंटाघर चौक खंडवा से। संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमंद्र और सन्मति पंचोलिया की। साथ ही हमें अगला खत इसी गीत के लिए मिला है सपना संगीता रोड इंदौर से। लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी मनन और तानिया का। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। कार्यक्रम के अगले गीत के लिए हमें फरमाइश प्राप्त हुई है कंवर कॉलोनी बड़वाहा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनुरा श्रीमाली का। साथ ही इसी गीत के लिए अगला खत हमें प्राप्त हुआ है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन का। तो आइए आपकी फरमाइश पर यह गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म बॉडीगार्ड से। शब्बीर अहमद और नीलेश मिश्रा के लिखे इस गीत को आवाजें दी हैं ऐश किंग और क्लिंटन ने, संगीतबद्ध किया है हिमेश रेशमिया ने।

कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हमें फरमाइश भेजी है अगले गीत के लिए ओम प्रकाश राय श्रीमती उषा राय अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने, साथ ही दुबिहा नेवदा गाजीपुर से प्रतीक राय श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय ने। इसी गीत के लिए अगला खत हमें मिला है गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधरे और आरती जोंधरे का। तो आपकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं कुर्बान फिल्म का ये गीत। निरंजन अयंगर ने इस गीत को लिखा है, सलीम सुलेमान का संगीत और आवाजें हैं सोनू निगम श्रेया घोषाल और सलीम मर्चेंट की।

श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म सिंघम से। श्रेया घोषाल और अजय की आवाजें हैं, स्वानंद किरकिरे के लिखे बोल और अजय अतुल का संगीत। इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और ज्ञानेंद्र कुमार वर्मा ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अगले गीत के लिए हमें फरमाइश प्राप्त हुई है महादेव घाट अमलेश्वर से। डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी, सूरज, ज्योति ठाकुर और बेबी रेहांश ठाकुर की। इसी गीत के लिए हमारा अगला खत प्राप्त हुआ है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी और दतेंगी से भागवत वर्मा। आइए सुनते हैं गीत फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से। आतिफ असलम और अलीशा चुनौय की आवाजें हैं, आशीष पंडित के लिखे बोल और प्रीतम का संगीत।

सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है। कमरुल्ला ठेकेदार नसीम बेगम, ऐशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया शोएब खान, पोत्रा मुस्तफा खान, राउफ भाई, शाहिद भाई और गांधीबाग अकोला से, रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर से। इनकी फरमाइश है फिल्म लव आजकल का ये गीत, जिसे गाया है राहत फतेह अली खान ने, इरशाद कामिल के लिखे बोल और संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने।

0: श्रोताओ, फिल्म लव आजकल के इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम

आयोजित किए जा रहे हैं। भोपाल के रविन्द्र भवन में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव एमएसएमई इकाइयों को 225 करोड़ 19 लाख और स्टार्टअप को लगभग 39 लाख रुपए की राशि अंतरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से गुना जिले के 3 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज से 2 दिवसीय दौरे पर बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकरू जाएंगे। वह गांव वालों से बातचीत भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 29 जून को नई दिल्ली में

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज से दो दिवसीय दौरे पर बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकरू जाएंगे। वह गांव वालों से बातचीत भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 29 जून को नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ करेंगे। और मौसम विभाग ने आज भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, शहडोल और सागर संभागों के 43 जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव डीटीएच न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव पर हमारी इस सभा के समापन से पहले आइए एक नजर डालते हैं सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। श्रोताओं, शाम की सभा के आगाज के साथ सुनिए युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी शाम 5:02 पर। प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की होगी। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए शाम 5:33, शाम 6:00 और रात्रि 8:35 पर। आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति के अंतर्गत ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण शाम 7:21 पर होगा। 7:45 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। रात्रि 8:00 सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ इस स्टूडियो पॉडकास्ट सीरीज का 7वां अंक आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। कार्यक्रम विज्ञान भारती का प्रसारण रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा। और संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज सुनिए प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन रात्रि 10:00। इस कार्यक्रम का प्रसारण भी आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा। ये थे आज शाम की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन, साथ ही वेव्स ओटीटी ऐप पर यह आकाशवाणी भोपाल है। दोपहर के 3:02 हुए हैं। मीडियम वेव पर अब हमारी यह सभा यहीं विराम लेती है। शाम की सभा के कार्यक्रमों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक डीटीएच पर यह प्रसारण जारी रहेगा।

0: मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज़ोन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को है। अब आज की हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं न्यूज हेडलाइंस, जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

0: है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भोपाल के रविन्द्र भवन में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव एमएसएमई इकाइयों को 225 करोड़ 19 लाख और स्टार्टअप को लगभग 39 लाख रुपए की राशि अंतरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशल्स रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से गुना जिले के 3 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 29 जून को नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ करेंगे और यूएस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत की देविका सहवाग और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। कैलिफोर्निया के फुलटर्न में महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में देविका ने जापान की रिको गुंजी को हराया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें। मीडिया में डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह प्रसारण है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का। अब प्रस्तुत है युवा धड़कनों को तरंगित करने वाला कार्यक्रम।

दोस्तों शुरुआत करते हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम युव वाणी की। मैं आपकी रेडियो दोस्त इशिका, नमस्कार। दोस्तों हम हर साल जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी परिणामों के साक्षी हैं, जो विश्व भर के समाजों को तबाह कर रहे हैं। नदियां घरों को बहा ले जाती हैं, फसलें नष्ट हो जाती हैं और लोग वर्षों की मेहनत से अर्जित संपत्ति को खो देते हैं। यानी जलवायु परिवर्तन हमारे अस्तित्व के लिए खतरा बन गया है। इसकी गति को धीमा करने के लिए टिकाऊ जीवन शैली की आवश्यकता है। इस टिकाऊ जीवन शैली के प्रति जागरूकता में हरित कौशल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दोस्तों हरित कौशल का तात्पर्य उन ज्ञान, क्षमताओं और दृष्टिकोणों से है जो पर्यावरण के संरक्षण और एक स्थायी संसाधन कुशल अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए आवश्यक है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को ऐसे व्यवहारिक और तकनीकी प्रशिक्षण देना है जिससे वो पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता से जुड़े क्षेत्रों में रोजगार या स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण के तहत वनों की रक्षा, वन्य जीव संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे कार्य आते हैं। हरित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ऊर्जा की बचत करना, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा के उपयोग और कम कार्बन उत्सर्जन वाली तकनीकों को बढ़ावा देना। दोस्तों भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कौशल भारत मिशन के तहत हरित कौशल विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। दोस्तों हरित कौशल विकास के लिए कई कोर्सेज भी कराए जाते हैं। इसमें युवाओं को पौधों की पहचान, वन अग्नि प्रबंधन, जैविक खेती और जल बजटिंग जैसे अल्पकालिक कोर्स कराए जाते हैं। दोस्तों अब करते हैं थोड़े से मनोरंजन और सुनते हैं ये गीत सिर्फ तुम फिल्म से उदित नारायण की आवाज में।

0: جیسے ہاں یہ میرے دلربا جیسے ہاں یہ میرے دلربا
1: दोस्तों आइए अब हम हरित विकास के विषय में जानते हैं युवा श्रोता राहुल द्विवेदी से।
2: हेलो दोस्तों, मैं हूँ राहुल। अक्सर जब भी हम तरक्की या विकास की बात करते हैं तो हमारे गांव में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, गाड़ियां और कंक्रीट के जंगल आने लगते हैं। सालों से हमें यह लगता है कि अगर प्रगति करनी है तो प्रगति की बलि देनी ही पड़ेगी, लेकिन आज हरित कौशल यानी ग्रीन स्किल्स इस पुरानी सोच को पूरी तरह बदल रहा है। ग्रीन स्किल्स का मतलब है एक ऐसी सोच और ऐसा हुनर विकसित करना जहां विकास भी हो और हमारी नदियां, हवा और मिट्टी भी सुरक्षित रहे। आज सस्टेनेबल आर्किटेक्चर से लेकर इको फ्रेंडली कोडिंग तक हर फील्ड में इसकी भारी डिमांड है। अगर हम आज ग्रीन स्किल्स नहीं सीखेंगे तो हमारे पास डिग्रियां तो होंगी लेकिन जीने के लिए साफ सुथरी हवा नहीं होगी। जी हाँ, आज पूरी दुनिया हरित कौशल की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी का क्षेत्र हो, वेस्ट मैनेजमेंट यानी कचरा प्रबंधन या फिर सस्टेनेबल फार्मिंग। इन सभी क्षेत्रों में एक्सपर्ट्स और कुशल युवाओं की भारी कमी है। कंपनी अब सिर्फ युवाओं को ढूंढ रही है जो ना सिर्फ अपने काम में माहिर हो बल्कि यह भी जानते हो कि कार्बन फुटप्रिंट को कैसे कम किया जाए। एक युवा होने के नाते अगर हम हमारे स्किल्स को सीख लेते हैं तो हम ना सिर्फ अपने करियर को एक नई ऊंचाई देंगे बल्कि अपने इस खूबसूरत पृथ्वी के प्रति अपना फर्ज भी निभाएंगे। वो सिर्फ नौकरी पाने का एक जरिया नहीं है बल्कि भविष्य को सुरक्षित करने का एक आंदोलन है। असली समझदारी इसी में है कि हम ऐसी तकनीक सीखें जो हमारे बिजनेस को बढ़ाए और हमारे पर्यावरण को भी। याद रखिए, प्रगति वही है जो प्रकृति को साथ लेकर चले, वरना वो प्रगति विनाश में बदल दे देनी बनाती। इस बारे में जरूर सोचिए। शुक्रिया
1: दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत गुरु फिल्म से श्रेया घोषाल की आवाज में।

दोस्तों भारत सरकार की एक ऐसी महत्वाकांक्षी पहल है जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश को अनुसंधान विकास और नवाचार में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाना है। दोस्तों मैं बात कर रही हूँ राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के विषय में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित ये मिशन सुरक्षित संचार, उन्नत कंप्यूटिंग और सटीक नेविगेशन के विकास पर केंद्रित है। ये एक 8 वर्षीय मिशन है 2023 से 2030-31 तक। क्वांटम तकनीक के 4 प्रमुख क्षेत्रों क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार, क्वांटम सेंसिंग और क्वांटम सामग्री में अनुसंधान के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान और विभिन्न आईआईटी संस्थानों में विशेष हब स्थापित किए गए हैं। 5 से 8 वर्षों में 50 से लेकर 1000 भौतिक क्यूबिट तक मध्यम स्तरीय क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने का लक्ष्य है। इसका उद्देश्य उपग्रहों के माध्यम से 2000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक भारत के भीतर ग्राउंड स्टेशनों के बीच पूरी तरह से सुरक्षित क्वांटम संचार स्थापित करना है। दोस्तों वर्तमान में पारंपरिक एन्क्रिप्शन सिस्टम क्वांटम कंप्यूटरों के हमलों से असुरक्षित हो सकते हैं। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग प्रणाली को हैक प्रूफ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोस्तों आप सुनते हैं ये गीत नमक हलाल फिल्म से आशा भोसले की आवाज में।

दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे अगले स्तंभ रोजगार सूचना की ओर। भारतीय नौसेना ने एसएससी अधिकारी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रस्तुत किए हैं। ये भर्ती 275 पदों के लिए है। प्रारंभिक तिथि 25 जून 2026 और आखिरी तिथि 27 जुलाई 2026। उम्मीदवारों का जन्म 2 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2008 के बीच का होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता बीई या बीटेक 60% अंकों के साथ। अगली भर्ती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर के पद के लिए। कुल 1500 पद हैं। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 18 जून 2026, आखिरी तिथि 8 जुलाई 2026। न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु 30 वर्ष। शैक्षणिक योग्यता है किसी भी स्ट्रीम में स्नातक। दोस्तों अब सुनते हैं ये गीत आंधी फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में।

0: दोस्तों अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलने से पहले आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है हमें जरूर बताइएगा। आप अपनी शिकायतें और अपने सुझाव हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है yuvvaadiriva@gmail.com। तो फिर मिलने के वादे के साथ अपनी रेडियो दोस्त इशिका यानी मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ संध्या।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे युवाओं के लिए कार्यक्रम युवावाणी। प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
2: नशोर दिन रात, नशोर दिन

कार्यक्रम का पहला गीत लिया था इनकार से, आवाज शिवानंद करकरे की, गीत था शिवानंद करकरे का। और लीजिए आप सुनिए खिलाड़ी 786 फिल्म का गीत, आवाज है मिक्का सिंह और समीर का, गीत है हिमेश रेशमिया का संगीत।

मिल्खा सिंह की आवाज में अभी आपने सुना खिलाड़ी 786 फिल्म का गीत। गीत था समीर का, संगीत दिया था हिमेश रेशमिया ने। और लीजिए सुनिए जावेद अली की आवाज में राशिद खान का लिखा हुआ गीत। फिल्म का नाम है राज 3।

जावेद अली की आवाज में अभी आपने सुना राज थ्री का फिल्म गीत लिखा था राशिद ने, फिल्म संगीत के अंत में सुनते हैं। राजधानी एक्सप्रेस फिल्म का ये गीत, आवाज है उदित नारायण की, रमेश का गीत है, रितेश नलानी का संगीत।

उदित नारायण की आवाज में अभी आपने सुना राजधानी एक्सप्रेस फिल्म का गीत। इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज जोन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए हमारे केंद्र से आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण सुनिए। सबसे पहले इस सभा के शेष कार्यक्रम। शाम 6 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम बच्चों में जरूरी टीकाकरण। प्रायोजक होंगे डॉ RS त्रिपाठी। बुंदेली लोक गीतों का कार्यक्रम लोकधारा का समय रहेगा शाम 6:30। इसमें आज आप सुनेंगे राम प्रसाद कुशवाहा के गाए हुए बुंदेली लोकगीत। ग्रामीण भाई ग्राम सभा में 7:20 पर सुनेंगे श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम हेलो लोकरंजन। प्रस्तुति रविन्द्र कुमार प्रजापति की होगी। साथी होगी आज की सीख, विषय होगा जड़ों में मठा भरत। रात 8 बजे भोपाल से हम अनुप्रसारित करेंगे सुर्खियों में 8:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 9:15 पर आप सुनेंगे स्पॉटलाइट जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे और 9:30 पर दिल्ली से हम रिले करेंगे राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती और रात 10 बजे संगीत का अखिल भारती कार्यक्रम। ये तो थे सभा के शेष कार्यक्रम और लीजिए सुनिए कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

कल हमारी प्रातःकालीन सभा में 7:20 पर हिंदी महक में आप सुनेंगे वार्ता बुंदेली लोकगीतों की लुप्त होती विधाएं। वार्ताकार होंगे मनमोहन पांडे। फिल्म संगीत का प्रसारण किया जाएगा 7:30 पर शाम 5:30 पर और रात 8:00। 8:30 पर संग्रहालय से में आप सुनेंगे कृष्णानंद गुप्त से बातचीत। बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग का समय रहेगा 9:00। इसमें कल आप सुनेंगे स्वदेश यादव के गाए हुए बुंदेली लोकगीत। फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश आप सुनिएगा 9:30 पर। प्रस्तुति होगी रविंद्र कुमार प्रजापति की। और 10:30 पर आप सुनेंगे पत्वोत्तर का साप्ताहिक कार्यक्रम भक्ति। प्रस्तुति रविंद्र कुमार प्रजापति की होगी। 11:00

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का प्रसारण किया जाएगा। दिन में 2:30 पर बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा का प्रसारण किया जाएगा। इसमें कल बच्चे सुनेंगे आयु पांडे और आयुश्री पांडे से भजन, साथ ही होगी रोचक जानकारी मछलियों का अद्भुत संसार। शाम 5:02 पर युववाणी का प्रसारण किया जाएगा, जो आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति होगी। शाम 6:00 भजन संध्या में कल आप सुनेंगे अनुराधा पौडवाल को। बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा का समय रहेगा। शाम 6:30 इसमें कल आप सुनेंगे सहोद्रा कुशवाहा के गाए हुए बुंदेली लोकगीत। ग्रामीण भाई ग्राम सभा में 7:20 पर सुनेंगे धारावाहिक चिठिया देवर भौजाई की। वाचन होगा प्रीति पित्रे का, प्रस्तुति होगी शंभुदयाल अहरवार की। साथ ही आप सुनेंगे एक वार्ता मध्य प्रदेश राष्ट्रीय बांस विज्ञान की खेती अनुदान एवं विपणन की जानकारी। वार्ताकार होंगे हर्ष गुप्ता। साथ ही होगी आज की सीख। दिल्ली से कल हम रिले करेंगे 9:15 पर स्पॉटलाइट और 9:30 पर नेशनल साइंस मैगजीन रेडियो स्कोप, और रात 10:00 आप सुनेंगे अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा। ये तो थे हमारे केंद्र से आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 5:58 होने को है। न्यूज हेडलाइंस कुछ ही क्षणों में हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

0: नरेन्द्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में कहा कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देशभर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भोपाल के रविन्द्र भवन में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने एमएसएमई इकाइयों को लगभग 225 करोड़ और स्टार्टअप को लगभग 39 लाख रुपए की राशि अंतरित की। संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से गुना जिले के 3 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 29 जून को नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत कल 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, शहडोल और सागर संभागों के 43 जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है फिल्म संगीत।

इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर आर एस त्रिपाठी, चाइल्ड केयर क्लिनिक रामाजी नगर, एक्सीलेंस क्रमांक एक स्कूल के पीछे, छतरपुर मध्य प्रदेश। जन्म से लेकर 18 वर्ष के बच्चों के बेहतर इलाज हेतु छतरपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चाइल्ड केयर क्लिनिक रामाजी नगर, एक्सीलेंस क्रमांक एक स्कूल के पीछे, छतरपुर मध्य प्रदेश। संपर्क करें डॉक्टर आर एस त्रिपाठी, पूर्व सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय छतरपुर। मोबाइल नंबर 9425304891, 9425304891। श्रोताओं, 17 जून 2026 से 26 जून 2026 तक नशा मुक्त भारत अभियान भारत सरकार द्वारा संचालित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान जिला चिकित्सालय द्वारा नशा मुक्त भारत हेतु रैली निकाली गई, साथ ही उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक एक छतरपुर के 400 से अधिक छात्र छात्राओं द्वारा रैली निकालकर लोगों को नशे से दूर रहने के सुझाव दिए गए। नशे से दूर रहने के लिए हमें जरूरी है नशा बिल्कुल ना करें और इससे दूर रहें। इस अवसर पर संगीतमय प्रस्तुति देते हुए आप हैं कवि ईश्वरी प्रसाद मिश्रा।

0: जन्म से लेकर 18 वर्ष के बच्चों के बेहतर इलाज हेतु छतरपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चाइल्ड केयर क्लिनिक रामाजी नगर एक्सीलेंस क्रमांक 1 स्कूल के पीछे छतरपुर मध्य प्रदेश। संपर्क करें डॉक्टर आर एस त्रिपाठी, पूर्व सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय छतरपुर। मोबाइल नंबर 9425304891 9495304891 9425304891। इस अवसर पर अपने विचारों के साथ आप हैं कवि ईश्वरी प्रसाद मिश्रा।
1: हमारे भाई सभी लोग सुने, नशा किसी प्रकार का भी नशा, चाहे वो तम्बाकू का हो, चाहे गांजा का हो, चाहे अफीम का हो, चाहे चरस का हो, चाहे बीड़ी का हो, ये सभी प्रकार के नशा नुकसानदायक हैं। शरीर को नुकसानदायक तो है ही, पर जो घर गृहस्थी में एक पैसा नहीं बच पाता, क्योंकि रोज 50-100 रुपया 200 रुपया नशा के लिए चाहिए, वही 200 रुपया का हम घर में सब्जी ला कर रख दें, दूध ला कर रख दें, घी ला कर रख दें, बच्चों की पढ़ाई में लगाएं, हैं, तो हमारा शरीर भी सुंदर होगा और हमारा परिवार भी सुंदर होगा। वो पढ़ लिख करके देश के काम में आएंगे, समाज के काम में आएंगे, जहाँ से निकल जाएंगे अलग देखेंगे कि हमारे मोहल्ला के फलाने जा रहे हैं।
2: गुरुजी, नशा व्यक्ति का सामाजिक और मानसिक पतन करता है। जब समाज में कई उदाहरण आपके बीच में होंगे कि नशा कर करके या कुछ भी गलत आदत में आके उन्होंने पूरा जीवन मिटा दिया, तो लोगों से क्या समझाइश आप देना चाहेंगे, लोग सचेत रहे? कई केस आपने देखे होंगे कि नशे की गिरफ्त में लोग अपराध कर देते हैं।
1: ये आपका कहना बिल्कुल सच है कि जो नशा करते हैं वो अपना परिवार तो नष्ट ही कर देते हैं, और जो समाज के अगल बगल के लोग रहते हैं उन्हें भी दूषित करते हैं। हमारे लिए इसी प्रकार से जैसे पांव में कोई कुल्हाड़ी मार ले, नशा करके विचित्र विचित्र हो जाए, कहीं नाली में पड़े हैं, कहीं चिल्ला रहे हैं, बिना वजह किसी को गाली दे रहे हैं, बोले हम तो नशा में हैं, हम तो नशा में हैं। अरे भाई, ऐसे नशा करने से हमारा घर बिगड़ता है, हमारा समाज बिगड़ता है, हमारा शरीर बिगड़ता है, हमारी संपत्ति नष्ट होती है, तो ऐसा नशा नहीं करना चाहिए। इसलिए हमने समझाइश किया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, पाय में जही पर लोक सुधारा, बड़े 84 के चक्कर में पड़ करके बड़े मनुष्य का शरीर मिलता है, बड़े भाग से मिलता है। जब कोई अच्छी करनी बन गई अपन से तो मनुष्य का शरीर मिल गया। तो सभी जीवों में से, सभी जीव जंतुओं में से मनुष्य का शरीर बुद्धिमान माना जाता है, और उस शरीर को नशा में अगर लिप्त कर दिया जाए, जुआ में लिप्त कर दिया जाए, लौट की आए सो घरवाली के जेवर बेच दिया जाए नशा के लिए, अरे इस प्रकार की प्रताड़ना करना नहीं करना चाहिए। इसलिए परहित सर से

हमारे जो हमें अच्छा लगता हो वही दूसरे के साथ उपयोग करें। जो हमें गाली बुरी लगती है हम दूसरे को गाली क्यों दें? हम किसी को हमें कोई प्रताड़ना करे तो हमें बुरा लगेगा, तो इसी प्रकार से हम दूसरों को

0: ताना नशा के माध्यम से क्यों करें, यही हमारे समझाए सर।
1: श्रोतों, नशा कैसे व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक पतन के साथ साथ स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, साथ ही किस तरह से बीमारियां हो सकती हैं और व्यक्ति कैसे काल के गाल में समा जाता है, इससे दूर रहने के सुझाव देते हुए आप हैं सेवानिवृत्त सिविल सर्जन डॉक्टर आर एस त्रिपाठी।
2: देखिए, देश में नशा व्यापक रूप से उपयोग हो रहा है और इस नशे के द्वारा अपनी युवा पीढ़ी और युवा पीढ़ी के परिवार बहुत तनाव में रहते हैं और देश की प्रोडक्टिविटी घट रही है, परिवार की प्रोडक्टिविटी घट रही है, समाज की प्रोडक्टिविटी घट रही है और समाज में मतलब आपराधिक घटनाएं भी एक नशा का एक दुष्परिणाम होती है। विभिन्न प्रकार के नशे युवा वर्ग आजकल आकर्षित हो रहा है या उनको आकर्षित कराया जा रहा है, ये देश के लिए समाज के लिए बहुत अधिक घातक है और हर व्यक्ति के लिए घातक है, फिर ना सिर्फ व्यक्ति विशेष के लिए पूरे देश के लिए ही घातक है। इसलिए देश में 17 जून से 26 जून तक नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जाता है, राष्ट्रीय लेवल पर चलता है ये, और इसमें शासन के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम रखे जाते हैं, जैसे छात्रों की रैली निकाली जाती है, जन जागरूकता अभियान चलाया जाता है, गाँव गाँव में शहरों शहरों में इसके शिविर लगाए जाते हैं और अन्य बहुत सारी चीजें होती हैं।
3: नशा मुक्त भारत हो अपना ऐसे जन जागरूकता के नारे लगे, रैली निकली, लोगों को एक अच्छा संदेश दिया गया, इसके स्वास्थ्य पर क्या दुष्परिणाम है और कैसे ये समाज को नुकसान पहुंचा रहा है?
2: देखिए,
3: ये
2: नशेली चीजें को कई वर्गों में बांटा जा सकता है। जो सबसे ज्यादा कॉमन नशा है, जो आम जनमानस करता है, वो है शराब का सेवन, और शराब का सेवन जो युवा पीढ़ी करती है, इससे शराब से शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है जिस पर वो प्रभाव न डालता, पर इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है लीवर पर। लगातार शराब पीने वाले व्यक्तियों के लोगों को जो लीवर में सिरोसिस का डर रहता है, और सिरोसिस ऐसी प्राण घातक बीमारी है जो लाइलाज होती है, उसको लीवर ट्रांसप्लांट के द्वारा ही ठीक होता है। तो ये इसके अलावा पेट में अल्सर होना, आंतों में जलन होना, गुर्दों में खराबी आना, हार्ट में खराबी आना, ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ जाना, हार्ट रेट बढ़ना, हृदय की अनियमित गति हो जाना, मानसिक संतुलन बिगड़ता है, मानसिक स्थिरता नष्ट होती है, ये शराब और परिवार को तबाह कर देती है, परिवार कर्ज में डूब जाता है, घर परिवार बर्बाद हो जाते हैं। शराब अपने आप में बहुत खतरनाक नशा है, किडनी का फिल्टर रेट घट जाता है, जिससे गुर्दों का फेल होने का डर बना रहता है, बाद में गुर्दे फेल हो जाते हैं तो गुर्दा को बदलना पड़ता है या जिंदगी भर डायलिसिस कराना पड़ता है, इतने दिन तक जिंदगी रहेगा।
3: कई तरह के और भी नशे आमतौर पर किए जा रहे हैं, तो और नशों के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, नशा है कैसे हमें ये पतन की ओर ले जाता है और कौन कौन से नशा व्यक्ति कर रहा है?
2: नशों को अगर बांटा जाए तो अल्कोहल हो गया, एक तम्बाकू, शराब, खाने वाले कई लोग मौत के अचानक शिकार भी हो जाते हैं, जरा सी ओवरडोज होने पर सांस की गति रुक जाती है, धीमी हो जाती है, हार्ट रेट घट जाती है और हार्ट फेल हो जाता है। कुछ होते हैं जैसे उत्तेजक पदार्थ होते हैं, जिसमें आदमी अत्यधिक उत्तेजना महसूस करता है, भले ही खुशहाल मौसम ना हो या खुशहाल अंदर से ना हो, लेकिन खुशहाल दिखाई देता है। इसके लिए जैसे कोकीन है, एम्फिटामिन है, तो ये सब हार्ट में जो गतियां हैं हार्ट की, हृदय गति को अनियमित कर देते हैं और अनियमित गति हो जाती है, ब्लड प्रेशर की अनियमितता बढ़ जाती है, कभी कभी बहुत तेजी से बढ़ा देते हैं, कभी कभी तेजी बढ़ा देते हैं कि ब्रेन हेमरेज हो जाता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। और इसके साथ साथ में आजकल युवा पीढ़ी एक इनहेलेंट्स की ओर झुक रही है, जैसे जो सूंघे जाते हैं, जैसे छिनर है, टूट जाते हैं, छिनर को भी लोग सूंघते हैं, ये भी एक नशा है। मैंने तो आयोडेक्स लोगों को खाते और सूंघते भी देखा है, तो ये भी एक नशा है। खाने और दूसरे
3: दुष्परिणाम
2: सांस बिल्कुल भयंकर दुष्परिणाम है। और ये आजकल तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि ये खांसी का सिरप आता है, इसको भी नशे के रूप में उपयोग कर रहे हैं, उसकी भी निर्धारित खुराक होती है, और यदि उससे ज्यादा पिएंगे तो लीवर, किडनी, हार्ट और ब्रेन सब में उसका दुष्प्रभाव होगा, और दुष्प्रभाव होने की मात्रा इतनी ज्यादा होगी कि अगर वो लगातार वो कुछ वर्षों तक लेते रहे तो या हार्ट अटैक होगा या ब्रेन हेमरेज होगा।
3: ऐसे कई केस आए हुए समाज में जो देखे हुए कि व्यक्ति नशा करता रहा, उसके बाद उसका लीवर खराब हुआ, फिर वो बचना मुश्किल हो गया।
2: लीवर खराब के उदाहरण तो हर गांव में, हर घर में, हर जगह मिल जाएंगे, हर शहर में मिल जाएंगे। अब किसी व्यक्ति का नाम बताना तो उचित नहीं लगता, पर हमारे छतरपुर शहर का ही अभी 3 वर्ष पहले जो अच्छे खासे संस्थान का मालिक था, वो लीवर

0: लिवर में ही मरा है, वो शराब भी बहुत पीते थे, नियमित पीते थे, डेली पीते थे, उनको डॉक्टर द्वारा मना किया गया, उसके बावजूद भी नहीं माने। फिर उनका लीवर, वहाँ पर लीवर ट्रांसप्लांट हुआ, लीवर ट्रांसप्लांट होने के बाद लीवर ट्रांसप्लांट फेल हो गया और उनकी डेथ हो गई। तो शराब के दुष्परिणाम और शराब के ही कारण प्रतिदिन मेरे स्वयं में, मैं दूसरी जगह के लिए नहीं कहता, जो मैंने व्यक्तिगत आंखों से देखा है कि 20 साल से 30 वर्ष का युवा प्रतिदिन 2 या 3 लड़के एक्सीडेंट से जिला चिकित्सालय में भर्ती होते हैं। शराब के कारण मृत्यु एक्सीडेंटल डेथ है, उनमें से आधे से ज्यादा में शराब ही उत्तरदायी है। शराब का सेवन करना तो समाज के लिए और घर परिवार के लिए, भाई जिसके घर में एक ही लड़का है, तगड़ा फैमिली लेकर के वो शादी में जा रहे हैं, वो भी जा रहा है, भाई भी जा रहा है, बहनोई भी जा रहा है, और वो पता चला कि वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाते हैं और दोनों परिवार हो जाती है, तो जो उनके डिपेंडेंट हैं उनकी क्या स्थिति होती होगी। ये ज्यादा में शराब ही उत्तरदायी है। शराब का सेवन करना तो समाज के लिए और घर परिवार के लिए, भाई जिसके घर में एक ही लड़का है, तगड़ा फैमिली लेकर के वो शादी में जा रहे हैं, वो भी जा रहा है, भाई भी जा रहा है, बहनोई भी जा रहा है, और वो पता चला कि वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाते हैं और दोनों परिवार हो जाती है, तो जो उनके डिपेंडेंट हैं उनकी क्या स्थिति होती होगी ये समझिए।
1: डॉक्टर साहब, अब हम जानेंगे, जैसे लोग बाग शौक के रूप में गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, और जैसे जीभ है, गला है, और इसमें ये रख लेते हैं ताकि उन्हें लगे कि हम ये गुटखे से हमें फायदा होगा।
0: तंबाकू का सेवन अपने बुंदेलखंड में तो वैसे भी बहुत ज्यादा है, और जब से ये गुटखा आ गया है, गुटखे का प्रचलन इतना ज्यादा है कि लोग ओंठ और जीभ के बीच में दबा लेते हैं।

0: तंबाकू, गुटखा आदि का बीड़ी का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही अल्कोहल शराब इत्यादि को पीना चाहिए।
1: अगर युवाओं की बात करें तो ये जो अभियान हम चला रहे हैं इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि जो युवा पीढ़ी है वो नशे की गिरफ्त से दूर रहे। क्या कारण होते हैं कि व्यक्ति इसके ऊपर खिंचता है और फिर वो छोड़ नहीं पाते?
0: देखिए, कुछ लोग तो इसको शौक या शुरू करते हैं और इसके जो खाने के तरीके हैं वो बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। कुछ लोग क्या करते हैं, उसके गुटखे को गद्दी में रख करके रगड़ देते हैं, फिर उसकी सुपाड़ी सुपाड़ी खा लेते हैं, तो वो कंपैरेटिवली कम नुकसानदायक होता है। बस जैसा कि पूरा पूरा गुटखा खोल के मुंह में डाल लेते हैं तो वो गुटखा के अंदर केमिकल रहता है, रासायनिक पदार्थ रहते हैं, एसिड्स रहते हैं, उसी की वजह से मुकस मेम्ब्रेन जलती है और वही जाकर के कैंसर का कारण बनती, उसी वजह से मुंह खुलना कम हो जाता है। जो सिस्टमेटिक इफेक्ट होता है, मतलब इतनी शॉर्ट पीरियड में सब नहीं बताया जा सकता, या शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं है जहाँ पर भी गुटखे का दुष्प्रभाव ना पड़ता हो, चाहे वो आंखें हो और चाहे आप, ऐसा कोई अंग नहीं है जहाँ गुटखे का दुष्प्रभाव ना पड़ता हो। गुर्दे से लेके हार्ट से लेके लीवर से लेकर के सब कुछ प्रभावित होता है।
1: इसमें सर कई तरह की भ्रांतियां हैं, लोग कहते हैं कि वो सुपारी खाने से, जर्दा खाने से कम नुकसान है, तो इसको कैसे आप बताना चाहेंगे?
0: ना जर्दा खाना अच्छा है और ना गुटखा खाना अच्छा है। गुटखा की अपेक्षा सुपारी वर खाना, सुपारी लौंग इलायची खाना, जो कि यहाँ से परंपरागत पहले से चलता रहा है, हद तक सेफ है, लेकिन खाने की तरीके पर निर्भर करता है। आप खाइए, चबाइए और थूक दीजिए तो वो उतना हानिकारक नहीं है जितना ज्यादा हानिकारक है मुंह में डाल करके बनाए रखना। होठों के जीभ में जीभ और दाल के बीच में दबाए रहते हैं और बातें करते रहते हैं, वो वहाँ पर उसको अल्सर बना देता है, वही बाद में फाइब्रोसिस होती है, मुंह खुलना बंद हो जाता है, वही बाद में नॉन हीलिंग छाला बन जाता है, जो ठीक नहीं होता उसे भी बदल जाता है, बाद में कैंसर में निकल आता है।
1: बात करेंगे अल्कोहल की, कई तरह की भ्रांतियां लोगों में, पर कई तरह से ये नशे लिए जा रहे हैं। जैसे लोग सोचते हैं कि बियर जो आता है आजकल कोल्ड ड्रिंक टाइप का, उससे नुकसान नहीं होता, तो इस संदर्भ में कुछ बताएं लोगों को कि इसका कैसे नुकसान?
0: उन लोगों के द्वारा उड़ाई हुई बातें हैं जिनको उस चीज का ज्ञान नहीं है। अल्कोहल तो होता ही है, अलग बात है कि शराब के जो बड़े मेन ब्रांड से होते हैं, जैसे विस्की है या जो नए रम है इत्यादि वगैरह या देसी शराब है, उसके अपेक्षा बियर में अल्कोहल की मात्रा कम रहती है, लेकिन रहती तो है ही है। दूसरी चीज, बियर ब्लड ग्लूकोज लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ाती है, अल्कोहल तो जा ही रहा है और डायबिटीज वालों का शुगर लेवल भी बढ़ाती है, दूसरा ये प्री डायबिटिक को डायबिटिक भी कर देते हैं जो नियमित पीने वाले हैं। इसी प्रकार के कंफ्यूजन न पाले, बियर पी रहे थे शराब नहीं पी रहे थे, क्योंकि बियर पीने के बाद भी नशा होता है, ये अलग बात है कि कम आय होता है, लेकिन जब इतनी ज्यादा पी जाएंगे तो नशा तो करेगी।
1: स्वास्थ्य पर क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं? सुनने में कई तरह की बातें आती हैं, तो उसके जो एक्चुअल प्रभाव है अल्कोहल के, तो उसमें कौन कौन से अंग प्रभावित हो सकते हैं?
0: शरीर, मैं बता रहा हूँ, शरीर का एक अंग ऐसा नहीं है जो न प्रभावित होता हो। सबसे ज्यादा प्रभावित होता है लीवर। लीवर में, लीवर के जो सेल्स होते हैं, लीवर आपके शरीर की एक्चुअली फैक्ट्री है। आप भोज्य पदार्थ जो कुछ भी खाते पीते हैं वो लीवर में जाके प्रोसेसिंग होती है उसकी, वहीं की लीवर के जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो आपके बॉडी की पूरा फिनोमेना जो है ना, बॉडी एक्टिविटी, पूरे सिस्टम चेंज हो जाता है। उनकी सेल्स के डैमेज होने से जो घातक बीमारी होती है वो फाइब्रोसिस ऑफ द लीवर, जिसको कहते हैं सिरोसिस ऑफ द लीवर होती है। और सिरोसिस का देखिए कोई इलाज नहीं होता, जो सेल्स होते हैं लीवर के सेल्स, मतलब कड़े हो जाते हैं, फाइबर जैसे एक तरीके से ऐसे हो जाते हैं जैसे धागा होता है, उनमें ब्लड की सप्लाई घट जाती है, तो उनका कार्य प्रभावित हो जाता है। जो कार्य प्रभावित हो जाएगा तो वही तो अपने शरीर को हर चीज प्रदान कर रही है। लीवर गया, लीवर के जाने से गुर्दा भी जाएगा, क्योंकि लोड पड़ेगा ये गुर्दे में भी जाके, तो गुर्दे की फिल्ट्रेशन क्षमता घटेगी, हार्ट के लिए जाएगा, हार्ट में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा जाएगी, ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाएंगे, ब्लड वेसल्स की जो कैविटी है, जो नली है, वो सिकुड़ जाती है, ब्लड की सप्लाई हार्ट में घट जाती है, शरीर की क्षमता मनुष्य की वर्किंग कैपेसिटी घट जाती है, मानसिक सोचने की क्षमता घट जाती है। जब तंत्रिका तंत्र में जाता है तो तंत्रिका तंत्र का जो सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करता है, डोपामिन का सिक्रेशन कम होता है, मानसिक अस्थिरता बढ़ती है, उत्तेजना बढ़ती है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, अस्थिर मस्तिष्क रहता है, आंखें देखेंगे तो आप उसकी कंजेस्टेड और रेड आंखें भी दिखाई देंगी, धीरे-धीरे रेटिना आंखों में दिखाई देना भी कम हो जाता है, रेटिनोपैथी आंखों में कहा जाए तो रेटिनोपैथी का कारण बनता है, हार्ट में कहा जाए तो यानी इरेगुलर हार्ट बीट का कारण बनता है, ब्लड प्रेशर का कारण बनता है, ब्रेन हेमरेज का कारण

0: होगा। गुर्दों में देखा जाए तो रीनल डैमेज हो जाता है, गुर्दा कम्प्लीटली क्रोनिक रीजन फेलियर हो जाता है, लीवर जाता ही है, पेंक्रियाज का पार्ट डैमेज होता है, जो पेंक्रियाटिक सेल्स डैमेज होते हैं तो डायबिटीज की तरफ चांसेज जाते हैं। पेट का देखो आंतों में तो आप आंतों का अल्सर बनता है क्योंकि इसमें जलन पद्रूल पदार्थ होते हैं। खाली पेट आप जो शराब पीते हैं और साथ में कुछ खाते पीते नहीं है उनके पेट में अक्सर अल्सर का ही कारण बन जाते हैं, अल्सर ही होता है उनका। क्षमता इसलिए बढ़ जाती है कि नशे में पड़े रहते हैं, खाना पीना मिलता नहीं, खाते नहीं। अल्कोहल का प्रभाव शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं है जहाँ पर न पड़ता हो, और जब अल्कोहल के प्रभाव दूसरी चीज सामाजिक प्रभाव देखिए तो घर का परिवार बर्बाद हो जाता है। जो 100 रुपए की रोज शराब पी जाएगा, अब 500 रुपए घर में कमा रहा है तो घर में बचे 400 रुपए, अब 400 रुपए में पूरा घर अपना खाना पीना भोजन उसके साथ 100 रुपए उड़ा देता है तो उसका नुकसान ये है कि सामाजिक नुकसान बहुत ज्यादा है, घर की पॉवर्टी बढ़ती है। बीघा जिसको कहें 200-150 एकड़ वाले किसानों को भूमिहीन होते देखा है, शराब के कारण, सिर्फ शराब के कारण 200-250 बीघा जमीन के जो किसान थे मालिक उनको भूमिहीन होते देखा है, अपनी आंखों से देखा है। आज भी कोई भी चल के देखा मैं बता रहा हूँ, जहाँ जिनके मकान महल जैसे बने हैं लेकिन आज उनके लड़के ट्रैक्टर चलाते हैं दूसरे का, तो ये शराब का नुकसान घर पूरे परिवार को तबाह कर देता।
1: डॉक्टर साहब, सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही है लगातार नशे के कारण, अल्कोहल हो या कोई दूसरा मादक पदार्थ जो व्यक्ति सेवन करता है फिर वो आप आंख देता है, यानी उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती।
0: शराब पीने के बाद में मनुष्य को ये प्रभाव ये हो जाता है कि जिसको कहते हैं यूफोरिया का मतलब उसको भय समाप्त हो जाता है, अपने आप को बहुत ज्यादा वो बादशाह समझने लगता है, तो वही कपूर कल्पित बादशाह बन जाता है वो, तो वो उसको लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उस पीरियड में चूंकि उसको भय खत्म हो जाता है तो मोटरसाइकिल या कार कुछ भी हो उसका नियंत्रण उसके ऊपर नहीं रहता, कि उसको ये मालूम नहीं रहता कि मैं किस स्पीड पे आ रहा हूँ, आगे से भी कोई गाड़ी आ रही है। सिगरेट पीना शुरू करेगा वो, उसके जिन सज्जन लोगों के साथ घूमता फिरता है उनमें से कोई ना कोई शराब भी पी रहा होगा, तो उसको फुसला करके पुचकार करके एक दिन दो दिन कह रहे एक घूंट पी लो करके उसको आदत डाल देगा, फिर धीरे धीरे उसके पैसे से पीने लगेंगे, जब शराब पीने लगेंगे तो खान पान भी बदलेगा। अब उनको शौक लग जाती है, चलिए अब गांजा पी लेते हैं, बीड़ी जा सिगरेट तो वो पी लिया, अब गांजा पी लें तो सिगरेट में गांजा भर भर के पिलाने लगते हैं लोग, उसका वादी हो जाता। आजकल तो युवा वर्ग का लड़का अपने मन से नस में इंजेक्शन लगा लेता है, अपने हाथ से इंजेक्शन लगा लेता है और एक सेकंड के अंदर लगा लेते दुष्परिणामों का, तो भाई नशा तो नशा है, ये ब्रेन को तो प्रभावित करेगा ही, और जैसे वो समय पर नहीं मिल पाता उसको एडिक्टेड हो जाते हैं। स्कूल कॉलेज के आस पास ये ड्रग हैंडलर्स को नजर रखी जाना चाहिए, कॉलेज हो या स्कूल हो, हायर सेकेंडरी स्कूल हो या कॉलेज हो, आसपास किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ की दुकान नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी गुटखे की दुकान नहीं होना चाहिए। बच्चे स्कूल जाते हैं वास्तव में गुटखा खरीदते हैं फिर स्कूल जाते हैं, तो अध्यापक वर्ग का भी कर्तव्य बनता है कि उन पर देखें कि अगर वो बच्चा गलत आदतों का आदि हो रहा है तो उसको समय पर रोका जाए, उसके पेरेंट्स को खबर बताई जाए। शासन अपने स्तर पर जो मैक्सिमम प्रयास कर रहा है वो कर रहा है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि अब दवाइयां भी ऐसी आ गई हैं जिनसे उस दवा को लेने, अगर वो दवा नहीं मिलता है तो नशा करने की उसकी इच्छा घट जाती है, तो इसका इनका उपयोग करें, शासन की योजना का उपयोग करें, जो बहुत ज्यादा आदि हो चुके हैं, भयंकर एडिक्टेड है, नशा मुक्त केंद्र में जाकर के भर्ती हो जाए, या रिहेबिलिटेशन सेंटर है वहाँ भर्ती हो जाए, फ्री में भर्ती हो जाना, फ्री का इलाज होना, फ्री का खाना मिलना, फ्री की दवाइयां दे, प्रशासन तो अपने तरफ से भरसक प्रयास कर रही है, जनता में भी धीरे धीरे जागरूकता आ रही है, काफी लोग नशा मुक्त केंद्र जो अपना जिला चिकित्सालय बना है वहाँ काफी लोग जाते हैं जो दवा कराने जाते हैं, इसलिए इसको एक तरफ बनाया गया है कि वहाँ लोगों को जाने में संकोच, शुरू में तो लोग जाओ संकोच करते थे, अब वो खुल के बताते हैं।
1: लोग सचेत रहें और स्वयं भी जागरूक रहें, दूसरों को जागरूक करें।
0: मैं अपने समाज को, भारतीय समाज को ये कहना चाहता हूँ कि गुटखा तम्बाकू बीड़ी सिगरेट और शराब इनसे कृपया दूर रहें, क्योंकि आम आदमी के पास इनकी पहुँच बराबर है। अत्यंत गहरी नशीली दवाइयाँ हैं जैसे कोकेन वगैरह है, मॉर्फिन है, एम्फेटामिन वगैरह, इन तक आम पब्लिक की पहुँच नहीं रहती, लेकिन जो कॉमन पहुँच है हर व्यक्ति इन तक पहुँच जाता है, वो इन दुष्प्रवृत्तियों से दूर रहें और अपने परिवार को और खुद को सुरक्षित रखें।
2: जन्म से लेकर 18 वर्ष के बच्चों के बेहतर इलाज हेतु छतरपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चाइल्ड केयर क्लिनिक रामाजी नगर एक्सीलेंस क्रमांक 1 स्कूल के पीछे छतरपुर मध्य प्रदेश। संपर्क करें डॉक्टर आर एस त्रिपाठी, पूर्व सिविल सर्जन।

0: जिला चिकित्सालय छतरपुर, मोबाइल नंबर 9425304891, 9425304891। श्रोताओं, आइए नशे को आज ही ना कहें और नशे से होने वाले दुष्परिणामों से लोगों को अवेयर करें, जागरूक करें, साथ ही स्वयं भी नशा छोड़ें और लोगों को भी इससे दूर रहने की सलाह दें। इसी के साथ ही ये प्रायोजित कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। प्रस्तुतकर्ता रविन्द्र कुमार प्रजापति। जन्म से लेकर 18 वर्ष के बच्चों के बेहतर इलाज हेतु छतरपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चाइल्ड केयर क्लिनिक रामाजी नगर एक्सीलेंस क्रमांक 1 स्कूल के पीछे छतरपुर मध्य प्रदेश। संपर्क करें डॉक्टर आर एस त्रिपाठी, पूर्व सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय छतरपुर, मोबाइल नंबर 9425304891, 9425304891। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे डॉक्टर आर एस त्रिपाठी, पूर्व सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय छतरपुर, चाइल्ड केयर क्लिनिक रामाजी नगर एक्सीलेंस क्रमांक 1 स्कूल के पीछे छतरपुर मध्य प्रदेश।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से प्रसारित किया गया। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। इसमें आज के कलाकार हैं राम प्रसाद कुशवाहा। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं राम प्रसाद कुशवाहा से लेत गीत।

0: लेट गीत अभी आपने सुना राम प्रसाद कुशवाहा के स्वर में।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
0: और लीजिए सुनिए विदाई गीत, कलाकार एक बार फिर राम प्रसाद कुशवाहा।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: साक्षरता गीत अभी आपने सुना रामप्रसाद कुशवाहा के स्वर में।
1: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
2: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हील्स, मंदिर की माता।
0: बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा का प्रसारण आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से किया जा रहा है। इसमें आज आप सुन रहे हैं रामप्रसाद कुशवाहा के गाए हुए बुंदेली लोकगीत। लीजिए सुनिए वृक्षारोपण पर आधारित ये लोक रचना।

0: वृक्षारोपण पर आधारित ये लोक रचना भी आपने सुनी राम प्रसाद कुशवाहा के स्वर में।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
0: और लीजिए सुनिए ढिमरियाई।

लोक रचना भी आपने सुनी है राम प्रसाद कुशवाहा के स्वर में। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं गारी।

राम प्रसाद कुशवाहा के गाए हुए गारी गीत के साथ ही बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा अब समाप्त होता है। संगत करने वाले कलाकार थे ढोलक पर मुकेश रजक, बैंजो पर जब्बार खान, झींका पर बाबू रैकवार। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए गुमशुदा संबंधी सूचना सुनिए। खोए हुए व्यक्ति का नाम है हरमान सिंह तोमर। इनकी उम्र लगभग 71 वर्ष है। पिता का नाम है रुस्तम सिंह तोमर, निवासी ग्राम मरोरा, थाना कुठौंद, जनपद जालौन। इनका हुलिया इस प्रकार से है, रंग सांवला, लंबा चेहरा, नाक कान आंख औसतन व लंबाई करीब 6 फुट, सफेद कुर्ता, सफेद पैजामा एवं सफेद साफी डाले हुए हैं, जो दिनांक 10 सितंबर को समय लगभग 4 बजे से घर से चले गए हैं, जो अभी तक घर नहीं आए हैं, जिसकी गुमशुदी थाना कुठौन जनपद जालौन में अंकित कराई गई है। जिस किसी सज्जन को पता चले तो निम्नलिखित मोबाइल नंबरों पर सूचित करने की कृपया करें। मोबाइल नंबर है शेरा सिंह तोमर 6393530750, यानी 6393530750। थानाध्यक्ष कुठौंड का मोबाइल नंबर है 9454403600, यानी 9454404030।

दूसरे गुमशुदा व्यक्ति की सूचना सुनिए। नाम है प्रीति, पुत्र पुत्री हैं ये स्वर्गीय श्री मुरली प्रसाद, निवासी ग्राम पोष मदारी पोत, थाना उठौंद, जिला तहसील जालौन, उत्तर प्रदेश। इनका उलिया, उम्र करीब 19 वर्ष, रंग गेहुआ, चेहरा गोल, माथे पर चोट का निशान, लंबाई 4 फुट के लगभग है, गुलाबी शर्ट लोअर पहनी है। जो दिनांक 19 मई 26 को समय करीब 3 बजे दोपहर से घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं, जिनकी गुमसुदी थाना कुठौंद जनपद जालौन में अंकित कराई गई है। जिस किसी सज्जन को इनके बारे में सूचना मिले तो कृपया इन नंबरों पर संपर्क करें। थाना अध्यक्ष कुठौंद, इनका मोबाइल नंबर है 9454403600, यानी 9454403600। क्षेत्राधिकारी जालौन का नंबर है 9454401, यानी 9454401428। गुमशुदा संबंधी सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7:10 होने को है प्रादेशिक समाचार, कुछ क्षणों में हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मध्य

नमस्कार, समाचारों के साथ मिराना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में होंगे शामिल। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री ने कहा, मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान करेगा स्थापित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। और राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत कल 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। सेशल्स की राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी ने उनका हार्दिक स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्र

0: करीबी साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशेल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा का उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री सेशेल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वह सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविन्द्र भवन भोपाल में आयोजित सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने एमएसएमई इकाइयों को लगभग 225 करोड़ रुपए की विभिन्न स्टार्टअप्स को लगभग 39 लाख तथा वृद्ध उद्योगों के लिए 1274 करोड़ की प्रोत्साहन राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश विदेश की अग्रणी कंपनियां मध्य प्रदेश में लगातार निवेश कर रही हैं। हमें विश्वास है कि आने वाले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश देश के शीर्ष तीन अग्रणी राज्यों में अपनी सशक्त पहचान स्थापित करेगा।
1: आने वाले पूरे पांच साल के होते होते हम निश्चित रूप से तीन प्रमुख राज्यों में से शामिल होंगे। जिस प्रकार से हमारी गति चल रही हर एक क्षेत्र में, और केवल यहाँ नहीं, कनाडा, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया, ये सबको मिला लो तो जो हमने एमओयू किए थे और वो लगभग 9300 करोड़ से अधिक का निवेश अब ग्राउंड ब्रेकिंग में पहुंचा। हमारे पास कनाडा की मैकमैन फूड कंपनी आगरमालवा में 3800 करोड़ का काम कर रही, ये एग्रीकल्चर के सेक्टर में बड़ा काम कर रही।
0: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देशभर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। आज गुजरात के गांधीनगर में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी के उद्घाटन सत्र में श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे चालकों को उनके पारिश्रमिक का अधिक से अधिक हिस्सा मिलेगा और यात्रियों को भी सुरक्षित तथा किफायती यात्रा का लाभ मिल सकेगा।
2: मैं आज इस मंच से कह देना चाहता हूं, हम तो डेढ़ दो साल में 500 से ज्यादा शहर में पहुंच जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। हर जगह हम पहुंच जाएंगे, हम नागपुर पहुंचेंगे, पुणे पहुंचेंगे, मुंबई पहुंचेंगे, लखनऊ, चंडीगढ़, जयपुर, कोलकाता। 31-7 के पहले सातों स्थान पर भारत टैक्सी पहुंच जाएगी और दो साल के अंदर छोटे बड़े मिलाकर हम 500 शहरों के अंदर, कस्बों के अंदर हमारी टू व्हीलर, ऑटो और फोर व्हीलर का कंसेप्ट लॉन्च करने जा रहे हैं।
0: संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से गुना जिले के तीन दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री सिंधिया ने आज सर्किट हाउस में लोगों से भेंट कर उनकी शिकायतें सुनी। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत कंजा गांव में पौधरोपण किया। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में सिंहस्थ 2016 के अनुभव 2028 का संकल्प विषय पर आधारित कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यशाला में सिंहस्थ 2028 के सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन के लिए अधोसंरचना विकास, विभिन्न विभागों की कार्ययोजना व समन्वित तैयारियों पर व्यापक मंथन किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ 2028 को भव्य, दिव्य और

सुव्यवस्थित बनाने के लिए उज्जैन में विकास कार्य निरंतर जारी है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत कल 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जन समुदाय में इस अभियान के प्रति जागरूकता के लिए आज विशाल रैली आयोजित की गई। कटनी जिले में भी कल राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का व्यापक आयोजन किया जाएगा। अभियान के दौरान जिले के 5 वर्ष आयु वर्ग के सभी 1,73,700 से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। भिंड जिला टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें 5 वर्ष तक के लगभग 2,70,000 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। शिवपुरी जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा पल्स पोलियो अभियान को लेकर आज जन जागरूकता रैली निकाली गई। नरसिंहपुर जिले में इस अभियान के अंतर्गत 1,58,945 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। मंदसौर में अभियान के प्रति जागरूकता के लिए शहर के प्रमुख मार्गों से रैली निकाली गई। प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद इसकी रफ्तार फिलहाल थम गई है। अगले 2 से 3 दिनों में इसके फिर सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, शहडोल और सागर संभागों के कई जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में पंचायत सांवेर की ग्राम पंचायत कदवाली बुजुर्ग में जल गंगा संवर्धन अभियान 2026 का समापन समारोह आयोजित किया गया। मंदसौर में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जबलपुर के 2 प्रमुख कृषि उत्पाद मटर और सिंगाड़ा को भारत सरकार की ओर से भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के अवसर पर खंडवा जिले के ग्राम बलखड़ में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिवपुरी जिले में कल श्रमायुक्त संदीप GR ने माधव चौक का भ्रमण कर श्रमिकों से सीधे संवाद किया। आयरलैंड और भारत के बीच 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का 2रा और अंतिम मैच कल खेला जाएगा। राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा ICJS कार्यान्वयन और डिजिटल एकीकरण विषय पर कल 1 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में किया जाएगा। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य अंतर संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली के तहत पुलिस अभियोजन न्यायालय जेल फॉरेंसिक एवं स्वास्थ्य विभाग के मध्य डिजिटल समन्वय और डेटा इंटर ऑपरेबिलिटी को सुदृढ़ बनाना है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला प्रसारण होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज वन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। ग्रामीण भाइयों के लिए प्रस्तुत है ग्राम सभा कार्यक्रम।

0: ग्राम सभा कार्यक्रम सुनने वाले सवई बहन भैया हरन खा, खुशी बहन
1: और नंदनी बहन की
0: राम राम। देखो भैया बहन और बेरा भैया और हम अपन सभी को मन पसंदीदा कार्यक्रम लेके हाजिर हो गए। नंदनी बहन अब हुई है बातचीत गीत संगीत और इसके संगे संगे हुई है कछु चर्चाएं, यानी सब बातन के संगे बढ़ाओ थे कार्यक्रम खा आगे। और नंदनी बहन देखो जब हम आज थोड़ी बाहर निकल के गए थोड़ी काम हतो उते देखो कि घरे घरे कोनू के घरे सिलाई मशीन चल रही, कोनू एक बहन के घरे गए सुबह पापड़ बना रही थी। हमने बहन इतने सारे पापड़ कहती हाओ बहन इनको हम बना के और फिर बाजार में बेचा थे ले जाता आदमी हमारे पास से। और बहन सिल रही थी सुबह भी उन्ना सिल रही थी सबके। तो देखो हमने उनसे पूछी कि जे व्यवसाय अपने हो रहे हैं घर से, तो घर से अपने काम चालू हैं, तो वे बोलती हाँ शुरू भी है और देखो सरकार द्वारा अनुदान भी दो जात।
1: बिल्कुल खुशी बहन, तो देखो अपने भैया बहन उनको सरकार द्वारा लेके और अपन को ऐसे कछु छोटे छोटे अपन उद्योग धंधे कर सका जो घर ही में बैठ के कर सका।
0: बिल्कुल,
1: अब जैसे अपन बात कर रही थी कि सिलाई, तो सिलाई को काम है, कढ़ाई है, बुनाई है, पापड़ बनाबो, अचार बनाबो, दुनिया भर के हैं। तो अपनी बहनन को फालतू नहीं बैठने,
0: बिल्कुल
1: चाहे भैया हो चाहे बहन है,
0: हाँ।
1: तो सब जनन को अपने काम धंधे में लगू रहा।
0: बिल्कुल नन्नी बहन, और देखो ऐसे ही जिस अपने छोटे छोटे सूक्ष्म गए सूक्ष्म लघु उत्तम और मध्यम दिवस हर साल 27 जून को यानी आज के दिन मनाओ जाते, जो छोटे छोटे काम अपन करत है एक जो दिन आज को है अपनों।
1: और देखो खुशी बहन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा छोटे छोटे व्यवसायों के लाने और देखो वैश्विक अर्थव्यवस्था रोजगार सतत विकास में मान्यता देवी के लाने जो रोजगार चलाओ गाओ है।
0: बिल्कुल, मतलब आज के दिन इन छोटे छोटे व्यवसाय को अपन ऊपर उठाएं, मतलब जी व्यवसाय अपन का बड़े रूप में विस्तार करें, सरकार को मान्यता दे रही है और उन व्यवसाय को बढ़ावा दे रही है, किलाने कछु अनुदान भी देते जिसे बहनन का कछु अर्थव्यवस्था उनकी भी सुधरे और उसे देश की भी अर्थव्यवस्था सुधरे।
1: इको उद्देश्य भी जो ये है कि देखो स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर गरीब भैया बहन है जो उद्यमों की भूमिका के लाने उनको उजागर कर वो है।
0: बिल्कुल,
1: और जो देखो इसकी शुरुअत का भाई थी
0: 21 अप्रैल 2017
1: को प्रस्ताव पारित करके 27 जून को जो घोषित करोगा।
0: बिल्कुल, तो देखो जो अपने भैया बहन हैं जो छोटे छोटे घर से काम कर रहे हैं उनको उनके लाने उनका बढ़ावा देवी के लाने जो आज को दिवस मनाओ जात है और भारत की अर्थव्यवस्था का मजबूत करवे के लाने भी जो दिवस मनाओ गए है। कैसे कि अगर जे स्तर जे अपने सूक्ष्म लघु वाले रोजगार बढ़े अच्छे स्तर हुई है उनको, तो देखो अर्थव्यवस्था अपनी सुदृढ़ हुई है यानी मजबूत हुई है, उसे अपने देश को भी विकास हुई है, अपन सवाई को विकास हुई है।
1: बिल्कुल, जैसे हस्तशिल्प है, हथकरघा है, खाद्य प्रसंस्करण करण है, इंजीनियर है, ये सब इके में शामिल होते हैं।
0: बिल्कुल नन्नी बहन, तो देखो अपने घर से जो भी व्यवसाय अपनी बहनें कर रही हूँ अपने आस पास में जाके पता करें कि इके लाने कौन सी अपनी सरकार द्वारा शासन वो चलाई गई है उनके लाने योजना, तो उसे अपने अनुदान लेके यानी लाभ लेके अपने स्तर का और आगे बढ़ाएं और देखो खुद लाभ कमाएं और अपनी देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत बनाएं।
1: बिल्कुल
0: नंदिनी बहन, देखो अपनों बतका तो होते ही रहे, मिल रहे हैं तनक से अंतराल के बाद।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
3: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कैंसर हिल्स।
1: और खुशी बहन देखो संदेशन के बाद फिर स्वागत करते हैं अपन के भैया बहनों को ग्राम सभा कार्यक्रम में। और देखो आज है शनिवार, शनिवार के दिन देखो अपने भैया बहन इंतजार कर रहे होंगे अपने मन पसंद कार्यक्रम हेलो लोकन। तो अब अपन को सुनवा रहे हैं भैया बहन को हेलो लोकन।
0: बिल्कुल, तो अपने भैया बहन हरे श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित बुंदेली लोकगीतन को फरमाइशी कार्यक्रम हेलो लोकरंजन। और देखो आज के लोकरंजन कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है रविंद्र कुमार प्रजापति जी। सुने भैया बहन हरो कार्यक्रम हेलो लोकरंजन।

0: उसे पहले बता दें अपन ई कार्यक्रम के फोन नंबर।
1: बिल्कुल भैया बहन, आरो ई कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार का दिन में 3 बजे से लेके 3:30 बजे तक के बीच अपन सब जने करवा सकते हैं। इके लाने जो हमारे फोन नंबर है वे है 29 80 29
0: और दूसरा नंबर है 24 15 88।
1: छतरपुर से बाहर के भैया बहन हरे, छतरपुर को एसटीडी कोड लगावो ना भूले। छतरपुर को एसटीडी कोड नंबर है 076782।
0: और भैया बहन हरे, देखो ई कार्यक्रम को प्रसारण शनिवार के दिन ग्राम सभा में करो जात है।
1: बिल्कुल, तो भैया हरो देखो जे बजन लगे अपन सभी जनन की फोन।
0: और ई कार्यक्रम की प्रस्तुति है रविन्द्र कुमार प्रजापति जी की। और उठाऊ थे जो पहला फोन, कौन भैया बहनन को आओ है? हेलो, लोकरंजन से।
2: नमस्ते बहन जी।
0: नमस्ते भैया।
2: हम बोल रहे हैं मोहाल जंटपुरा पनवाली जिला महोबा उत्तर प्रदेश से, देवीदीन हरवाल बात कर रहे हैं बहन जी।
0: जी भैया, देवीदीन जी और किको का लोग की सुन रहे हैं आज?
2: आज हमें जगदीश जोशी जी का सुनवा दो। हाँ, बहुत अच्छी गाय उन्होंने।
0: जगदीश जोशी?
2: हाँ
0: ठीक है, ये सुनवा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं अपन अब?
2: और बहन जी बस गर्मी इस समय ज्यादा पड़ रही है। हाँ, और मौसम मौसम कैसा वहाँ का?
0: पानी तो अभी बरसो नहीं है, आपके तो बरसो है?
2: नहीं बरसो बहन जी, एक दिन थोड़ा थोड़ा हल्को झिम झिम हो गया था।
0: माने सिलाई के अलावा और क्या करे?
2: और थोड़ा कृषि का काम भी करते हैं घर का।
0: खेती किसानी की तैयारी हो गई अपन की, बोने की?
2: हाँ, थोड़ा पानी का इंतजार कर रहे तो खेत तो बखर गए थे इस समय, लेकिन बुवाई नहीं हो पा रही, पानी की प्रॉब्लम है।
0: चलो भगवान पानी जरूर बरसा है, अपन की बोनी हो है। और बीज की तैयारी कर ले,
2: भगवान जब रक्षा करे जब दोपहर। हाँ, बीज आज मूंग का बीज लाए, मूंग होती है ना मूंग, वो लाए हैं, मूंग और लाए हम वही बो देंगे।
0: अच्छा ठीक है भैया। देवी जी अपन को हम सुनवा रहे हैं जगदीश जोशी को गाओ भाजो लोकगीत।

0: लोक रंजन
1: हेलो लोक रंजन कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहन हरण खा अपनी खुशी बहन
2: और नंदनी बहन की
1: राम राम। भैया बहन हरो देखो बीरा भाई और हम अपन सभी जन को मन पसंदीदा कार्यक्रम हेलो लोक रंजन लेके हाजिर हैं
2: और खुशी बहन देखो कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं।

0: हेलो, स्वागत है अपन को लोक रंजन कार्यक्रम में भैया।
1: जी बहना जी, प्रणाम नमस्कार।
0: बिल्कुल, और सबसे पहला तो जो बताओ कि अपन कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं।
1: जी बहना जी, मैं राजू यादव, ग्राम उपरेका, श्रीरामपुर डेरा, सरीला राठ मुस्करा, हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश।
0: राजू जी, अपन ने आज ई कार्यक्रम में फोन लगाओ तो सबसे पहला तो अपनी फरमाइश बताओ आप।
1: बहना जी, हम उनका सविता यादव की आवाज में कोई विवाह गीत सुना दीजिए बहन।
0: अच्छा, सविता यादव की आवाज में अपन खा कोनो भी विवाह गीत सुनने। भैया देखो, अपन खा सुनवाऊ थे हम सविता यादव के स्वर में जो गीत, राम राम
1: राम राम।

0: हेलो लोकरंजन
1: भैया, स्वागत है लोकरंजन में अपन को।
0: महाराज पुरा से महेश कुमार बोल रहे।
1: अच्छा महेश कुमार जी, सबसे पहले अपन अपनी फरमाइश बताओ जी के लाने अपन ने फोन करो है।
0: हमको दीदी सुनना है शालिग्राम पटेल को की नारी महान।
1: बिल्कुल, शालिग्राम पटेल के स्वर में अपन खा गीत सुनने तो और एक संगे संगे देखो अपन रेडियो तो सुना ही रही, संगे संगे अपन और का करत
0: कर रहे
1: हैं। ठीक है भैया, तो देखो अब आपके कहे अनुसार हम अपन खास सुनवा रहे हैं शालिग्राम पटेल जी को जो गीत।

0: हेलो
1: हेलो लोकरंजन
0: लोकरंजन कार्यक्रम में स्वागत है भैया आपन को। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: दीदी ग्राम पोस्ट कालगांव तहसील भांडेर जिला दतिया मध्य प्रदेश दीदी मेहरबान सिंह नांगल बोल रहे हैं।
0: जी मेहरबान जी, अपन आजकल क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो अपनी बातचीत हो जाए।
1: जी बिल्कुल दीदी, बस खेती बाड़ी को काम करते हैं और पशुपालन भी करें और
0: तो
1: बस कार्यक्रम सुनते रहते आकाशवाणी छतरपुर। सभी कार्यक्रम अच्छे आ रहे दीदी।
0: बिल्कुल,
1: एक से बढ़ के कार्यक्रम आ रहे हैं आकाशवाणी छतरपुर से। सभी कार्यक्रम हम सुनते हैं, लोक मंजरी है, रमतुला है।
0: तो जा तो बहुत उमदा बात है कि देखो अपन आकाशवाणी छतरपुर के कार्यक्रम सुना, तो इसके संगे देखो अपन कामकाज भी जारी रखे। तो देखो भैया, जैसे कि अपन ने बताई अपन खेती किसानी करा, तो अपने खेत की तैयारी अपन ने कर ली है अगली फसल के लाने की? नहीं
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल फसल की तैयारी, धान की खेती करेंगे दीदी। अब से बिल्कुल जुताई उताई हो गई है और अब मानसून आने वाले हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो बस आप धान की खेती करेंगे।
0: पशुधन में अपन कौन कौन से पशु पाले हैं भैया?
1: तो भैंस क्या है,
0: हाँ।
1: एक दो बकरियां भी हैं, तो आराम से खेत पे ले जाओ, उसको आराम से चरा दे, अपनी खेती बाड़ी से जुड़े।
0: बिल्कुल ठीक है भैया, बहुत अच्छा लगो अपन से बात करके। अपन खा के को लोकगीत सुनवाना है आज?
1: मुन्ना लाल सैनी की आवाज में कोई सा भी लोकगीत सुनवा दे।
0: तो अपन की पसंद पे हम अपन खा सुनवा रहे हैं जो लोक रचना मुन्ना लाल सैनी के स्वर में।
1: जी बिल्कुल दीदी, धन्यवाद।
0: बिल्कुल, राम राम भैया।

0: हेलो भैया, लोकरंजन से बोल रहे हैं।
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोल रहा है दीदी। मनोज नामदेव।
0: मनोज नामदेव
1: जी? हाँ दीदी
0: जी। भैया स्वागत है अपन को। और की को गा लोकगीत सुनवा दे आज?
1: हाँ बिल्कुल दीदी, लोकगीत तो हम सुनाई ले हैं। हाल चाल आपके ठीक ठाक है दीदी?
0: बिल्कुल अपन के ठीक ठाक है। और
1: बहुत ही बहुत बढ़िया है दीदी, हमें हाल चाल तो कहानो और आपको आशीर्वाद कहानो भगवान की कृपा से, हम बहुत ही बहुत बढ़िया है।
0: बिल्कुल भैया। और बाल बच्चा पढ़वे जा रहा है? स्कूल तो खुल गए?
1: बिल्कुल नहीं नहीं बिल्कुल दीदी, बाली बच्चा तो हम बराबर स्कूल पहुंचा रहे हैं। ना माया तो बिल्कुल जो नहीं है कि अब स्कूल खुले, स्कूल तो खुल गया एक महीना पहले से।
0: तो स्कूल तो जाने लगे हैं।
1: और आपको कार्यक्रम ग्राम सभा तो हम लोग जो समझ लो इतना चित्र से सुनाते हैं कि कमों नहीं छोड़ा है हमने आपको कार्यक्रम।
0: तो ग्राम सभा के अलावा वो कौन कौन से सुनता है? सब सुनत?
1: बिल्कुल, हम तो आपको रोज ही जो समझ लो के कोनो कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि हमने आपको मिस करा हुआ है। और की में आपको कार्यक्रम प्रोग्राम में आप आ जाओ दीदी, फिर तो ऐसा लगाते ना है कि का

0: बिल्कुल भैया, धन्यवाद। और भैया फरमाइश बताओते अपनो।
1: हाँ बिल्कुल दीदी, आज हमें सुनवा दो देशराज पटेरिया जी की आवाज में, बढ़िया सा लोग सुनवा दो।
0: बिल्कुल भैया, हम जरूर सुनवा है अपन को। और भैया आप क्या करत हो?
1: दीदी हमारा छोटो सा धंधो है, कपड़े बाली मशीन चलाऊ थे दीदी, और इसके बाद टाइम बचत कहा ना तो उके हम खेती में लगा देते हम।
0: ठीक है भैया, अपन न सुनवा चाहो है देशराज पटेरिया को गाओ लोकगीत।
1: बहुत धन्यवाद दीदी।
0: धन्यवाद भैया।

0: हेलो,
1: स्वागत है भैया लोक रंजन कार्यक्रम में।
0: लट्टी कौन से पाठक बात कर रही थी?
1: पाठक जू की को लोकगीत सुनबो चाहो आज अपन?
0: आज आप सुनवा लो आशा तिवारी की आवाज में विवाह गारी।
1: अच्छा, आशा तिवारी की आवाज में अपन विवाह गारी सुनबो चाहो।
0: राम राम
1: जी। जी राम राम। हेलो लोक रंजन।
0: हेलो लोक रंजन
1: भैया, स्वागत है कार्यक्रम में अपनो।
0: नमस्ते बहन जी।
1: नमस्कार।
0: मैं ग्राम लोहेड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव बोल रहा हूँ।
1: बिल्कुल भैया, और देखो अपन ने अपन ई कार्यक्रम में फोन लगाओ तो सबसे पहला तो अपन अपनी फरमाइश बताओ थे।
0: आशा तिवारी जी का कोई भी अच्छा सा गारी या जो भी हो, उनकी बहुत अच्छी आवाज और उनकी जो भी लोकगीत होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं हमें, तो हमें उन्हीं की गाया हुआ लोकगीत सुना दीजिए।
1: बिल्कुल जयपाल भैया, देखो एक और श्रोता ने जब फरमाइश करी है तो देखो उन्हीं के संग हम अपन खा सुनवा रहे हैं आशा तिवारी को जो लोकगीत अपन खा भी। और इसके संगे संगे भैया अपन आजकल क्या कर रहे हैं?
0: आजकल बस बहन जी वही खेती से कार है, हम खेती से अपन से जो भी वार्ताएं आती हैं और उनको ध्यान में रखते हुए वही खेती की जैसे जुताई पहले कर दी थी और इसके बाद जब जो अपन लोग ज्यादातर से बताए हुए रास्ते पे चलते हैं तो जो देसी गोबर की खाद है उसको मिलाया डाला खेतों में, फिर उसके बाद फिर ट्रैक्टर से मिलाया ताकि पानी में बाहर न जाए जो बरसात होगी।
1: बिल्कुल भैया, देखो हम समझ गए कि अपन कहो चाह रहे हैं कि देखो सबसे पहले तो अपन ने बताया अनुसार हम और उनके अपनो खेत तैयार कर लो खेती के लाने आगामी जो खेती है, और इसके संगे संगे अपन गोबर की खाद डालत अपने खेत में।
0: जी आशा तिवारी जी का गीत है।
1: ठीक है भैया, सुनवा रहे हैं आशा तिवारी की।

0: हेलो लोकरंजन।
1: हेलो लोकरंजन से भैया।
0: ग्राम बड़गाना जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से सालिकराम पटेल बोल रहे दीदी।
1: सालिकराम पटेल। और भैया की को गालो की सुनने आज
0: हमको दीदी सुनवा दीजिए बेदेही सण द्विवेदी को आप कोई भी लोकगीत।
1: बिल्कुल भैया फरमाइश जरूर करिए अपन ने तो हम जरूर सुनवाए हम लोकगीत ही सुनवा के लाने बैठे हैं। और क्या कर रहा है अपन का कर रहा है इस समय?
0: दीदी हम खेती किसानी करते हैं।
1: अच्छा खेती किसानी कर रहे तो अपन की खरीफ की फसल के लाने तैयारी हो गई खेतन की?
0: हाँ खेतों की फसल तैयारी है। अब तो बादन कूदे दिन रात खेल रहे कब राम
1: ठीक है भैया सुनत रहो जुड़े रहो मैया आकाशवाणी छतह पर से। सालिकराम पटेल भैया अपन को सुनवा रहे हैं बेदे ही सरण द्विवेदी जी को गाओ लोकगीत।

0: हेलो लोक रंजन से।
1: हाँ हेलो लोक रंजन से भैया।
0: गुड्डू चौबे बोल रहा, बमहरी ढूंढा जिला सागर से।
1: गुड्डू चौबे स्वागत है भैया। और की को गा लोग सुन रहे आज?
0: बिल्ला पहले अपनो नाम बता दे थोड़ो, हमें को बोले।
1: हम तो नंदनी बहन बोल रहे भैया।
0: अरे नंदनी बहन, राम राम।
1: राम राम भैया।
0: आज सुनवा दे हमें राम गोपाल नायक की आवाज।
1: बिल्कुल भैया, जरूर सुनवा है हम अपन को लोक गीत। और जो बताऊ देगा।

0: अपन कर का रहे इस समय।
1: अबे बीजो प्यार करते सोयाबीन को कल बोनी करने है।
0: बोनी हो रही है खरीफ फसल की तो पानी बारिश हो गया अपन के।
1: अरे अच्छा गिर गया पानी, तीन चार पानी गिर गया रात में भी गिर तो आज बन नहीं रही बोनी आज तो।
0: अच्छा तो बोनी होने लगी है।
1: हाँ कल से हुई है माने, कल आज बीज उपचार करके रख लो फैला के डाल दो। तो
0: बीज उपचार कैसे करो?
1: बीज उपचार अपन ने मशीन तो हाथी नहीं अपने से, तो अपन ने तो यहाँ सही मटका में डाट डाल के हिला के यहाँ सुकड़ी रख गए, सुखो भी डाल रख गए।
0: छाया में सुखाओ की धूप में सुखाओ?
1: छाया में सुखाओ, हवा पंखा चालू कर दो थोड़ी हवा भर।
0: और भैया अपने खेतन की तैयारी तो हो गई है?
1: अब दो बार बकरी आई बनना, बखरनी तो दो बार हो गई अच्छी, बिल्कुल खेती बिल्कुल सुधरी धरी।
0: ठीक है भैया, अपन की फरमाइश पे हम सुनवा रहे हैं राम गोपाल नायक को गाओ भाव लोकगीत। बात करके हमें देखो बहुत अच्छा लगो है अपन से, तो लो सुनो।

0: भैया बहनारो देखो एक ही संगे हमारा आज को लोकरंजन कार्यक्रम इतना ही होता है समाप्त। अगले लोकरंजन में कछु नई फरमाइश और नए फोनन के संगे फिर हाजिर हो भी। जब तक अपनी खुशी बहन
1: और नंदनी बहन को दे आज्ञा
0: राम राम।

0: लोक रंजन।
1: अब अपने भैया बहन सुन रहे थे हेलो लोक रंजन कार्यक्रम, श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित बुंदेली लोक गीतन को फरमाइशी कार्यक्रम। और भैया ई कार्यक्रम की प्रस्तुति हती रविंद्र कुमार प्रजापति जी की। और मिल रहे हैं ई विराम के बाद।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
3: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कैंसर हिल्स।
1: और भैया बहन हो देखो, अब अपने भैया बहन को देखो, बा कहावत तो अपन ने सुनी हुई है कि जड़ों में मठा भारत। जा देखो अपने भैया बहन, जा एक बुंदेली कहावत है के देखो, कोनो भी अगर काऊ की देखो जैसे जड़ काट दिए तो उके आधार पर जब ताकत कमजोर हो जात तो एक के लाने जब कहावत कही जात है कि देखो जड़ों में मठा भरत। किसी काम परिवार व्यवस्था को भीतर से नुकसान पहुंचावो एक के उमें आउत है, ऐसो काम करबो जी के आगे देखो चलकर पूरी चीज बर्बाद हो जात। तो देखो उके लाने अपन जा कहावत कहते हैं कि जड़ों में मठा भरत है।
4: बिल्कुल नन्नी बहन, देखो कैसी नौनी बात कही। अपन खा कोनू खा भी अपने अंदर मतलब इतनो नहीं घुसपैठ करवाऊंगे, मतलब इतनो अंदर नहीं घुसाने कि भी अपने जड़े काटन लगे। कछु भैया बहन अपन उन्होंने देखिए कि भी अपनी संगत तो रहत लेकिन बस वे अपनो बुरु चाहवे पे लगे रहे और कछु ऐसो काम कर जाए जिससे अपनो सब बेकार हो जाए।
1: बिल्कुल, तो देखो अपन कछु ऐसे भैया बहन होते कहते ऐसी बन के अपनी जड़े काटन लगे।

0: तो देखो अपन को ऐसा काम नहीं करना है, अपन को देखो सभी जन से हिल मिलकर रहना है, अपन प्रेम मोहब्बत से रहना, चाहे देखो घर में हो चाहे समाज में हो चाहे कहीं हो।
1: बिल्कुल नंदी बहन, अपन सबसे हिल मिल के रहने, लेकिन कोई के संगे दगाबाजी नहीं करने, सभी के संगे प्रेम व्यवहार से रहने, कौन को भी अहित कौन भी रूप में हो अपन के द्वारा हो या कौन भी अपनी बात से हो, तो अपन का ऐसी बातचीत बिल्कुल नहीं करने।
0: बिल्कुल हम तो सभी भैया बहनों से यही कहें कि देखो अपन सभी जन मिलजुल के रह और राष्ट्रीय एकता बनाए रखें।
1: बिल्कुल नंदी बहन, और देखो गर्मी के दिन ज्यादा हो रहे हैं और देखो पानी अब बरस नहीं रहो, और इनसे क्या हो रहा है कि देखो रात में नींद नहीं आता कि भी मच्छर इतने काटत के का बताए।
0: बिल्कुल देखो अपन को मच्छर से बच के रहने का, देखो मच्छर काट भी से देखो अपन को बुखार आओ डेंगू भी हो जाता है। देखो अपन मच्छर से बच भी गिलाए, देखो अपन सोते समय देखो मच्छरदानी लगावे, बाहर के तुम गड्ढन में पानी यानी भरो हो तो उखो भी साफ कर दे,
1: यानी आसपास साफ सफाई रखने हैं। नंदी बहन देखो अपनों बतकाओ तो खत्म ना हुई है, बातें तो चलती ही रहे हैं, कैसे कि अपन और उनको काम ही ज्यादा बातचीत करवे से हो थे, जब ज्यादा बातचीत करे तो कछु न कछु सार की बातें निकल ही आती।
0: बिल्कुल खुशी में सो अब चलवे की भी हो रही है, सो बता दे कल की ग्राम सभा की।
1: बिल्कुल तो कल अपने भैया बहन हर सुने धारावाहिक चिटिया देवर भौजाई की को भाग 3
0: और वाचन हो है प्रीति पित्रे को,
1: और प्रस्तुति हुई है शंभुदया लहरवाजू की। के संगे संगे भैया बहन हरे एक वार्ता सुने, नन्नी बहन विषय बताइयो देना।
0: मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बांस मिशन की खेती अनुदान एवं विपणन की जानकारी, बाताकार हुई है हर्ष गुप्ता जी।
1: और आज की सीख हुई है जी ही आंगन नदियां बहे सो कम मरे प्यास,
0: और देखो गीत संगीत हुई है मनोरंजन हुई है बतकाव भी हुई है।
1: बिल्कुल,
0: और जब तक अपनी बहन नंदनी को दियो आज्ञा
1: और खुशी बहन को भी दियो अनुमति, राम राम।

0: ग्रामीण भाइयों के लिए भी ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 8 बजने को है। अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करते हैं।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
2: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की सेशल्स यात्रा विजन महासागर के अंतर्गत सुदृढ़ द्विपक्षीय सहयोग और समुद्री सुरक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और पत्रकार विशाल दहिया।
3: नमस्कार, सुर्खियों में आपका स्वागत है, मैं हूं विशाल दहिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशल्स पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमेनी ने उनका स्वागत किया और एक शीर्ष वार्ता वहां के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। लेकिन इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के गोल्डन जुबली नेशनल डे समारोह में भी गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल होंगे, जो कि ऐसा पहला मौका किसी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए होगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की यह सेशल्स की पिछले 12 साल में दूसरी यात्रा है। इससे पहले सन 2015 में प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स गए थे। भारत और सेशल्स के संबंध बहुत ही मधुर रहे हैं और दोनों ही देश 50 वर्ष भी मना रहे हैं अपने राजनयिक संबंधों को लेकर। तो आज हम चर्चा करेंगे न केवल भारत और सेशल्स के संबंधों की, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के महत्व की भी, खासतौर पे जो इस वक्त वैश्विक स्थिति है उसके चलते, और भारत के लिए सेशल्स कितना महत्वपूर्ण है और सेशल्स के लिए भारत की क्या अहमियत है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं एम्बेसडर अशोक सज्जनहार। एम्बेसडर सज्जनहार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
4: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
3: सबसे पहला सवाल जो मन में आता है जब हम सेशंस की बात करते हैं, और मैं सीधा

0: से शुरुआत करूंगा वो है मैरिटाइम सिक्योरिटी को लेकर। हालांकि भारत और सेशल्स के जो संबंध हैं उसमें कई और पहलू भी हैं, लेकिन सबसे पहले मैरिटाइम सिक्योरिटी से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जब नई दिल्ली से रवाना हुए थे तो उन्होंने अपने वक्तव्य में इस मुद्दे को लेकर काफी जोर शोर से अपनी बात रखी थी। कहा था महासागर जिसकी हम बात करते हैं मिस्टर सज्जनहार, तो महासागर से क्या इंडिकेशन मिलती है और उसमें सेशल्स का क्या महत्व है?
1: देखिए, आपने बिल्कुल ठीक जगह से शुरू किया है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं जो सेशल्स का क्या महत्व है महासागर के परिपेक्ष में, क्योंकि हमें देखना है न केवल भारत और सेशल्स के द्विपक्षीय संबंध कैसे हैं, परंतु इसको अंतर्राष्ट्रीय परिपेक्ष में देखने की बहुत आवश्यकता है। और हम देख रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय परिपेक्ष ऐसा है, बहुत बदलाव आया है, बहुत उथल पुथल हो रही है। और अगर हम इंडियन ओशन का क्षेत्र देखें तो उसमें भी हम देखते हैं बहुत ही, भारत तो कहता है ये भारत यहाँ पर मेजर सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, परंतु और भी यहाँ पर बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि आने लगे हैं और बहुत ही अपना

0: तो उथल पुथल हो रही है। और अगर हम इंडियन ओशन का क्षेत्र देखें तो उसमें भी हम देखते हैं बहुत ही, भारत तो कहता है ये भारत यहाँ पर मेजर सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, परंतु और भी यहाँ पर बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि आने लगे हैं और बहुत ही अपना यहाँ पर प्रभुत्व वो जमाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने पहले 2015 में जब वो मॉरिशस गए थे तो उन्होंने सागर का जो इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया था, जिसका मतलब है सागर है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो मतलब सभी की सुरक्षा, सभी का जो वृद्धि है, जो भी उनका आगे ले जाना है, ग्रोथ है, प्रगति है, सभी को साथ में लेकर यहाँ पर चलने की आवश्यकता है। परंतु उसका परिपेक्ष केवल इंडियन ओशन था। फिर उसके बाद पिछले साल उन्होंने महासागर को भी मॉरिशस में ही लॉन्च किया और उसका है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। मतलब इसको और ज्यादा व्यापक बना दिया गया है। अगर सागर केवल इंडियन ओशन भारतीय भूसागर से ही मिलता जुलता था, उसके परिपेक्ष में आता था, तो महासागर है इसका जो दायरा है कहीं और बढ़ गया है। और सेशल्स इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि जो हमारे सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जो ट्रेड है, जो कनेक्टिविटी है, उसमें बहुत ही उसका ज्यादा महत्व हो गया है। और इसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है जो आगे चलते हुए दोनों देश एक दूसरे की सहायता करेंगे, तो मैरिटाइम सिक्योरिटी है, मैरिटाइम डिफेंस है, सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरबिनी से, और इसके ऊपर पहले भी दोनों देशों में बहुत अच्छी सहमति है। जब डॉक्टर पैट्रिक हरबिनी भारत आए थे इस साल फरवरी में, तब भी इसके बारे में बहुत बातचीत हुई थी, तो अब इसको आगे इसमें ले जाया जाए।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने एम्बेसडर सज्जनार, क्योंकि जो भारत है उसने सेशल्स के कई मुख्य द्वीपों पर कोस्टल सर्वेलेंस राडार सिस्टम भी स्थापित किए हैं, यानी कि तटीय रक्षा प्रणाली जो है उसको मजबूत करने में दोनों देशों के बीच जो मधुर संबंध है, जो गहरे संबंध है, वो काम आते हैं। उसके अलावा अगर हम पायरेसी की बात करें, यानी कि जिन जिन शिपिंग लेन्स की आपने बात की, समुद्री सुरक्षा की बात की, तो एंटी पायरेसी जो स्टेप्स हैं, जो एंटी पायरेसी कैंपेन जो है उसमें भी दोनों देशों के बीच काफी गहरा समझौता है, और संयुक्त सैन्य अभ्यास भी गाहे बगाहे कई बार दोनों देश कर चुके हैं। तो ये इस इतिहास से देखा जाए तो पहले सागर और उसके एक दशक बाद अब महासागर, यानी कि एक और कदम हम आगे बढ़ रहे हैं सेशल्स के साथ जो हमारे संबंध है और हमारा जो समझौता है, खासतौर पे तटीय सुरक्षा को लेकर और जो समुद्री सुरक्षा जिसे कहा जाए उसको लेकर भी। लेकिन इसके अलावा एक और पहलू है मिस्टर सज्जनहार, और हम उस पर भी चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि भारत ने बड़ा दिल रखते हुए कई बार कई तरह से सेशल्स की मदद की है। चाहे हम अगर कोविड 19 के दिनों से देखें, जिस तरह से हमने पेंडेमिक के दौरान कई और देशों के साथ साथ सेशल्स की भी मदद की, हमने वैक्सीन्स पहुंचाई, उसके अलावा खाद्य सामग्री पहुंचाई, और हाल फिलहाल में कुछ महीने पहले एक 175 मिलियन यूएस डॉलर का आर्थिक पैकेज भी सेशल्स को दिया गया था। तो वहां सेशल्स में इसको किस तरह से देखा जाता है, भारत की जो इमेज की अगर हम बात करें तो किस तरह की इमेज भारत की है?
0: देखिए, भारत की इमेज मैं कहूंगा बहुत ही अच्छी है, क्योंकि जैसे आपने शुरुआत में ही बताया है, जो भारत के संबंध हमारे बहुत ही ऐतिहासिक हैं, बहुत ही पुराने हैं। वहां पर 1770 में हमारे पांच वहां पर जिसे कहा जाए वर्कर्स गए थे, लेबर गए थे, काम करने के लिए गए थे, कोई फ्रेंच कॉलोनियलिस्ट उनको वहां पर ले गए थे, और वो पहले भारतीय लोग थे जो वहां पर हैं, और हमारा बहुत ही तब से बहुत ही संबंध उनके साथ बहुत अच्छे रहे हैं। इस समय देखा जाए तो करीब 6000 हमारे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, हमारा जो डायस्पोरा है उसमें भारतीय मूल के जो लोग हैं करीब 6000 हैं, करीब 10-11 हजार वहां पर प्रोफेशनल्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं वगैरह। आपने बिल्कुल ठीक कहा, देखिए भारत ने हमेशा सेशल्स की मदद की है, सहायता की है, और इसके लिए बहुत ही आभारी है, सेशल्स अपने को मानता है, क्योंकि पहले हम सुरक्षा की बात कर रहे थे, मैरिटाइम सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, उसमें अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं ये भी कहूंगा जो देखिए हमने बहुत वहां पर पेट्रोल वेसल्स दिए हैं उनको, जिससे कि वहां पर अपनी वो पेट्रोलिंग कर सके। आपने रेडार सिस्टम्स का तो बताया ही है, जो कोस्टल तटीय इलाकों में हमने उनको स्थापित किया है, अभी हमने 6 वहां पर

0: तटीय इलाकों पर ही हमने ये एस्टैब्लिश किए हैं, स्थापित किए हैं, जिससे कि जो कोई वहां पर अगर उनकी संप्रभुता के ऊपर कोई वहां पर आते हैं तो उनको पहले ही पता चल जाए उसके बारे में। फिर दूसरी बात है, हमने दो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट भी दिए हैं उनको। इस प्रकार के बहुत सारे उनको हमने सामान दिया है जिससे कि अपनी सुरक्षा को वो बड़ी अच्छी तरीके से निभा पाए। उसके साथ हमारी एक्सरसाइजेस चलती हैं, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो लिमातीय एक्सरसाइजेस हर दो साल में एक बारी होती हैं। तो मैं कहूंगा बहुत वहां पर काम किया गया है। हमारी जो नेवल शिप्स हैं, INS सुनैना है, INS शारदा है, उन्होंने वहां की उसके एरिया के लिए, तटीय इलाकों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने बहुत वहां पर पेट्रोलिंग वगैरह की है। तो बहुत काम दोनों देश एक साथ करते हैं और इसमें वहां के जो लोग हैं वो भारत के बहुत ही आभार मानते हैं। हमारा व्यापार भी बहुत अच्छा है, हालांकि उसको और बढ़ सकता था तो, परंतु आपने जो अभी जिक्र किया है $175 मिलियन का, वो जब डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी आए थे यहाँ पर फरवरी में,
1: जी बिल्कुल,
0: तो तब उन्होंने उस समय ये पैकेज लोन भी है और ग्रांट का पैकेज है जो कि दिया था हमने उन्हें, और उसमें जो बहुत सारे अग्रीमेंट्स भी साइन हुए थे वहां पर कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए, वहां पर स्वास्थ्य क्षेत्र में, वहां पर शिक्षा क्षेत्र में, ऐसे बहुत से क्षेत्र थे जिसमें दोनों देशों ने कहा जो वहां पर काम किया जाएगा। आपने COVID-19 का विशाल जी अभी जिक्र किया
1: जी।
0: और वो बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव था दोनों देशों के बीच के संबंधों को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि सेशल्स मेरे विचार से दुनिया में करीब सबसे पहला देश रहा होगा जहां पर कि हमने 50,000 अपने वैक्सीन डोजेज वहां पर भेजे, क्योंकि हमारे यहाँ आपको याद होगा करीब 2021 में बिल्कुल शुरुआत में जनवरी में 16 जनवरी को हमने अपना टीकाकरण शुरू किया और फिर 21 जनवरी 4-5 दिन बाद ही हमने सेशल्स के लिए भी करीब 50,000 डोजेस भेज दिए थे। उनकी जनसंख्या ही अगर देखा जाए तो करीब 1,00,000 के आसपास है, छोटा देश है, छोटी जनसंख्या है
1: जी।
0: परंतु भारत उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान देता है, अपने संबंधों को बहुत ध्यान से उसको आगे लेकर जाता है, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैरिटाइम पार्टनर है और उस क्षेत्र में सुरक्षा के लिए जैसे हम बात कर रहे थे पायरेसी की, सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन की, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत करीब 90% हमारा जो व्यापार है
1: जी।
0: वो हम इन्हीं समुद्र से ही हम उसको आगे लेकर चलते हैं
1: जी। बिल्कुल सही कहा आपने मिस्टर सज्जनहार, केवल सुरक्षा के लिहाज से नहीं, केवल सैन्य उपकरण नहीं, बल्कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो बुनियादी ढांचा है उसको विकसित करने में भारत का काफी योगदान रहा है सेशल्स में, चाहे वो वहां की मजिस्ट्रेट कोर्ट बिल्डिंग हो, वहां पर ऊर्जा संयंत्र हो, या फिर और कम्युनिटी डेवलपमेंट की जो स्कीम्स हैं जिनका आपने जिक्र किया। एक आखिरी सवाल और मिस्टर सज्जनहार, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वहां मौजूद हैं, उनका 50वां स्वतंत्रता दिवस है यानी कि गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन है, उसके बाद वो नेशनल असेंबली को भी संबोधित करेंगे और शीर्ष स्तर पर वार्ता भी होगी, तो इस यात्रा से आपको क्या लगता है कि दोनों देशों के लिए क्या वो दो या तीन बड़ी बातें हैं जो उभर कर सामने आ सकती हैं?
0: देखिए, एक तो मेरे विचार से भारत न केवल सेशल्स को अपने द्विपक्षीय संबंधों के लिए, परंतु पूरे जो इंडियन ओशन रीजन है, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, उसमें ये एक संदेश भेज रहा है जो भारत का यहाँ पर जो संबंध है, जो प्रभुत्व है, वो बिल्कुल ही बरकरार है और उसको वो बिल्कुल भारत जो है उसको पूरी तरीके से प्रिजर्व करके रखेगा। तो कोई ये जैसे हम देख रहे हैं चीन की तरफ से इतना ज्यादा यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो मालदीव के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ा रहा हो, श्रीलंका के साथ आगे बढ़ा रहा हो, तो किसी को ये शक, चाहे वो ग्वादर में आ गया हो, जिबूती में आ गया हो, तो किसी को ये शक शुभ्रा नहीं होना चाहिए जो भारत और देशों को यहाँ पर अपने इस क्षेत्र में आकर किसी ना किसी प्रकार की कुछ ऐसी कार्रवाई करने का की अनुमति देगा। तो इसका भारत के यहाँ पर जो भी देश है उनके साथ संबंध बहुत ही प्रगाढ़ है, बहुत ही अटूट है, बहुत ही पुराना है, बहुत ही गहरा है। एक तो ये संदेश बिल्कुल सीधा है। दूसरा है, चाहे देश छोटे हों परंतु भारत

0: उनके साथ जो भारत के मित्र हैं उनके साथ वो बिल्कुल मिलकर काम करेगा और उनकी सब पूरी तरीके से सहायता करेगा। आखिर में यही कहना है, जब भारत बढ़ता है, भारत की प्रगति होती है, भारत समृद्धिमान बनता है, तो ये केवल भारत के लिए फायदा नहीं है, परंतु जो हमारे क्षेत्र के देश हैं इन सभी के लिए फायदा है और भारत सभी के साथ मिलजुल के काम करना चाहता है। उसी को हमने सागर का पहले रूप दिया और उसी को हमने फिर और बढ़ाकर महासागर का रूप दिया है।
1: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिस्टर सज्जनहार। जो प्रधानमंत्री की जो यात्रा है सेशल्स की और भारत और सेशल्स के बीच जो प्रगाढ़ संबंध रहे हैं पिछले 50 सालों से, उनकी समीक्षा करने के लिए और श्रोताओं को ये बताने के लिए कि किस मार्ग पर यानी कि किस दिशा में भारत और सेशल्स के संबंध अब आगे बढ़ने वाले हैं और क्यों दोनों देश एक दूसरे के लिए महत्व रखते हैं।
0: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की सेशल्स यात्रा विजन महासागर के अंतर्गत सुदृढ़ द्विपक्षीय सहयोग और समुद्री सुरक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और पत्रकार विशाल दहिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
5: मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम को पहला गीत हमने लिया है तेरे मेरे सपने से, आवाजें हैं किशोर कुमार, लता मंगेशकर की, नीरज का गीत है, HD बर्मन का संगीत।

कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया था तेरे मेरे सपने से। आवाजें थी किशोर कुमार, लता मंगेशकर की। नीरज का गीत था, एचडी बर्मन का संगीत। और लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार की आवाज में अनजान का लिखा हुआ गीत। राजेश रोशन का संगीत है, फिल्म का नाम है याराना।

किशोर कुमार की आवाज में अभी आपने सुना याराना फिल्म का गीत। गीत था अनजान का, संगीत दिया था राजेश रोशन ने। और लीजिए आप सुनिए किशोर कुमार और सपना की आवाजों में इंदी बर का लिखा हुआ गीत, कल्याण जी एनर्जी का संगीत है, फिल्म का नाम है जाबाज़।

जांबाज फिल्म का गीत अभी आपने सुना, किशोर कुमार और सपना की आवाजों में। इंडीवर का गीत था, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। आइए सुनते हैं शैलेंद्र सिंह की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी की रचना, आर डी बर्मन का संगीत है, फिल्म का नाम है जमाने को दिखाना है।

शैलेंद्र सिंह की आवाज में अभी आपने सुना जमाने को दिखाना है फिल्म का गीत। आइए सुनते हैं शौसले अमित कुमार की आवाज में गुलशन बाबला का लिखा हुआ गीत। फिल्म का नाम है जवानी।

जवानी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आशा भोसले अमित कुमार की आवाजों में। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में जूली फिल्म का गीत। गीत है आनंद बख्शी का, संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

किशोर कुमार की आवाज में अभी आपने सुना जूली फिल्म का गीत। गीत था आनंद बख्शी का, संगीत दिया था राजेश रोशन। इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 होने को है। समाचार संध्या कुछ ही क्षणों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमरीका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में

0: भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत आईएनएस इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान आईएनएस इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा, जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने यह पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में एसआईटी जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
2: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
1: इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
3: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
1: उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केम्पगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं, ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे।

0: तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्नपत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्नपत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न पत्रों से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साय जस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच 2 सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमरीका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमरीका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
2: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है, हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमरीका पर युद्ध विराम का पालन न करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम न बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता

0: नागरकोटी ने कहा कि अब तक कुल दो व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने ये भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्मरमैन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने दो दो सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमरीका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा। और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Seychelles to attend its 50th independence anniversary celebrations as guest of honour. India gifts fast patrol vessel, ambulances, utility vehicles and laser radial boats to Seychelles for its development and security. Prime Minister Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani tomorrow. Sri Ram Janmabhoomi Mandir Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra resign on moral grounds following the donation embezzlement case. Ceasefire between the US and Iran under pressure after a series of retaliatory strikes between the two sides. And in US Open Badminton, India's Devika Sehwag, Kidambi Srikanth and Ronak Chauhan reach semi-finals in California. Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria this afternoon on a three-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. A report.
2: Prime Minister Narendra Modi visited the Botanical Garden and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco de Mar plant in the presence of Dr. Hermini. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Maa Ke Naam initiative and reflects the shared India-Seychelles commitment towards sustainability and environmental stewardship. He also visited the giant tortoise enclosure at the Botanical Garden. In a social media post, Mr. Modi said that Aldabra giant tortoise also has an association with the special friendship between India and Seychelles, and two of them were gifted to the Alipur Zoo in Kolkata in 2014. Following this, Prime Minister Modi also interacted with members of Indian diaspora. He said that Indian diaspora has long served as a vibrant bridge between the two nations, strengthening people-to-people ties and

0: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका जेना। विज्ञान भारती के माध्यम से हम विज्ञान से जुड़े विभिन्न विषयों, पहलुओं, उपलब्धियों और समाचारों को आप सबके साथ साझा करते हैं। आज के विज्ञान भारती के संक में भी विज्ञान से जुड़े हुए विषयों को आप तक पहुँचाएंगे। रहिए हमारे साथ। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले प्रस्तुत है भेंट वार्ता, भूकंप का विज्ञान, भूकंप क्यों आते हैं। इन विषयों पर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के निदेशक डॉक्टर विनीत गहलोत विज्ञान की इस घटना भूकंप के बारे में बातचीत कर रहे हैं रमेश चंद्रा।
1: डॉक्टर विनीत गहलोत, भूकंप है क्या? क्या भूकंप आने से पहले कुछ विशेष सिग्नल्स मिलते हैं जो भूगर्भवेत्ता है उन्हें, जिनके द्वारा हमारे लोग हैं उन्हें मैसेज हो सके?
2: जो हमारी प्रकृति है उसमें कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो नेचुरल हैं, ना तो उनके ऊपर आपका कंट्रोल है और ना आपको उस पर कंट्रोल कर सकते हैं और ना आपको करना चाहिए। उनमें से एक प्रक्रिया है जिसको हम इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, और वो प्लेट टेक्टोनिक्स ही है जिसकी वजह से आप जितना भी भूखंड देखते हैं, जितने भी महाद्वीप देखते हैं या जितने भी द्वीप देखते हैं समुद्र के अंदर, जो कुछ भी आप देखते हैं, जो भी संरचना देखते हैं आज की तारीख में, वो केवल प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से है। और वही एक प्लेट टेक्टोनिक्स है जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। जो भूकंप है वो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसको आप ना तो रोक सकते हैं और ना इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और ये भी बात सच है कि अगर भूकंप नहीं होंगे तो प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, और प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, धरती को आप जीवित प्लैनेट कहते हैं, धरती को हम जो कहते हैं जीवित प्लैनेट, उसकी जो डेफिनेशन है वो खत्म हो जाएगी। ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, इनको तो चलना ही है और ये चलती ही रहेंगी। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है सबसे बड़ा कारण है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो प्रक्रिया है जिसके चलते ये सारे कॉन्टिनेंट बने हैं, हिमालय बना है, महासागर में जो आइलैंड बेल्ट है जिसे द्वीप कहते हैं वो बने हैं, वो सब कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से बना है। और वही प्लेट टेक्टोनिक्स है जो कि अर्थक्वेक को मिलाती है। तो भूकंप का सबसे बड़ा कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है। उसके अलावा हमारी कुछ अपनी गतिविधियां हैं, जैसे माइनिंग की एक्टिविटी, खनन का काम करते हैं, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। कई बार हम लोग आजकल जैसे ऑयल और गैस निकाल रहे हैं हम लोग, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। तो कई बार कोई डैम बना दिया, उसकी वजह से भी कभी कभी भूकंप आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़े भूकंप और सबसे असंख्या जो होती है वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही होती है। पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, उसके चारों तरफ के जितने कॉन्टिनेंट हैं उनको अगर आप ध्यान से देखें, वहां पे पैसिफिक प्लेट एक सिंगल प्लेट है, उसके चारों तरफ फिर ये कई सारी प्लेट हैं। जब भी दो प्लेट के बीच की बाउंड्री होगी उसको कहते हैं हम लोग कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन या डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन। जो कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन जैसे कि हिमालय है, वहां जो कि सबडक्शन जोन जिसे कहते हैं, वहां पे बड़े बड़े भूकंप आते हैं। तो जो रिंग ऑफ फायर है वहां पे कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन चारों तरफ है, यानी कि चारों तरफ आपके पास वहां पे बड़े बड़े भूकंप आने की जगह है। अगर हिमालय के उसमें कहें तो चारों तरफ आपके वहां पे हिमालय जैसी संरचनाएं हैं जिसकी वजह से वहां बड़े बड़े भूकंप आते हैं, जिसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। हमारा जो हिमालय है वो रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में नहीं आता है। हमारा जो हिमालय है उसको हम लोग अल्पाइड हिमालयन साइस्मिक बेल्ट कहते हैं, यानी कि आल्प्स शुरू होके फिर वो जैगरोस यानी कि ईरान, इराक, और फिर सुलेमान किरथार पाकिस्तान में होके फिर उसके बाद हिंदुकुश, और उसके बाद फिर हिमालय, फिर उसके बाद अराकान योमा, और उसके बाद फिर अंडमान सुमात्रा बांदा, ये वाली जो चेन है उसमें भी

0: पहले आता है। जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स की कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो कहती है कि सारी प्लेटें गतिमान हैं। अब उस प्लेट को चलाना कैसे है ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपके जो प्लेट है जब रगड़ रही है आपस में तो क्या वो आसानी से एक दूसरे के अंदर समा जा रही है या वो रुक रुक के जा रही है। अगर वो प्लेट रुक रुक के जा रही है तो यानी कि रुक रही है इसका मतलब उसमें ऊर्जा संचित हो रही है और उसके बाद जब वो ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो ऊर्जा निकल जाती है तो उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो जब भी कोई भी छोटा हो या बड़ा भूकंप हो इसका मतलब वो अपने अंदर जो ऊर्जा संचित हुई थी जिसका कि मेन कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है उसको रिलीज कर रहा है। तो यानी कि जो छोटे भूकंप होते हैं उसमें बहुत छोटी ऊर्जा जो है निकलती है और जो बड़े भूकंप होते हैं उसमें बड़ी ऊर्जा निकलती है। लेकिन यही वो ऊर्जा है जिसकी वजह से जब हम इसको लिविंग प्लैनेट या डायनामिक प्लैनेट कहते हैं कि मतलब ये इसमें सारी प्लेट गतिमान है और जो वो गति है वो अर्थक्वेक की वजह से ही होती है। अगर किसी इलाके में बहुत सारी ऊर्जा निकल रही है छोटे छोटे भूकंप के रूप में, हालांकि वो रिलेशन इतना लीनियर नहीं है, लेकिन हाँ वो दो चीजों को बता रही है कि एक तो ये कि ये इलाका भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे भूकंप आ सकते हैं, कोई बड़ा भूकंप आ सकता है, लेकिन अगर उसकी ऊर्जा इतनी निकल पा रही है जितनी कि उस प्लेट मोशन में जरूरत थी तो फिर इसका मतलब बड़ा भूकंप आने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसको बहुत ही लोग कैजुअली लेते हैं जो कि एकदम गलत है। छोटे भूकंप का आना ये नहीं बताता है कि बड़ा भूकंप नहीं आएगा। छोटे भूकंप का आना ये बताता है कि ये इलाका भूकंप प्रभावित है और यहाँ पे बड़ा भूकंप आ सकता है। अभी हमारे साथ समस्या क्या है कि हम लोग भूकंप के हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, हम लोग कौन से इलाके हैं वो कहाँ पे भूकंप आ रहे हैं, वहाँ पे कैसे भूकंप आते हैं, वहाँ पे कितना बड़ा भूकंप आ सकता है और अगर वहाँ पे बड़ा भूकंप आएगा तो उससे क्या हानि हो सकती है, वो कौन से इलाके हैं जहाँ पे की हानि ज्यादा होगी या हानि कम होगी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं क्या इससे हम भविष्यवाणी कर पाएंगे, वो एक पार्ट है जो हमारे साइंस का जो अभी भी अछूता है जिसके बारे में हम लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं। हम ही नहीं सारे विश्व उसके बारे में प्रयास कर रहा है। एनडीएमए की वेबसाइट पे जाएं तो जो आपका साधारण मकान जो घर का बनाना है साधारण स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं उसके बारे में आपको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए वो वहाँ पे मौजूद है। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं ये हमारे पास एक टेबल है तो मैं जरा देख लूँ इसको कि ये टेबल कितनी मजबूत है। अगर ये टेबल मजबूत है तो अच्छा होगा कि मैं इसके नीचे घुस जाऊँ बजाय इसके कि बाहर भागूं और उसके बाद अनेसेसरी और कोई रिस्क लूं, तो अच्छा होगा कि मैं इसके टेबल के नीचे घुस जाऊं। सबसे बड़ा जो उनका मोटो है वो ये है कि ड्रॉप कवर एंड होल्ड, ये तीन वर्ड वो यूज करते हैं कि ड्रॉप यानी कि आप जहां भी हैं वो नीचे गिर जाएं किसी सुरक्षित, जैसे पलंग है बेड है, बेड बहुत मजबूत होता है, आप उसके नीचे घुस जाएं, आप किसी टेबल के नीचे घुस जाएं तो वो सबसे अच्छी जगह है। ड्रॉप हो गया, कवर उस अपने आप को कवर कर लें, सिर को कवर कर लें आप ऐसे करके, क्योंकि सबसे जो आपका जो नाजुक चीज है वो सिर है आपका, तो सिर को आप कवर कर लें और होल्ड और वहां रहें जब तक कि वो कंपन बंद नहीं हो जाए। तो ड्रॉप कवर एंड होल्ड वाला जो सिद्धांत है वो काफी आजकल सब लोग इसको फॉलो करते हैं और स्कूल में यही सिखाया जाता है ड्रॉप कवर एंड होल्ड। जो पूर्व तैयारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप उसके लिए तैयार नहीं है तो जब आपके सामने इतनी भयंकर कोई विपत्ति आती है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो आपकी केवल पूर्व ट्रेनिंग ही काम आती है जो आपको बचा सकती है। तो इसलिए पूर्व ट्रेनिंग पे हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अक्सर लोग भूकंप को लेके काफी अजीब अजीब तरह से बात भी करते हैं, अफवाह भी फैलाते हैं और कहते हैं कि साहब भूकंप इसलिए आ गया या उसलिए आ गया, तो अफवाहों पे ध्यान ना दें, सबसे पहला काम तो यही है। और दूसरा ये है कि भूकंप लोगों को नहीं मारता, जो कमजोर बिल्डिंग है वो लोगों को मारती है। आज तक का इतिहास अगर उठा के देखें तो किसी एक भूकंप ने, खाली भूकंप ने किसी आदमी को नहीं मारा है। जो हानि हुई है वो केवल इसलिए कि जब हम लोग असुरक्षित घरों में थे और वो घर हमारे पर गिर गए और फिर डेथ हो गई। तो घरों को सुरक्षित बनाएं, पहले से तैयारी रखें। जैसे अगर हम उत्तराखंड में रह रहे हैं तो हमें मालूम है कि ये भूकंप वाला क्षेत्र है, तो हमें पहले से हमारे पास तैयारी होनी चाहिए कि अगर भूकंप आएगा तो हम कहां जाएंगे, कहां भागेंगे, कैसे भागेंगे और क्या करेंगे। अब कम से कम जितने हमारे पास आंकड़े हैं या जितनी विज्ञान ने तरक्की कर ली है तो हमें मालूम है कि भूकंप कैसे आते हैं, हमें मालूम है कि भूकंप क्यों आते हैं। हाँ, बस एक ही समस्या जो हमारे साथ है वो ये है कि अगला भूकंप कहाँ आएगा ये हमें पता है, लेकिन कब आएगा इसके बारे में थोड़ी समस्या है। उसके बारे में अभी भी शोध जो है वो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ी अभी भी परेशानियां हैं। लेकिन भूकंप कैसे आता है इसके बारे में हम लोगों को कोई संदेह नहीं है कि ये एक प्राकृतिक क्रिया है जिसको प्लेट टेक्टोनिक्स से कंट्रोल होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे भूकंप का विज्ञान विषय पर डॉक्टर विनीत गहलोत, निदेशक वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून से भेंट वार्ता। अब सुनिए उत्तराखंड रत्न से सम्मानित ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत के विचार। डॉक्टर लक्ष्मीकांत हमें बता रहे हैं कि कृषि के विकास में आकाशवाणी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है और किस प्रकार रेडियो आज भी किसानों का विश्वसनीय

0: साथी बना हुआ है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
1: डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें आकाशवाणी की और भारतीय कृषि की, दोनों ने एक लंबा सफर साथ साथ तय किया है, क्या भूमिका रही है आकाशवाणी की भारतीय कृषि के विकास में?
2: ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने चुना है आज के लिए, और मैं ये कहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ करके देखें तो आकाशवाणी और कृषि दोनों बिल्कुल हाथ बांधे साथ साथ इनका सफर रहा है। 1936 में जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, और आपको ये भी ज्ञात होगा कि आजादी के बाद देश में जो अनाज था उसका एक बड़ी कमी थी, और जो 1964 में जो डॉक्टर बोरलॉग जो नोबल लॉरेट थे, उनका जो गेहूं का जो जनन सामग्री थी, जब वो यहां पर ला करके जब टेस्ट की जा रही थी, तो उससे जो पैदावार में बढ़ोतरी हुई, तो वो एक जिसको हम आधुनिक कृषि कहते हैं, जिसमें आपके उन्नत बीज का प्रयोग किया गया, खाद पानी इन सब आगतों का जो प्रयोग किया गया, और उससे जो जिसको हम लोग हरित क्रांति कहते हैं, जो हरित क्रांति आई, तो ये जो हमारे किसान थे उनके लिए नई चीजें थी
1: जी।
2: और आज का समय तो बहुत सारे प्रसार के साधन आ गए हैं, तो उस समय सबसे प्रभावी जो साधन था वो रेडियो था, क्योंकि रेडियो की पहुंच जगह जगह थी और सुदूर क्षेत्रों में भी रेडियो की पहुंच थी। तो इसलिए ये सोचा गया, जो उस समय भारत के जो कृषि मंत्री थे, तत्कालीन कृषि मंत्री भारत रत्न सी सुब्रमण्यम साहब
1: जी,
2: उन्होंने देखा कि जो अमेरिका है इसमें रेडियो की सफलता कृषि के प्रचार प्रसार में काफी हुई है, तो उन्होंने 7 आकाशवाणी के जो केंद्र थे उस पर फार्म एंड होम यूनिट जो है शुरू करवाए
1: जी।
2: तो इससे भारत में जो कृषि प्रसारण के एक नए युग की इसकी शुरुआत हुई। इसने बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो कृषि तकनीकों को आम जो कृषक है हमारे सुदूर क्षेत्रों में उन तक पहुंचाने में, और उनकी जीवन शैली को सुधारने में, और उनका जो कृषि से संबंधित ज्ञान है उसको बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस कार्यक्रम ने निभाई। मैं तो पहाड़ में ही रहा हूं, तो मैंने देखा है कि हम लोग रेडियो को अलग अलग जगह पे ले जा करके उसको रखते थे कि कहां पे साफ सुनाई दे रहा, कई बार वो साफ नहीं सुनाई देता था। उस समय ये आकाशवाणी लखनऊ से ट्रांसमिशन होता था और नजीबाबाद उसको रिले करता था
1: जी,
2: और वो सुनाई नहीं देता था। और ये भी युग था कि टीवी तो था नहीं
1: जी,
2: मोबाइल भी नहीं था, और केवल रेडियो ही एक होता था, और शाम को जब कृषि जगत उस पर लगता था तो उसको एक जगह पे लगा के गांव के सारे लोग सुनते थे उस पर
1: जी।
2: तो आज क्या हो गया है कि जो डिजिटल युग आया उससे ये स्पष्ट सुनाई देने लगा। आज तो हर किसी के पास में स्मार्टफोन, अधिकतर गांवों में भी स्मार्टफोन है, जहां पे नेटवर्क की समस्या है वहां तो अभी भी रेडियो ही चल रहा है, लेकिन जिन क्षेत्रों के आसपास में नेटवर्क अच्छा है तो उसमें इसके थ्रू इसके प्रचार प्रसार में और कृषि के जो ज्ञान है उसके प्रचार प्रसार में बड़ी मदद मिली है। कई लोग अभी भी जो किसान भाई हैं वो जो आकाशवाणी से प्रसारित होते हैं कृषि से संबंधित कार्यक्रम, वो सुनते हैं और बताते हैं, साहब हमने उसमें सुना था ऐसा ऐसा, फला वैज्ञानिक ने ऐसा बताया था और उसको हमने प्रयोग किया
1: जी।
2: तो अभी भी ये लोग इसमें रुचि लेते हैं और सुनते हैं, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है आकाशवाणी का, क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है इस सब तक पहुंचना, इंडिविजुअल आदमी को पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। रिपोर्टर्स हैं वो जब जाकर के किसानों के खेत पे जाकर के उसकी जो सक्सेस स्टोरी को लेकर के आते हैं, और किसान जो है ना जब वो अपने साथी किसान के जुबान से सुनता है कि सफलता की कहानी, तो उसको ज्यादा भरोसा होता है
1: जी।
2: तो और उसके अंदर एक ये विश्वास होता है कि भाई इस आदमी ने ये किया है तो मैं भी इसको कर सकता हूँ
1: जी जी।
2: कृषि में एक्चुअली सारा कुछ आ जाता है, पशुपालन भी, मत्स्य पालन भी, रेशम पालन भी, ये सारी चीजें आ जाती हैं, या मुर्गी पालन है, बागवानी है, ये सब कृषि के ही अंग हैं। अभी भी अगर गांव का भ्रमण करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी नहीं है
1: जी।
2: तो इन चीजों को लगातार इस पर समसामयिक कार्यक्रम होते रहे, इन योजनाओं की जानकारी किसानों को मिलती रहे, तो उससे किसान भाई जो है लाभान्वित होंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो उनकी दशा बहुत सुधार की जरूरत है उसमें
1: जी।
2: तो उसमें ये जो आकाशवाणी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है और उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों को मिल पाएगा।
0: आकाशवाणी का कृषि के विकास में योगदान विषय पर जानकारी साझा कर रहे थे उत्तराखंड रत्न से सम्मानित डॉक्टर लक्ष्मीकांत, निदेशक ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा। कार्यक्रम के अगले खंड में अब बातचीत कर रहे हैं ऊर्जा संरक्षण पर, और ऊर्जा संरक्षण के इस विषय पर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश त्रिपाठी हमें बता रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण क्यों आवश्यक है और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि भारत जैसा

0: जो देश है, जो विकसित हो रहा देश है, इसमें ऊर्जा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अगर आज के समय की बात करें तो जो हमारा देश है इसमें चुनौतियां क्या आप समझते हैं ऊर्जा को लेकर?
1: समाज के लिए ऊर्जा हमेशा से आवश्यक रहा है, चाहे आप व्यक्तिगत जिंदगी में देखें तो भी ऊर्जा की आवश्यकता है, शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो ऊर्जा का तो महत्व हर जगह है। हमारे देश में ऊर्जा इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि किसी भी समाज को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, चाहे ऊर्जा के स्रोत के रूप में आप पेट्रोलियम को देखें, चाहे और स्रोत हैं जैसे हाइड्रो है, थर्मल है, विंड है, विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं। हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अभी भी ऊर्जा के मामले में, खास तौर से पेट्रोलियम पदार्थों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। सभी जानते हैं कि भौगोलिक जो अवस्था है जो हमारे देश की, उसमें पेट्रोलियम उत्पाद उतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ बाकी देशों में, जैसे आपका अमेरिका है, रशिया है, ईरान है, मिडिल ईस्ट नेशन है, जहां पर पेट्रोलियम उत्पाद काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो इसीलिए हमारे लिए एक चिंतनीय विषय भी हो जाता है, क्योंकि समाज के विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता तो पड़नी है। लॉजिस्टिक्स पार्ट्स में अगर देखें, यानी परिवहन है, उद्योग को चलाने के लिए है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का इम्पोर्टेंस है, महत्व है, और इससे हम इसको इनकार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि ऊर्जा के मामले में हम अभी भी संपन्न नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है
0: जी।
1: आप जानकर हैरत करेंगे कि करीब हमारे जो विदेशी मुद्रा कोष है वो उसका करीब 70-75% हम सिर्फ पेट्रोलियम उत्पाद को खरीदने में लगा देते। अब उसकी वजह से क्या है कि वो हमारे ऊपर काफी बड़ा बोझ रखता है, और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे ऊर्जा के मामले में, तो ये जो विदेशी मुद्रा कोष से जो निकास है, आगत और निकास, हम ये दो प्रबंध की भाषा में बात करते हैं, तो निकास ज्यादा है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आर्थिक बोझ भी पड़ता है, और इसीलिए जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस पर चर्चा करें, इसके नए विकल्पों की बात करें, नवीनीकरण की बात करें, ये बहुत, जिसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। हमारे यहाँ आप मान के चलें कि करीब 9-10 महीने प्रचुर मात्रा में प्रकाश मौजूद है, तो उस प्रकाश को हम कैसे प्रयोग कर, क्योंकि आजकल वैज्ञानिक काफी काम कर रहे हैं कि सूर्य की ऊर्जा को कन्वर्ट करके हम बिजली बना सकते हैं और भी ऊर्जा स्रोत बना सकते हैं, तो सौर ऊर्जा हो गया, सोलर पैनल्स पे काम हो ही रहा है, सरकार आपको सब्सिडी दे रही है, इसके अलावा हम बायोफ्यूल की बात करते हैं, हाइड्रो ऊर्जा की बात करते हैं, इसके अलावा हम विंड ऊर्जा की बात करते हैं, भारत में हवा की अवस्था ठीक है, तो इस तरीके की वैकल्पिक ऊर्जाओं पे हमें काम करना पड़ेगा।
2: ऊर्जा संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है? डॉक्टर राजेश त्रिपाठी एसोसिएट प्रोफेसर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून से जानकारी साझा कर रहे थे। आइए अब जान लेते हैं जून महीने में जन्मे महान वैज्ञानिकों की उपलब्धियां और विज्ञान जगत को दिए गए उनके योगदान। साथ ही जून महीने में जिन वैज्ञानिकों की पुण्यतिथि आती है उनके जीवन और वैज्ञानिक योगदान को भी हम याद कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं जून के इस महीने में जन्मे और दिवंगत हुए विज्ञान जगत के महान व्यक्तित्व के बारे में। विज्ञान का इतिहास उन महान व्यक्तित्वों की प्रेरणादायक गाथा है जिन्होंने अपनी खोजों और विचारों से मानव सभ्यता को नई दिशा दी। जून माह विज्ञान जगत के लिए विशेष महत्व रखता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ महान वैज्ञानिकों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की, जिनका जन्म 13 जून 1831 को स्कॉटलैंड में हुआ था। उन्होंने विद्युत, चुंबकत्व और प्रकाश के बीच संबंध स्थापित करते हुए प्रसिद्ध मैक्सवेल समीकरण प्रस्तुत किए। उनके सिद्धांतों ने रेडियो, टेलीविजन और आधुनिक वायरलेस संचार तकनीक की नींव रखी। अब बात करते हैं एलन ट्यूरिंग की। उनका जन्म 23 जून 1912 को इंग्लैंड में हुआ था। उन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है। ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एनिग्मा कोड को समझने में उनकी भूमिका आज भी इतिहास में अमूल्य मानी जाती है। जून माह में हम नोबेल पुरस्कार विजेता रसायन वैज्ञानिक जेरोम कार्ले को भी स्मरण करते हैं, जिनका निधन 6 जून 2013 को हुआ। उन्होंने एक्सरे क्रिस्टोग्राफी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे वैज्ञानिकों को अणुओं की संरचना समझने में सहायता मिली। इसी क्रम में कैनेथ जी विल्सन, जिनका निधन 15 जून 2013 को हुआ। उन्होंने पदार्थों के व्यवहार और फेज ट्रांजिशन के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्य के लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी के अग्रणी विचारक जेम्स मार्टिन का निधन भी 24

0: जून 2013 को हुआ था। उन्होंने तकनीकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। श्रोताओं, इन महान वैज्ञानिकों का जीवन हमें ये सिखाता है कि ज्ञान, जिज्ञासा और निरंतर प्रयास से मानवता के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले जा सकते हैं। अब सुनिए एक विशेष वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़। गढ़वाल विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नेथानी सरल भाषा में समझा रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर तकनीक ने संचार और डिजिटल क्रांति को किस प्रकार नई गति दी है।
1: ऑप्टिकल फाइबर का हिंदी अर्थ प्रकाशिक तंतु होता है। यह कांच, सिलिका या प्लास्टिक से बना एक बहुत ही पतला और लचीला तार होता है। इसका उपयोग प्रकाश के संकेतों के माध्यम से बहुत तेज गति से डेटा भेजने के लिए किया जाता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब इसमें प्रकाश प्रवेश करता है तो यह तार की दीवारों से टकराकर बिना बाहर निकले आगे बढ़ता रहता है। इस तरह यह बाल के समान पतला तना प्रकाश की तरंगों के रूप में डेटा संचरित करने के लिए तरंग मार्ग का काम करता है। यह आधुनिक उच्च गति इंटरनेट और दूर संचार का आधार है, जो विशाल बैंडविड्थ और लगभग तात्कालिक संचार को विशाल दूरी तक प्रदान करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन फाइबर की संरचनात्मक परतों के कारण संभव होता है। इसकी बनावट में मुख्य अवयवों में प्रथम कोर होती है, जो भीतरी अत्यधिक पारदर्शी कांच या प्लास्टिक का तार होता है, जहाँ से प्रकाश वास्तव में गुजरता है। द्वितीय अवयव आवरण होता है, जो प्रकाश के कोर के चारों ओर लिपटी हुई एक बाहरी परत होती है। इसका अपवर्तनांक बहुत कम होता है। घनत्व में यह अंतर दर्पण की तरह कार्य करता है, जिससे प्रकाश कोर के अंदर ही रुक जाता है। तीसरा अवयव बफर कोटिंग और जैकेट होता है। यह बाहरी सुरक्षात्मक प्लास्टिक और रबर की परतें, जो नाजुक कांच को किसी भौतिक नुकसान, नमी और झुकने के तनाव से बचाती है। परंपरागत तांबे के तारों की तुलना में ऑप्टिकल फाइबर कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। कुछ मुख्य लाभों को अगर देखें तो यह विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप EMI या रेडियो आवृत्ति हस्तक्षेप RFI से प्रभावित नहीं होता है। चूंकि प्रकाश पूरी तरह से कोर के अंदर समाहित होता है और विकिरण नहीं करता है, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर को तोड़े बिना उसमें सेंध लगाना बेहद मुश्किल है, जिससे यह अत्यधिक सुरक्षित हो जाता है। प्रकाश लगभग तात्कालिक गति से यात्रा करता है, जिससे केबलों को हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीम करने, AI क्लाउड नेटवर्क चलाने और वैश्विक डेटा को रूट करने की लगभग असीमित क्षमता मिलती है। ऑप्टिकल फाइबर के सामान्य अनुप्रयोगों में इंटरनेट और दूरसंचार शामिल हैं। ये आधुनिक वैश्विक नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी हैं, जो फाइबर टू द होम, FTTH, ब्रॉडबैंड, समुद्र के नीचे बिछी संचार केबल और उच्च क्षमता वाले टेलीफोन और मोबाइल नेटवर्क प्रदान करते हैं। सोचिए, यदि इंटरनेट न हो तो जीवन कैसा होगा? सब जगह अंधेरा ही अंधेरा होगा और हम विज्ञान में और मेडिकल के क्षेत्र में आजकल के युग में किसी भी कंप्यूटेशन के लायक नहीं रहेंगे। मेडिकल इमेजिंग में लचीले ऑप्टिकल फाइबर डॉक्टरों को एंडोस्कोप और लेप्रोस्कोप जैसे गैर आक्रामक उपकरणों के माध्यम से मानव शरीर के अंदरूनी हिस्से को रोशन करने और देखने की अनुमति देता है। इस तरह शरीर के अंदर क्या क्या घटित हो रहा है, इससे डॉक्टर स्पष्ट रूप से देख लेते हैं और तदनुसार बीमारी देखकर इलाज करना आसान और सटीक हो जाता है। निश्चित ही चिकित्सा जगत में यह एक चमत्कार की तरह प्रयुक्त होता है। रक्षा और एरोस्पेस में इसका उपयोग अत्यधिक सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन, विमान वायरिंग और मिसाइल मार्गदर्शन प्रणालियों के लिए किया जाता है, क्योंकि प्रकाश संकेतों के आसानी से रोका या जाम नहीं किया जा सकता। आधुनिक लड़ाइयों में इसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इससे दुश्मनों के क्षेत्रों की सही और सटीक जानकारी मिल जाती है। अतः किसी भी देश के लिए रक्षा एवं एरोस्पेस में इसकी भूमिका निर्णायक होती है। औद्योगिक सेंसर फाइबर ऑप्टिक सेंसर का उपयोग पुलों, इमारतों और तेल पाइपलाइनों में तापमान, दबाव और संरचनात्मक अखंडता की निगरानी के लिए किया जाता है। इस तरह मानव द्वारा निर्मित फाइबर से आधुनिक तरीके से मानव रहित प्रणाली से बड़ी चालाकी से कार्य किया जाता है।
0: अभी आपने सुनी ये वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़ विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नेथानी सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष भौतिक विज्ञान विभाग जी गोपाल रेड्डी कैंपस गढ़वाल विश्वविद्यालय पौड़ी से। चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और उनके प्रभाव पर महत्वपूर्ण भेंट वार्ता पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एवं AIG अस्पताल है।

0: हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर जीवी राव इनसे बातचीत कर रही हैं सीमा कुमारी।
1: डॉक्टर जीवी राव जी, चिकित्सा के क्षेत्र में के उल्लेखनीय योगदान ने लाखों लोगों के जीवन को एक नई दिशा दी है। चिकित्सा क्षेत्र में आपका सफर जो है वो कई दशकों से फैला हुआ है। आप यहाँ के जाने माने डॉक्टर माने जाते हैं और अब आप उस शीर्ष स्थान में पहुँचे हैं जहाँ आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। गैस्ट्रिक के जो पेशेंट्स हैं आजकल, उनके लिए कौन कौन सी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां जो हैं वो उपलब्ध हैं अपने भारत में?
2: भारत तो इतना आगे जा चुका है कि दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी आना ना हो भारत में आ जाता है, और ये टेक्नोलॉजी प्राइम मिनिस्टर साहब की दुआई से अभी इंडिया में भी बन रही है। अभी तो इसके पहले जो टेक्नोलॉजी खाली मेन सिटीज में रहता था, अभी तो गांव-गांव फैल चुका है। अभी ये गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी जो स्पेशलिटी है, बोथ मेडिकल और सर्जिकल जो स्पेशलिटी है, इसमें जो उन्नति हुई ये एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, रोबोटिक सर्जरी, ये तीन स्पेशलिटीज के वजह से सर्जरीज बहुत मिनिमली इन्वेजिव हो गए और रिकवरी बहुत हो गया। समझो आज एक्चुअली मेजॉरिटी इंडिया में जो फैमिली जो रहते हैं उनका फैमिली में एक ब्रेडविनर रहता है। अगर ये आदमी कोई बीमारी से काम पे न जाए तो सारी के सारी फैमिली अफेक्ट हो जाती है। तो ये मिनिमली इन्वेजिव जो एंडोस्कोपी हो, लैप्रोस्कोपी हो या रोबोटिक सर्जरी हो, इसके वजह से जो भी चिकित्सा करे आदमी जल्द से जल्द रिकवर होकर अपने काम पे लग जाता है। सो इससे वो बहुत आसान हो गया कि द फैमिलीज आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड नाउ बाय दिस। वी गो थ्रू रेगुलर मेडिकल चेकअप और जो भी डेटा है, हम तो मैं तो एक आदमी हूँ, मैं तो मेरा पूरा डेटा है, इनफैक्ट मैं तो बोलता मेरा एक डिजिटल ट्विन है हॉस्पिटल में, सिस्टम में जो भी मेरा डेटा है पूरा उसमें रिकॉर्डेड है। तो दैट टेक्स केयर ऑफ माई दिस थिंग एक्चुअली।
1: थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर जीवी राव, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, निदेशक एआईजी अस्पताल हैदराबाद से चिकित्सा क्षेत्र में तकनीक और नवाचार विषय पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे। श्रोताओं, अब बात करते हैं जून 2026 में विज्ञान और अंतरिक्ष जगत की कुछ प्रमुख घटनाओं की जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सबसे पहले बात नासा के बहुप्रतीक्षित नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप की। 21 जून 2026 को ये अत्याधुनिक दूरबीन अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर पहुंच गई। इस दूरबीन को हबल स्पेस टेलीस्कोप की उत्तराधिकारी माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये हबल की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक क्षेत्र का अवलोकन कर सकेगी। इसके माध्यम से डार्क एनर्जी, दूरस्थ आकाश गंगाओं तथा हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होने की उम्मीद है। अब बात यूरोप की एक बड़ी अंतरिक्ष उपलब्धि की। 17 जून 2026 को फ्रेंच गायना के कुरु प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 6 रॉकेट ने एक ही मिशन में 36 इंटरनेट उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। इस सफलता से वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी और अंतरिक्ष उद्योग को नई गति मिलने की उम्मीद है। वहीं चीन ने अंतरिक्ष में खाद्य उत्पादन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। चीन के त्यांगुगोंग स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिक सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण यानी माइक्रो ग्रेविटी वातावरण में धान की खेती के प्रयोग कर रहे हैं। ये शोध भविष्य में चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां स्थापित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक खाद्य उत्पादन संभव हो जाता है तो लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों को नई दिशा मिल सकती है। अब रुख करते हैं मंगल की ओर। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस यानी के जून 2026 में मंगल ग्रह पर अनेक विशाल धूल के बवंडरों जिन्हें डस्ट डेविल्स कहा जाता है की तस्वीरें भेजी। इन चित्रों के अध्ययन से वैज्ञानिक मंगल ग्रह के वातावरण, मौसम और जलवायु को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कर रहे हैं। भारत भी अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। जून 2026 के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन परीक्षणों, माइक्रो ग्रेविटी अनुसंधानों तथा महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की तैयारियों में हुई प्रगति की जानकारी साझा की। ये उपलब्धियां भारत के भविष्य के मानव अंतरिक्ष अभियानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और अब बात करते हैं जून माह के आकाशीय नजारों की। 21 जून 2026 को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन यथार्थ ग्रीष्म अयनांत मनाया गया। इसके अलावा जून माह में शुक्र और बृहस्पति ग्रहों का सुंदर संयोजन खगोल प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं बुध ग्रह का सायंकालीन दर्शन भी आकाश प्रेमियों के लिए विशेष अवसर लेकर आया। निसंदेह जून 2026 विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई उपलब्धियों

नई संभावनाओं और नई खोजों का महीना साबित हुआ। तो ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे आपको नए विचारों के साथ, नवीन जानकारियों के साथ। आज के विज्ञान भारती की प्रस्तुति आकाशवाणी देहरादून की थी। वाचन स्वर प्रियंका जेना का, प्रस्तुति संकल्प मिश्रा। मिलते हैं विज्ञान भारती के अगले एपिसोड में। नमस्कार।

0: नमस्कार।
1: प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन। समृद्ध संगीत परंपरा वाले परिवार में जन्मे प्रभात ने संतूर की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। आपने सबसे पहले श्री दुलाल रॉय से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। इससे पहले आपने लंबे समय तक उस्ताद साबिर खान से तबला सीखा, जिससे आप में लय और ताल की गहरी समझ विकसित हुई। आपने संतूर की विधिवत शिक्षा पंडित तरुण भट्टाचार्य और पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी से प्राप्त की। वर्तमान में आप सारंगी वादक पद्म भूषण उस्ताद साबरी खान और सरोद वादक पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान से वाद्य संगीत की बारीकियों का प्रशिक्षण ले रहे हैं। संगीत में MA करने वाले प्रभात ने गायन और वाद्य संगीत की विभिन्न शैलियों का ऐसा समन्वय विकसित किया है, जिससे उनका संगीत मधुर और पारंपरिक दोनों बन गया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के एक ग्रेट कलाकार प्रभात ने भारत के साथ साथ यूरोप में भी व्यापक रूप से प्रस्तुतियां दी हैं। आपने स्पेन, फ्रांस, चिली, केनिया और नॉर्वे जैसे देशों में कार्यक्रम किए। आपने फ्रांस में आयोजित इंडिया फेस्टिवल और स्पेन में आयोजित स्प्रिंग फेस्टिवल में भी भाग लिया। हाल ही में आपने ट्यूनीशिया में ICCR द्वारा आयोजित भारत स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रस्तुति दी। एक रचनात्मक कलाकार के रूप में प्रभात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में नए आयामों की खोज में निरंतर कार्यरत हैं।
2: दिस इज आकाशवाणी इंटरनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। वी ब्रिंग यू अ संतूर रिसाइटल बाय प्रभात मुखोपाध्याय। Born in family of rich musical tradition, Prabhat has already made himself a name in the world of Santur. He was initiated by Sri Dulal Roy. He took Talim from Ustad Sabir Khan in Tabla for a long time to acquire a sense of rhythm and tad. He took extensive training in Santur from Pandit Torun Bhattacharya and Padmashri Pandit Bhajan Sopori, the two maestros in the instrument. Presently, he is taking tutelage in the intricacies of instrumental music from the great Sarangi Maestro, Padma Bhushan Ustad Sabri Khan, Sarod Maestro, Padma Vibhushan Ustad Amjad Ali Khan. An MA in music, Prabhat has attained the distinction of bringing in a synthesis of the various phrases of vocal and instrumental music to make it both lyrical and ethnic. A-grade artist of All India Radio and Doordarshan, Prabhat has travelled extensively within the country as well as in Europe. He has performed in so many countries, Spain, France, Chile, Kenya, Norway. He participated India Festival in France and Spring Festival in Spain. Recently, he performed India Independence Day Festival in Tunisia, organized by ICCR. A creative artist, Prabhat has been in search of new dimensions in Hindustani classical music.
1: आपके साथ आज इस कार्यक्रम में तबले पर संगत कर रहे हैं मुस्तफा हुसैन। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का आरंभ राग रागेश्वरी से कर रहे हैं। प्रस्तुत है आलाप, जोड़ और झाला। विलंबित रचना झपताल और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
2: टुडे ही इज अकंपनीड ऑन तबला बाय मुस्तफा हुसैन। प्रभात मुखोपाध्याय बिगिंस हिज संतूर रिसाइटल विद राग रागेश्री। ही नाउ प्रेजेंट्स आलाप विलंबित लय कॉम्पोजिशन सेट टू झपताल एंड द्रुत लय।

0: ये था प्रभात मुखोपाध्याय द्वारा संतूर पर बजाया गया राग रागेश्री। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का समापन पहाड़ी धुन से कर रहे हैं।
1: That was राग रागेश्री performed by प्रभात मुखोपाध्याय। He concludes his recital with a पहाड़ी धुन।

0: अभी आप प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे मुस्तफा हुसैन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: That was धुन played by प्रभात मुखोपाध्याय। He was accompanied on tabla by Mustafa Hussain. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studio of Akashwani Delhi. Also came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्नाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना

0: हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केन्द्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल

0: प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria this afternoon on a three-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the

हम अपनी प्रातःकालीन सभा के साथ 5:55 पर इसी मीटर पर अपने कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।

वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज वन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब आज की हमारी सांध्यकालीन सभा यहीं संपन्न होती है।